प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: नमस्कार
2: श्रोतृंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कार।

0: ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मैं आचार्य पार्थ कुमार व्यास मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से श्रावण मास के उपलक्ष्य में शिव संवाद के रूप में यहाँ पर बिल्वाष्टकम का कुछ विशेष मैं प्रस्तुत करूँगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। हम भगवान शिव जी को बिल्व पत्र अर्पण करते हैं, लेकिन बिल्वाष्टकम में एक एक शब्द का अर्थ बहुत अच्छी तरह से बताया है, जो शिव पुराण के अनुसार है और शंकराचार्य जी ने वो बिल्वाष्टकम का रचना किया है। उसमें कहा है तीन दलों वाला तीन गुणों, जिसमें तीन गुणों कौन सा है, सत्व रज और तम का स्वरूप तीन नेत्रों वाले भगवान शिव को प्रिय और तीन जन्मों के पाप का नाश करने वाला यह एक बिल्व पत्र मैं भगवान शिव जी को अर्पण करता हूँ। दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर सी बात की गई है, त्रिशाखे बिल्वपत्रश्च अच्छिद्रे कोमले तथा तव पूजाम करिष्यामि एक बिल्वम शिवार्पणम। हे शिव, मैं तीन शाखाओं वाले बिना टूटे हुए कोमल और शुभ बिल्व पत्रों से आपकी पूजा करता हूँ, यह एक बिल्व पत्र मैं आपको अर्पण करता हूँ। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्व वृक्ष का दर्शन और स्पर्श से भी पापों का नाश करने वाला माना गया है, ऐसे पवित्र बिल्व पत्र को मैं शिव को अर्पण करता हूँ। काशी क्षेत्रे निवसासम च काल भैरव दर्शनम प्रयागे माधवम दृष्ट्वा एक बिल्वम शिवार्पणम। काशी में निवास, काल भैरव के दर्शन और प्रयाग में भगवान माधव के दर्शन के समान पुण्य देने वाला यह बिल्व पत्र में शिव को अर्पण करता हो। इस श्लोक में बहुत अच्छी बात की गई है, काशी में भगवान काल भैरव का दर्शन जो करना है वो भी बहुत पुण्य की बात होती है, और प्रयाग जहाँ त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, जहाँ पर महाकुंभ हुआ था वही जगह पर माधवम माधव भगवान विष्णु का दर्शन के समान पुण्य देने वाला ए बिल्व अर्पण का पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रैः शुरगणेशेव्ये मानं पापहारकं बिल्वपत्रं प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम्। कहा है कि जिस बिल्वपत्र की सेवा देवता भी करते हैं और जो पापों का नाश करने वाला है, ऐसा बिल्वपत्र मैं भगवान शिव को अर्पण करता हूँ। आज के जो यहाँ पर बिल्वाष्टकम का जो विस्तृत हुआ उसको यहाँ पर विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

अवनामानं प्राप्तवतो मरणादिकं तथा। हे देव, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़ करके होता है।

0: मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर के उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदा युक्त वचनों से दुखी होता है। अपुण्याम यत्र पुण्यते पुञ्जयतो न पूज्यते त्रेणि तत्र भविष्यति दारिद्र्यम मरणम भयम्। जहाँ अपूज लोगों की पूजा होती है और पूजनीय की पूजा नहीं होती वहाँ दरिद्रता मृत्यु एवं भय ये तीनों अवश्य होंगे। परमेशां वलदे दनं कर्म न कार्यते यत् सदाचरणं परं द्वेष्टि परमेशां यदात्मनां समृत्तद्विजते। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्विज रखता है वह द्विज अपने लिए ही होता है। दातुताम परीक्षाम दुर्भिक्षम रणे सिद्ध्यम जायते आपकाले न तु मित्रास्यतिम त्रिणीम कुलम ही निवेयते संकटे प्राप्तस्य परोक्षित स्नुयस्याम यथा तत्व नन्याथम सत्यमरीक्षते। दुर्भि पकड़ने पर दानी की युद्ध स्थल में शूरवीर की आपत्ति काल में मित्र का समर्थन हो पर स्त्रियों की तथा कुलनी नम्रता तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोपकाल में होता है यह अन्यथा नहीं सत्य कहा गया है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से आज ट्यूजडे 4 अगस्त के इस कार्यक्रम में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शिव सती चरित्र का जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, कल जहां से विराम लिया था हम लोग वहीं से आगे बढ़े। भगवान शिव और माँ सती ने दोनों ने श्री राम जी की दर्शन की। राम के दर्शन पा करके भगवान शिव अति आनंदित हुआ, परंतु सती माता की दशा कुछ और ही था, जिसको तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं सती

सती जी ने भगवान शंकर की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत उनकी वंदना करते हैं, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं।

0: शिव जी ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रसन्न मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? आज के लिए हम यही तक पाठ करें। कल इस कार्यक्रम के माध्यम से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वैदिक मंत्र। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्य स्विद्धनम्। प्रिय श्रोताओं, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला ही मंत्र है, जिसको हम ईशोपनिषद के नाम से भी कहते हैं। उपनिषद विद्या बहुत ही हमारे जीवन को बनाने वाली विद्या है। अध्यात्म की शिक्षा ये देती है, हम कौन हैं, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारे इस आने का उद्देश्य क्या है। ये बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी मंत्र है। और यदि मैं इस मंत्र के बारे में कहूँ तो ये हमारे जीवन का एक तरह से निचोड़ है। पहला ही इस मंत्र में एक बात कही गई है, ईशावास्यमिदं सर्वम्। इदम सर्वम का मतलब है यह सब, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत है, संसार है, ये सब ईश से आच्छादित है, परमात्मा से आच्छादित है। कण कण में भगवान समाये हुए हैं, इसीलिए तो भगवान की घोषणा है। परमात्मा कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, कण कण में बसा हुआ है वो परमात्मा। कैसा है? अज निरंजन, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसा परमात्मा। उसके बारे में कहा कि इस संसार के प्रत्येक कण को, अर्थात प्रत्येक पार्टिकल्स को वो गति देने वाले हैं। इसीलिए तो कहा इस वेद मंत्र में, यत किंच जगत्याम जगत, निरंतर गतिशील विशाल ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी निरंतर गतिशील हमारा ये संसार है, पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर कोई न कोई चेतनता भरने वाला है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। जगती के अंदर जो जगत, सारे संसार के अंदर, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, सारा संसार भी इन्हीं से बना है। सत्व, रजस, तमसाम, साम्यावस्था, प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलकर के प्रत्येक संसार का पदार्थ बना हुआ है। जगत का मतलब है संसार, उसके एक एक कण में मानो वो ईश छिपे हैं, कण कण में जो रमा है, ऐसा जो परमात्मा है, उसकी हम उपासना करें, उसका ध्यान करें। आप किसी भी वेद मंत्र को लेकर के उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और इस मंत्र को हमेशा हमें जीवन में याद रखना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अर्थात उस परमात्मा के द्वारा दिए गए संसार को कैसे भोगो, त्याग भाव से भोगो, अथवा प्रभु के द्वारा प्रदत्त इस संसार के पदार्थों का हम त्याग पूर्वक उपभोग करें। हम ये न सोचें कि ये सारे पदार्थ हमारे लिए ही बने हैं। त्याग का मतलब है उसमें अपनत्व की भावना न रखें। हम धन्यवाद करें उस ईश्वर का जिसने हमें ये सारे सांसारिक पदार्थ दिए हैं। मा गृध कस्य स्विद्धनम, हम किसी के पदार्थ की लालच न करें। ये धन किसी का नहीं, उस ईश्वर का है। ये बहुत ही प्यारा मंत्र है, इसको हम हमेशा गुनगुनाते रहें। आप सबका धन्यवाद। प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर

शेष कार्यक्रम वेद संदेश के श्रवण करने वाले आप समस्त श्रोताओं को आचार्य बीतुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आइए सुनते हैं वेद मंत्र पाठ अर्थ सहित। ओम यदि जति पतति यच्छतिष्ठति प्राणद प्राणन्निमिषश्च यत् तद्दाधार पृथिवीं विश्वरूपं तत्संभूय भवतीकमेव। एक अद्वितीय ब्रह्म विचित्र प्रकार जगत को रचकर सबका धारण पोषण करता है। ओम अनंतं विततं पुरुत्रा नन्तमन्तवचा समन्ति तीना कपालश्चरति विचिन्वन् विद्वान् भूतमुत भव्यमस्य। अनंत मोक्ष स्वरूप परमात्मा कारण कार्य रूप जगत तथा भूत भविष्यत और वर्तमान काल को जानता हुआ सदा वर्तमान है। ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरदिश्यमानो बहुधा विजायति अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमसकीतु। परमात्मा अज्ञानियों को नहीं दिखता, उसको विवेकी जन सूक्ष्म दृष्टि से सबके भीतर व्यापर गाते हैं। उसी ईश्वर सामर्थ्य से यह जगत उत्पन्न हुआ है और उसी की शक्ति में अनंत कारण रूप पदार्थ वर्तमान हैं। ओम ऊर्ध्वं भरन्तमुदकं कुम्भीनिवोदहार्यं पश्यन्ति सर्वचक्षुषा न सर्वे मनसा विदु। प्रायः मनुष्य परमेश्वर को उसकी स्थूल रचनाओं से देखते हैं, जैसे कूप में से घड़े द्वारा को, परंतु विवेकी पुरुष उस उन्नतिकर्ता ईश्वर को उसकी सूक्ष्म रचनाओं से अनुभव करते हैं। ओम दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊने नहीयति महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रभृतो भरन्ति। परमात्मा को विद्वान लोग सब स्थान में पाकर और होकर आनंद भोगते हैं और मूर्ख जन उसे न जानकर सदा दुखी रहते हैं। उसी महाराजाओं के महाराज की सब उपासना करें। ओम शांति शांति शांति।

0: साधो अद्रिवः अवब्रह्मद्वेषो जनी।
1: हे संसार के रचने वाले परमेश्वर, हम आपके गुणों की स्तुति करते हैं। हम आपके गुणगान उत्कृष्ट रूप से करते रहें। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हम सब लोग प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करते हैं, आपके बताए हुए दिव्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, धर्म मार्ग पर चलकर ही अपने आचरण को शुद्ध करते हैं। जैसे मनुष्य जगत पोषण एवं अपने प्राणों की रक्षा के लिए धरती में अन्न उपजाता है, उसी प्रकार परमात्मा की कृपा एवं ज्ञानी विद्वानों के सहयोग से मनुष्य अपने मन मस्तिष्क में ज्ञान रूपे बीज बोकर वेद व सत्य विद्या से अपने आप को ज्ञानवान, विद्वान एवं सामर्थ्यवान बनाए। ऐसा व्यक्ति प्रभु की उपासना में लगा रहता है ताकि उसका कोई शत्रु न बने। हे सर्वसंपन्न प्रभु, आप सब पर कल्याण की वर्षा करें।

0: नाम।
1: परमात्मा ही शुभ कर्मों का प्रेरक और सब लोकों का स्वामी है। वह कुकर्मियों व अकर्मियों का भी स्वामी है। वही सबका शासक है। परमात्मा को कोई माने या न माने, चाहे कोई प्रार्थना करें या न करें, किंतु वह न्यायपूर्वक सब पर शासन करता है। परमात्मा सबका राजा और न्यायकारी होने से सबके कर्मों का निरीक्षण करता है और अपनी न्याय व्यवस्था से सबको फल प्रदान करता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए परमात्मा न्यायकारी और पूज्यतम है।

0: सी।
1: परमात्मा छल कपट आदि विकारों से रहित हैं, वह शुद्ध स्वरूप और निराकार हैं, जड़ और चेतन तत्व उसी के अधीन है, सभी जीव उसी के आदेश अनुसार संसार में विचरण करते हैं। परमात्मा ही द्युलोक एवं पृथ्वी आदि लोकों को संतुलन में रखता है, वह परम पावन होने से सबको पावन बनाता है। जो कोई भी उस परमात्मा के गुणों का कीर्तन करता है, वह परमात्मा जैसे ही पावन बन जाता है एवं छल कपट आदि विकारों से रहित हो जाता है।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
2: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

नमस्कार। रौदा पानी के रिजर्व घटते जा रहे हैं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने फिर से अपनी वितरण योजना पर गौर किया। आते सोमवार से नए कदम लागू किए जाएंगे। पूरे देश में पानी की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कल बुधवार से जलापूर्ति को 2 घंटों से कम करने का फैसला लिया गया। 10 अगस्त से नए कदम लागू किए जाएंगे। सिर्फ सब्जियों के खेतों में सिंचाई की जा सकेगी। कौ वाश स्थलों को पीने का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी और उच्च दबाव वाली मशीनों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा तथा नल पानी से स्विमिंग पूल को भरने की अनुमति भी नहीं होगी। अनाबेल सवाबादी नई जूनियर पर्यटन मंत्री बनी है और तुनिया पोलो नए जूनियर स्पोर्ट्स मंत्री। कल दोनों ने स्टेट हाउस रेजी में शपथ ली। कारेन फुकुन स्पोर्ट्स मंत्री

0: मंत्रालय से पर्यावरण मंत्रालय की जूनियर मंत्री बन गई हैं। राजनीतिक स्तर पर वेरोनिक लोगोविन ने कला एवं संस्कृति जूनियर मंत्री की हैसियत से इस्तीफा दिया। उनके पति गुलशन गोविन की गिरफ्तारी के चलते उन्होंने स्टेप डाउन करने का फैसला लिया है और वेरोनिक लोगोविन ने नुवो डेमोक्रेट पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। आज राष्ट्रसभा के एजेंडे में दो अहम कार्य शामिल होंगे। इनमें पहली पढ़त पर वेटलैंड्स बिल की पेशकश और राष्ट्रसभा में क्रियोल मोरिसियन के इस्तेमाल करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन शामिल हैं। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की जा रही है और ये ईरान के लिए आखिरी मौका है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसरे मुल्कों की दरख्वास्त पर अमेरिका ये बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अब तक ईरान के विदेश मंत्री ने वाशिंगटन के साथ बातचीत करने के दावे को झुठलाया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। मस्करीन्स के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिराएंगे, पूर्व और सेंट्रल प्लेटों में बारिश होगी, दूसरे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। आज रात घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं और लगनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में, इसी वजह से पूर्व और दक्षिण वाले लगूनों में न जाने की सलाह है। तापमान, सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:38 पर और आज शाम को 5:53 पर सूरज ढल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब। शुभ दिन आप सभी को।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
3: इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:04 होने जा रहे हैं श्रोताओं, और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियाँ। ये विज्ञप्ति है फ्लैट सनासी के आसपास के कुछ इलाके, जिनमें है सैयद हुसैन पायुत फिनिक्स में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 5 अगस्त को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ ही साथ रॉयल रोड पीतों पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाके और गवर्नमेंट स्कूल के आसपास के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 4 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं, और ये विज्ञप्तियाँ जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम में 800 किलोहर्ट्ज़ पर से आप हमें सुन पा रहे हैं। मैं हूँ रत्ना, आज के इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हो चुकी हूँ जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का दिन सभी के लिए ऊर्जामयी रहे, यही शुभकामनाओं के साथ हम आ पहुँचे हैं। आपकी सेवा में रहेंगे आपके साथ सुबह के दिन के 11 बजे तक। 4 तारीख अगस्त का महीना, 2026 का साल, मंगलवार का दिन, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:06। संतवाणी कार्यक्रम के साथ अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे, और कबीर मंदिर द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर आचार्य श्यामदास जी। 6:20 के करीब आप सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम श्रावण मास पर आधारित। और आज का ये कार्यक्रम गहलोत राजपूत महासभा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी पंडिता रामभोजन। तो आइए आज के दिन का शुभारंभ करते हैं आज के इस विचार के साथ। श्रोताओं, ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये किरदार की दौलत है जो सभी के जेब में नहीं होती। चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर आचार्य श्यामदास जी का।
4: आइए सुनिए आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।
5: बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम देत नशाय, भ्रम छू

0: नाम परम श्रद्धालु श्रोतागण, यह कार्यक्रम कबीर मंदिर बोनतेर वाकवा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है ईश्वर एक मान्यताएं अनेक, इस विषय पर आधारित है। इस सृष्टि प्रवाह में जलोपरांत सबसे पहले वनस्पतियाँ पेड़ पौधे हुए, इसके बाद अनेक प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी उत्पन्न हुए, अनंतर मानव की सृष्टि हुई। प्रारंभिक काल में मानव का मस्तिष्क अत्यंत मंद था, किंतु विकासशील प्राणी होने के कारण धीरे धीरे इस मानव का मस्तिष्क विकसित हुआ। तभी इस अपार संसार को देखकर इस मानव के मस्तिष्क पर यह आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हुआ कि इस सृष्टि का कोई कर्ता है। इसके बाद यह मानव इस सृष्टि के कर्ता के रूप में एक निराकार ईश्वर मानकर उसकी उपासना करने लगा। उसी ईश्वर के निर्गुणोपासकों में कुछ श्रेष्ठतम उपासक हुए, जिनमें ऐश्वर्य गुणों को देखकर बाद के कुछ उपासकों ने उनको ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करने लगा। कुछ लोग ईश्वर का अवतार ना मानकर निराकार ईश्वर की ही उपासना में लग गए और कुछ लोग ईश्वर के निराकार एवं साकार इन दोनों में किसी को भी ना मान करके कर्म की उपासना करने लगे। उपासकों में मतभेद होने के कारण आज इस संसार में निर्गुण उपासक, सगुण उपासक और कर्म उपासक, इस प्रकार ईश्वर के उपासकों में तीन प्रकार के उपासक हैं। वेद शास्त्र एवं पुराण आदि जितने धर्म ग्रंथ बने हुए हैं, वे सब उपास्य और उपासकों के माध्यम से बने हुए हैं। उपासकों के संदर्भ में शिव महिम्न स्त्रोत में लिखा है, जिसकी शिव के उपासक शिव रूप से, वेदांती ब्रह्म रूप से, बौद्ध लोग बुद्ध रूप से, प्रमाण देने में कुशल न्यायिक कर्ता रूप से, जैनी लोग अरहंत रूप से और मीमांसक लोग कर्म रूप से उपासना करते हैं, वह त्रिलोकीनाथ हरि आप सभी लोगों को मोक्ष प्रदान करें। जैसे यम शैवामुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवह करतेति नैयायिकः, अरहन्नित्यत जैन शासनरतः कर्मेति मीमांसकः, सोयम यो विदधातु मोक्ष पदवी त्रैलोक्यम नाथो हरि। इन षट दर्शनावलंबियों में सभी आस्तिक दर्शनावलंबी अपने से श्रेष्ठ, अपना एक अलग अलग ईश्वर मानकर उनकी उपासना करते हैं। सभी आस्तिक दर्शनावलंबी यही कहते हैं कि उनका माना हुआ ईश्वर निराकार रूप से सभी प्राणियों में एवं व्यापक रूप से सभी जगह विद्यमान है। इस प्रकार सभी आस्तिक दर्शनावलंबियों की मान्यताओं एक ही ईश्वर की ओर संकेत करती है। अलग अलग दर्शनावलंबियाँ होने के कारण सभी आस्तिक दर्शनावलंबियों की पूजा एवं प्रार्थना की पद्धति में भिन्नता तो है, किंतु सभी दर्शनावलंबी एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना के मार्ग पर चल रहे हैं। जिस प्रकार एक नदी के अनेक घाट पर स्नान करने वाले लोग कहते हैं कि हम अलग अलग घाट पर स्नान करते हैं, किंतु वे सब के सब एक ही नदी की एक ही जलधारा में स्नान करते हैं। इसी प्रकार सभी आस्तिक दर्शनावलंबी कहते हैं कि हम अलग अलग ईश्वर की उपासना करते हैं, किंतु वे सब के सब नाम भेद से एक ही सच्चिदानंद ईश्वर की उपासना करते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए समतावादी के पुजारी सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, नदिया एक घाट बहुतेरे, कहाँ ही कबीर बचन के फेरे। तदन रस्य बाह्यस्य, यजुर्वेद के इस कथन के अनुसार वह ईश्वर शरीर के अंदर आत्मा में और बाहर व्यापक रूप से पूरे विश्व में विद्यमान है। ईश्वर की उपासना करते हुए साधक के मन में ईश्वर का स्वरूप को जानने की इच्छा हुई। इसी बात को वेदांत सूत्र कह रहा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए लक्षण और प्रमाण की आवश्यकता होती है। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। ब्रह्म के दोनों प्रकार के लक्षण वेदों में पाए जाते हैं, जैसे सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, अर्थात सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप ब्रह्म है। यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नभिर् संविशान्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। अर्थात जिससे भूत वर्ग उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा जीवन धारण करता है और प्रयाण के समय प्रियमाण प्राणी जिसमें प्रवेश कर जाता है, उसकी जिज्ञासा करो, क्योंकि वही ब्रह्म है। इस प्रकार वेदों में ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं। यजुर्वेद कह रहा है कि स्वर्ण पात्र से उस सत्य का मुख ढका हुआ है। हे मानव, तुम सत्य और धर्म से उस ढक्कन को खोलकर उसको देख सकते हो। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्य पीतं मुखं तत्त्वं पुषन् नृपावरुणो सत्यं धर्माय दृष्टते। वस्तुतः सत्य को कोई ढक नहीं सकता है, किंतु वेद के कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान रूप अंधकार ने मानव की विवेक दृष्टि को ढक लिया है। विवेक दृष्टि को खोलने वाले गुरु होते हैं, इसीलिए भगवान व्यास ने गुरु की विशेषता को बताते हुए नारदीय पुराण में कहा है कि घोर अज्ञानांधकार का रूप रोग से पीड़ित मानव की दृष्टि को ज्ञान रूपी अंजन शलाका से खोलने वाले गुरु को नमस्कार है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंज शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार की तरह संपूर्ण विश्व के चर एवं अचर सभी प्राणियों में व्याप्त उस सत्य ब्रह्म को दर्शाने वाले गुरु को नमस्कार। यही कहा गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन गुरु की विशेषताओं के साथ ही आज के वक्तव्य को विराम दिया जा रहा है। बंदगी साहेब, बंदगी साहेब।
1: अभी आप सुन रहे थे आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।

श्रोताओं, आइए इसी के साथ श्रावण मास पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। गहलोत राजपूत महासभा द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रस्तुत कर रही हैं पंडिता राम भोजन। 6:30 बजे हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ और समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम में पुनः आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।

0: शांति। आदरणीय श्रोताओं को पंडिता सरस्वती तुरैया रामभोजन का सादर नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम श्रावणी उपाकर्म के शुभ उपलक्ष पर आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रावणी पर्व, श्रोताओं, इस पर्व के अवसर पर वेदों के महत्व तथा दैनिक जीवन में वेदों के स्वाध्याय तथा ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करने की प्रेरणा की जाती है। वेदों के स्वाध्याय से मनुष्य का कल्याण होता है। वेद अध्ययन करने से मनुष्य जीवन को पतन के मार्ग पर ले जाने वाले विचारों और पाप कर्मों से बचाता है। वेदों का स्वाध्याय, वेदों का स्वयं अध्ययन और मनन करना सनातन वैदिक परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। वैदिक दर्शन में इसे ब्रह्मयज कहा गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान अर्जन के माध्यम से ईश्वर की आराधना करना। स्वाध्याय शब्द का वैदिक अर्थ, यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, स्व जमा अध्याय। स्व स्वयं का, अपनी आत्मा का या अपने मूल ग्रंथों का। अध्याय अध्ययन करना, गहराई से समझना और चिंतन करना। वैदिक सिद्धांत, केवल मंत्रों को रट लेना स्वाध्याय नहीं है। वेद मंत्रों के अर्थ को समझना, उनके विज्ञान को जानना और उस ज्ञान को अपने आचरण में उतारना ही वास्तविक स्वाध्याय है। वैदिक जीवन पद्धति में प्रत्येक गृहस्थ के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने का नियम है। इसमें सबसे पहला और प्रधान यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है, जिसका सीधा संबंध वेदों से है। यह यज्ञ व्यक्ति को अज्ञान अंधकार से बचाता है और समाज को वैचारिक रूप से जागृत रखता है। वेदों के स्वाध्याय के मुख्य उद्देश्य, बुद्धि का विकास होता है। धियोयो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का मूल संदेश ही यही है कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो। स्वाध्याय से बुद्धि तीक्ष्ण, सात्विक और विवेकशील बनती है। यह वेदों का महामंत्र है, जो बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाने की प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग से ही रास्ते की ओर प्रेरित करें। यह मंत्र सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन सद्बुद्धि है। यदि बुद्धि सही दिशा में है तो मनुष्य हर परिस्थिति को पार कर सकता है। श्रावणी पर्व के 3 लाभ हैं, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक। आध्यात्मिक पक्ष, श्रवण का अर्थ होता है जिसमें सुना जाए। अब सुना किसे जाता है? संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान वेद है। हमारे वैज्ञानिक सोच रखने वाले ऋषियों ने वेदों के स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं आचरण के लिए अनुकूल माना। इसलिए श्रावणी पर्व के अवसर पर वेदों के स्वाध्याय एवं आचरण से मनुष्य अपने आध्यात्मिक उन्नति करें। वैज्ञानिक पक्ष, श्रावण में वर्षा के कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं। वेदों के स्वाध्याय के साथ साथ दैनिक अग्निहोत्र का विशेष प्रावधान किया जाता है। वेद परायण यज्ञ को सम्मिलित किया। श्रावणी पर्व का वैज्ञानिक पक्ष पर्यावरण रक्षा के रूप में प्रचलित है। श्रावण पर्व का सामाजिक पक्ष ज्ञानी मुनियों द्वारा समाज को दिशा निर्देशन एवं धर्म भावना को समृद्ध कराता है। हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने जो ज्ञान अनुभूतियों से प्राप्त किया उसे सुरक्षित रखना और आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। स्वाध्याय न करने से यह ज्ञान लुप्त हो जाता है जिसे ऋषि ऋण का उल्लंघन माना जाता है। वेद मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप अहम् ब्रह्मासि तत्त्वमसि का बोध कराते हैं। स्वाध्याय से व्यक्ति यह समझ पाता है कि वह केवल एक भौतिक शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात करने के चार चरण होते हैं। पहला है श्रवण। आचार्य या गुरु के मुख से वेद मंत्रों और उनके अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनना। दूसरा मनन। सुने हुए ज्ञान पर अकेले में बैठकर एकाग्रता से विचार करना और शंकाओं का समाधान करना। तीसरा निधि ध्यासन। उस ज्ञान को अपने जीवन का सत्य मानकर उस पर अडिग हो जाना और ध्यान लगाना। चौथा आचरण। जब वह ज्ञान मनुष्य के व्यवहार वाणी और कर्म में दिखने लगे। श्रोताओं, इस प्रकार से श्रावणी पर्व मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ज्ञान विद्या और विवेक के महापर्व श्रावणी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने जीवन को यजमय बनाएं। गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा, यह श्रावण पर्व हमारा।
2: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
4: नमस्कार, आदाब। सुबह 6:30 हैं। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। कल से पानी की सप्लाई में बदलाव। 2 घंटों के दौरान जलापूर्ति नहीं की जाएगी। देश में सूखे की स्थिति के मद्देनजर CWA को ये कदम मजबूरन उठाना पड़ रहा है। PPS प्रणाली शायद फिर से स्थापित की जा सकेगी। कल प्रधानमंत्री ने वेरोनिक लुगोविन के इस्तीफे पर आधारित प्रेस के सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। आज राष्ट्रसभा में वेटलैंड्स बिल को पेश किया जाएगा। इसके अलावा संसदीय कार्यों के दौरान क्रियोल मोरिशिया पर सिलेक्ट कमेटी के गठन पर भी चर्चा। और विदेश में स्पेन तथा मोरक्को की सरहद पर हजारों प्रवासियों के प्रवेश के सिलसिले में यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की आज एक आपातकालीन बैठक। नमस्कार रादाब। पानी के रिजर्व घटते जा रहे हैं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने फिर से अपनी वितरण योजना पर गौर किया। आते सोमवार से नए कदम लागू किए जाएंगे। पूरे देश में पानी की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कल बुधवार से जल आपूर्ति को 2 घंटों से कम करने का फैसला लिया गया। 10 अगस्त से नए कदम लागू किए जाएंगे। सिर्फ सब्जियों के खेतों में सिंचाई की जा सकेगी। कौवाश स्थलों को पीने का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। उच्च दबाव वाली मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और नल पानी से स्विमिंग पूल को भरने की भी अनुमति नहीं होगी। CWA के डेप्यूटी जनरल मैनेजर चंद्रासन मतादीन को सुनते हैं। कल वे गांव चित्र प्रोग्राम में पत्रकार मिगन पुनापनायकन के मेहमान थे।
5: Et dans la réunion,
4: हमने जल क्षेत्र से जुड़े सभी साझेदारों से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान हमने जलाशयों के स्तर को देखा और बारिश की दर का जायजा लिया। मोगवाकुआ में पिछले साल पानी का स्तर करीब 90% था, आज वो 40% है। लानिकोलिया पिछले साल 100% भरा था और आज सिर्फ 46% पानी है। इसलिए हमें फैसला लेना पड़ा, हमें अगली तेज वर्षा तक इस रिजर्व का संचालन करना पड़ेगा, जो अक्टूबर, नवंबर और कभी दिसंबर महीनों के दौरान आती है। गए 2 सालों में गर्मी के मौसम में भारी बारिश नहीं हुई है। देश भर में पानी की सप्लाई को 2 घंटों से कम किया जाएगा, यानी सुबह 1 घंटा कम सप्लाई की जाएगी और शाम को भी। अगर एक इलाके में सुबह 6 घंटों के दौरान जलापूर्ति की जाती थी, उसे 5 घंटे कर दिए जाएंगे। उत्तरी क्षेत्र के खेतिहरों का कहना है कि वो एक मुश्किल हालत का सामना कर रहे हैं, फिर भी अभी के लिए वो संचालन कर पा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त दाम लग रहे हैं। गन्ने के किसानों के मुताबिक पिछले नवंबर महीने से कम जलापूर्ति के चलते उत्पादन पर असर पड़ा है और इसीलिए वो लंबी अवधि के लिए सिंचाई योजना की मांग कर रहे हैं। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
5: उत्तरी प्रांत के खेतों में अब सप्ताह में केवल 2 दिन ही पानी की आपूर्ति की जा रही है, यानी कुल मिलाकर 10 घंटे से भी कम। ये CWA द्वारा लागू कदम है। यहाँ त्रियोली में किसान वैकल्पिक उपायों का सहारा ले रहे हैं। प्लास्टिक के बड़े ड्रम पानी के भंडारण के लिए एक व्यवहारिक समाधान है, रामदेव झिंगुरी ने कहा। यहाँ लगभग 100 मीटर दूर सहाय चंद्रलाल आशावादी नजर आते हैं। सीमित जलापूर्ति के बावजूद उन्होंने अपने खेत का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। टमाटर की फसल इस वर्ष अच्छी रही है। इस सफलता का एक प्रमुख कारण ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, जो पानी की कमी के बीच सिंचाई का एक प्रभावी तरीका साबित हुई है। वहीं महेंद्रनाथ सिबालक ने भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी खेती में बदलाव कर एकल फसल की जगह अंतर फसली खेती अपनाई।

0: मुशर्रस में कम बारिश हो रही है, इसलिए जलाशयों में पानी का स्तर घटता जा रहा है। जलाशय जैसे मजबूत ढांचों के होते हुए भी आज वो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के सामने कमज़ोर हैं। मोवाकवा से लानी कोलिए, अमिडलैंड्स और बागातेल डैम तक ये सारे जलाशय कोई ना कोई कहानी दर्शाते हैं। गए ज़मानों में सूखे की स्थितियों के चलते आज की नस्लों के लिए इनका निर्माण किया गया था। आज सिर्फ पानी को स्टॉक करना एक मसला नहीं है, बल्कि इन संसाधनों का संचालन करना एक बड़ी चुनौती है। शैलिनी अबन की रिपोर्ट पर ये विवरण। दरअसल मॉरिशस के बड़े जलाशयों का इतिहास सूखे के दौरों और बढ़ती हुई आबादी की जल जरूरतों से जुड़ा हुआ है। मोवाकवा जलाशय देश के पानी सप्लाई नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। इसकी पहली बुनियादी संरचना 1885 में बनी थी। दशकों के दौरान इसे कई बार बढ़ाया गया और आज भी ये मॉरिशस का सबसे बड़ा जलाशय है, जिसकी स्टोरेज क्षमता करीब 26 मिलियन वर्ग मीटर है। उत्तर के हिस्से में रानी कोलिए जलाशय है, जो 1929 में शुरू हुआ था। देश की सबसे पुरानी पानी परियोजनाओं में से ये एक है। इसकी क्षमता 5 मिलियन वर्ग मीटर से ज्यादा है और ये आज भी इस क्षेत्र के पानी सप्लाई नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक और बड़ी बुनियादी संरचना है मिडलैंड्स डैम। इस डैम को सन 2002 में शुरू किया गया था। लगभग 25 मिलियन वर्ग मीटर की क्षमता के साथ देश में जलापूर्ति प्रणाली का ये एक रणनीतिक और जरूरी हिस्सा बन चुका है। इसके बाद सन 2017 में बागातेल डैम का उद्घाटन किया गया था, जिसने लगभग 15 मिलियन वर्ग मीटर की अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता जोड़ी। इससे खासकर मॉरिशस के केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों को काफी फायदा मिलता है। दक्षिण में रिविया दी ज़ोंगी बांध की परियोजना, जिसका जिक्र सन 2009 से हो रहा है, अभी भी पूरी तरह से ये हकीकत नहीं बन सकी है। हालांकि अध्ययन पूरे हो चुके हैं और फंडिंग समझौते पर भी दस्तखत किए जा चुके हैं, लेकिन बदलती मौसम चुनौतियों के सामने सिर्फ नए जलाशय बनाना काफी नहीं है। मॉरिशस को पानी के वितरण नेटवर्क में भी होने वाले नुकसानों को कम करना होगा, आपूर्ति प्रणाली को और बेहतर बनाना पड़ेगा और पानी का ज्यादा टिकाव तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पहले जलाशयों के बनने के एक सदी से भी ज्यादा समय बाद सबसे बड़ा मकसद आज भी वही है, हर आने वाली नस्ल के लिए अनमोल और जरूरी पानी स्रोतों की हिफाजत करना। अनाबेल सवाबादी नई जूनियर पर्यटन मंत्री बनी है और तुनिया पोलो नए जूनियर स्पोर्ट्स मंत्री। कल दोनों ने स्टेट हाउस रेजू में शपथ ली। करेन फुकुन स्पोर्ट्स मंत्रालय से पर्यावरण मंत्रालय की जूनियर मंत्री बन गई हैं। राजनीतिक सतह पर वेरोनिक लुगोविन ने कला एवं संस्कृति जूनियर मंत्री की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। उनके पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी के चलते ये फैसला उन्होंने लिया है। प्रधानमंत्री को सुनते
1: हैं। Nous pouvons même considérer, mais pas qu'on finalise ça, hein, si on n'a pas besoin de retourner le système PPS. Donc tout ça peut venir de voir.
2: Le poste, c'est par contre pas Véronique Lecovigne pour combien de
1: temps ? Non, parce qu'il lit, toujours, il n'a pas besoin de sens, il n'a aucun preuve contre lui, mais le fait qu'il y ait l'enquête, il y a une sens qui est meilleur, step down, aussi mondial.
0: Véronique Lecovigne et Nouveau Démocrate Parti, c'est bien, il s'est fait dire. Le Prime Minister a dit que Malina श्रीनिवास के सिट इन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उसने एक गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी की और उनके मुताबिक एक मंगलवार को राष्ट्रसभा के सामने प्रदर्शन करना गैर कानूनन है। फिर भी प्रधानमंत्री ने चार व्यक्ति समझकर ये प्रदर्शन होने दिया, लेकिन इन लोगों ने इस इजाज़त का गलत फ़ायदा उठाया है। प्रधानमंत्री कल स्टेट हाउस के जिमी प्रेस के सवालों का जवाब दे रहे थे।
1: Différent avec l'ancien régime. Moi, pas différent avec la police, moi. Vous devez faire ce travail. Et là, l'exemple. S'il y a un petit pouvoir, là, pourquoi la police pour débarquer contre Marie, Véronique Lecovigne, jamais parce qu'on a ça. Il y en a plein d'exemples, pas bon. Ici, on laisse la police faire ce travail. Ça m'a donné l'info, moi, avant, juste avant. On fait ce travail, on ne va pas interpréter du tout. Justement, là aussi, on ne va pas interférer, moi. Mais ce qui m'a appris, comme je me disais, c'est une explication. Ce qui m'a appris, c'est l'agression de madame policière qui est enceinte, dans ce ventre, plus une dette l'urine, l'eau, là,

0: principal tertiary chamboja. Madame Bizagia, quel est du monde oublié là? Dans Maudit, pas qu'un droit à faire protestation du monde par le monde. Dans la loi, ça. Maman, laissez, il y a quatre du monde, il faut faire protestation les yeux tranquilles. Alors là, quand vous laissez carré, vous donnez un pouce, vous prenez un pied.
1: कुछ मुर्शनों को पेंशन से वंचित रखने के सभी आरोपों का प्रधानमंत्री ने ठुकराया है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आश्वासन दिया कि किसी से पेंशन हक छीना नहीं जाएगा। उन्होंने पुष्टि की कि सरकार आज जिन मुश्किलों का सामना कर रही है वो एमएसएम सरकार की गलत संचालन का नतीजा है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
0: Les lambouddis, vous. Il n'a pas même compris qu'il veut dire moudis. Il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit il a tout prix monté. Parce qu'il n'a pas tout. Pour que vous regardiez ce que ça veut dire. Nous pas obligés écoute Moody's, mais nous avons une conséquence de Moody's. Nous rentrons dans, comme nous appelons, ils dégradent nous, disons. Et si vous dégradez, là, hein, si pas nous, là, ils finissent dégradés, là. Comment ils dégradent nous? Nous sommes dans junk state. Junk state, c'est ce que ça veut dire? Junk state veut dire, si vous investissez dans un pays qui est junk state, vous avez garanti que vous gagnez un casse-bas. Mais qui est-ce que vous investissez là, hein? Zéro. Au contraire, ben là, pour tirer sur le casse. Tirer sur le casse, vous êtes allé. Il est là qu'il nous fait. Conséquence, nous pouvons payer conséquence de mismanagement de MSM. Mais nous pouvons faire protestation là. Et puis, on peut dire, hein, pour causer avec la présidente, on peut attendre probablement dans vacances. Beaucoup moins, on peut causer. Et on peut dire, pas pour gagner pension d'un coup là. Fausse. Au contraire, nous faisons gagner une pension à 60 ans. Nous sommes capables de faire une fête.
1: आज राष्ट्रीय सभा के एजेंडे में दो अहम कार्य शामिल होंगे। इनमें पहली पढ़त पर वेटलैंड्स बिल की पेशकश और राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मोरिसिया के इस्तेमाल करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन शामिल है। आद्रिया वालिया की रिपोर्ट पर ये विवरण। दरअसल मॉरिशस के बड़े जलाशयों का इतिहास सूखे के दौरों और बढ़ती हुई आबादी की जल जरूरतों से जुड़ा हुआ है। मोगुवाक्वा जलाशय देश के पानी सप्लाई नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। इसकी पहली बुनियादी संरचना 1885 में बनी थी। दशकों के दौरान इसे कई बार बढ़ाया गया और आज भी ये मॉरिशस का सबसे बड़ा जलाशय है, जिसकी स्टोरेज क्षमता करीब 26 मिलियन वर्ग मीटर है। उत्तर के हिस्से में रानीकुलिया जलाशय है, जो 1929 में शुरू हुआ था। देश की सबसे पुरानी पानी परियोजनाओं में से ये एक है। इसकी क्षमता 5 मिलियन वर्ग मीटर से ज्यादा है और ये आज भी इस क्षेत्र के पानी सप्लाई नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहाँ आज राष्ट्रीय सभा के एजेंडे में दो अहम कार्य शामिल होंगे, इनमें पहली पढ़त पर वेटलैंड्स बिल की पेशकश और राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मोरिसिया के इस्तेमाल करने के लिए एक सिमिलर कमेटी का गठन शामिल है। आर्द्रभूमि यानी पानी से भरी जमीनें पर्यावरण के संरक्षण में एक अहम किरदार निभाती हैं। बाढ़ के खतरे कम होते हैं, बायोडायवर्सिटी की हिफाजत की जाती है और जहाँ ये वेटलैंड्स होते हैं वहाँ प्राकृतिक संतुलन भी होता है। रेजिस्टेंस से कार्टियन अचीव से डेविड सुवाश के मुताबिक जब एक निर्माण का ताल्लुक एक वेटलैंड से है तो सिर्फ इमारत या ढांचे का जायजा लेना जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे माहौल पर उसके असर का मूल्यांकन करना आवश्यक है, जैसे प्राकृतिक ड्रेनिंग, पानी की किस्म। डेविड सुवाश स्पष्ट करते हैं कि गाँव के इर्द गिर्द ऐसे वेटलैंड जोन स्थापित करना चाहिए ताकि सैलाब आपका मसला पैदा ना हो। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की जा रही है और ये ईरान के लिए आखिरी मौका है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसरे मुल्कों की दरख्वास्त पर अमेरिका ये बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अब तक ईरान के विदेश मंत्री ने वाशिंगटन के साथ बातचीत करने के दावे को झुठलाया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वन डर लायन ने पिछले हफ्ते स्पेन के घिरे हुए इलाके सियोटा में प्रवासियों के प्रवेश के सिलसिले में सामूहिक कदम उठाने की मांग की। स्पेन के मुताबिक अब तक 69,500 प्रवासी मोरक्को लौट चुके हैं। सरहद पर स्पेन की तरफ 72 लोगों की मौत हुई है और मोरक्को की तरफ 11 मौतें दर्ज हैं। आज इस मामले पर बातचीत करने के लिए

0: यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की आपात बैठक एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाई जाएगी। अब मौसम का हाल। आम हालत पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं और मस्केरिंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन विकसित हो रहा है। इसी वजह से ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिराएंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटू में बारिश होगी। दूसरे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। आज रात घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके तेज झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है, खासतौर पर पूर्व और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, साहेली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:23 पर हुआ है और सूर्यास्त 5:53 पर। आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। कल से पानी की सप्लाई में बदलाव, 2 घंटों के दौरान जलापूर्ति नहीं की जाएगी। देश में सूखे की स्थिति के मद्देनजर CWA को ये कदम मजबूरन उठाना पड़ रहा है। PPS प्रणाली शायद फिर से स्थापित की जा सकती है। कल प्रधानमंत्री ने वेरोनिक क्लुगोविन के इस्तीफे पर आधारित प्रेस के सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। आज राष्ट्रसभा में वेटलैंड्स बिल को पेश किया जाएगा। इसके अलावा संसदीय कार्यों के दौरान क्रेओल मोरिसियन पर स्ट्रेट कमेटी के गठन पर भी चर्चा। और स्पेन तथा मोरक्को की सरहद पर हजारों प्रवासियों के प्रवेश के सिलसिले में यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की आज एक आपातकालीन बैठक। तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे टेक्निकी साथी कादिया कुदादीन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब। अब शोक समाचार सुनिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Hamlet Road, Mont-Saint-André, mein 45 saal ke, 45 years old, Shri Sham Baidai, jo Sham ke naam se zyada jane jate the, ki mrityu ho gayi hai. अर्थी आज दो बजे इनके भाई नीतीश सिरतन के घर हैमलेट रोड मोसिल मोसैंट आंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसिल मोसैंट आंद्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शमें लामो लाग्रेमों सेंट पियर में 70 साल की 70 years old श्रीमती भागवंती तिलकदारी पैदाइशी नाम बोला जो भागवंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपैर तीन बजे इनके पति ज्ञानन तिलकधारी के घर शमैलामो लाग्रेमों सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्टों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नेहरू लेन फोंजूसाक में 62 साल के 62 years old श्री विद्याव्रत शर्मा दुलुआ जो भारत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज डेढ़ बजे इनकी पत्नी विद्यावती दुलुआ के घर नेहरू लेन फोंजूसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजूसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रामजीत लेन बालिसों रोजबेल में 69 साल की 69 years old श्रीमती सरोज सिकोरी पैदाइशी नाम बसवन जो नीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दोपहर बाद एक बजे इनके पति सुखदेव सिकोरी के घर रामजीत लेन बालिसों रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीशानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM। ला मेरी ओकूले में 73 साल की 74 years old श्रीमती मोहतरमा साबेरून कालू पैदाइशी नाम रामजान जो साबेरून के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 11 बजे इनके बेटे मोहम्मद सलीम नूरानी कालू के घर ला मेरी ओकू

0: चूल्हे से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 11 AM। रॉयल रोड पॉम्पलमूस में 63 साल के 63 years old श्री धर्मराज मनबुदुना जो धर्म के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज दो बजे इनके बेटे राजीव मनबुदुना के घर रॉयल रोड पॉम्पलमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 2 PM। पंडामानिकम लेन रैन्यो वाकुआ में 76 साल के 76 years old जनाब मोहम्मद वोसाली जो रशीद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज साढ़े दस बजे इनके घर पंडामानिकम लेन रैन्यो वाकुआ से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए सादाली वाकुआ की कल्ब इस्लाम मस्जिद और फिर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 10 AM। मधुलेन पालमा में 78 साल की 78 years old श्रीमती पद्मावती मधु पैदाशीना महादेव जो कोकोवाइन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज दो बजे इनके घर मधु लेन पालमाओ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। फाइल रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 66 साल की 66 years old के श्री तुलसीदास बलीराम जो राजेश भईवा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दस बजे इनके घर फाइल रोड हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेनो वाकुआ की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। टैगोर रोड लालमाची में 82 साल की 82 years old श्रीमती पुष्पावती चकुरी पैदाइशी नाम राम की सुन की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ग्यारह बजे इनकी बेटी मानती बहुआ के घर टैगोर रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 11 AM। रेलवे रोड शिमैगोनी में 77 साल की 77 years old श्रीमती लक्ष्मी गोइंदन गुंडान पैदाइशी नाम तिरुवंगादम जो नायेगी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज डेढ़ बजे इनके घर रेलवे रोड शिमैगोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1:30 PM। रिजर्वर रोड गांबे में 48 साल की 48 years old श्रीमती कुसनावटी लीलू पैदाइशी नाम तायनमैन जो आशा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके घर रिजर्वर रोड गांबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमीनुस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट ब्राज़ील में 77 साल की 77 years old श्रीमती धमुवंती राम केलावन पैदाइशी नामो मिया जो सरोज के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े दस बजे इनके घर डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट ब्राज़ील से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। B40 ग्रीव लातू के निक पॉइंट साबले में 63 साल के 63 years old श्री कृतानंद मदरा जो मधु मौशम पुमनामू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दस बजे इनके घर B40 ग्रीव लातू के निक पॉइंट साबले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शुबैल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। जानकी रोड पुत्रदो विलाज में 83 साल के 83 years old श्री बालकृष्ण चमन जो दानेश्वर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे इनके बेटे सुनील चमन के घर जानकी रोड पुत्रदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं। कौ

0: बीजिए गंगेश्वरनाथ शिवालय सभा द्वारा 1 अगस्त से शुरू हुई अपनी पूरण कथा का आयोजन 9 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे से पूजा कीर्तन और भजन तथा 7:30 बजे से कथा प्रवचन एवं आरती का कार्यक्रम हो रहा है।
1: सुबह के 6:57 और 20 सेकंड हुए हैं। Sports News. सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। राष्ट्रमंडल खेलों में 4 पदक और 15वां स्थान प्राप्त करने के बाद हमारे एथलीट्स, खिलाड़ी एवं अधिकारीगण आज सुबह 9:25 पर स्वदेश लौट रहे हैं। फिर कल सुबह इसी समय हमारा गोल्डन बॉय जूडो के अपने मंडल सहित देश में होंगे। गैमी फेये ने उल्लेखनीय है कि जूडो के लेस 90 kg वर्ग में हासिल स्वर्ण पदक हासिल किया है। वो मात्र खिलाड़ी है जिसने मॉरिशस को 28 साल बाद एक स्वर्ण पदक दिलाया। फिर नोएमी अल्फोंस ने 2 सिल्वर रजत के पदक हासिल किए और मैवेक्लेया को मिला 1 ब्रॉन्ज मेडल। इन सबको हार्दिक बधाई। मॉरिशस ने 15वां स्थान हासिल किया राष्ट्रमंडल खेलों में। अब बता दें कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स साल 2030 में अहमदाबाद भारत में लगने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइकिलिंग की बात करें, महिला टूर डी फ्रांस में तीसरे चरण में 5वां स्थान प्राप्त करने के बावजूद किमलेकू दे पिना जनरल क्लासिफिकेशन में अभी भी दूसरे स्थान पर है, यानी कि उम्मीद की किरण बाकी है। वो नोवे की सिग्रिद होगसेट से 2 मिनट 2 सेकंड पीछे है। सिग्रिद की ही कल तीसरे चरण में जीत हुई और बता दें कि आज चौथा चरण इसी महिला टूर डी फ्रांस का जारी रखा जाएगा। फुटबॉल में फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फेंटिनो की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, उसके विरोध में गिनती बढ़ रही है। फीफा के उस असफल प्लान का विरोध तो कई फेडरेशंस ने किया। अब इंग्लैंड के FA और वेल्स सहित स्कॉटलैंड भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगले साल के मार्च महीने में ज्ञानी इन्फेंटिनो एक और कार्यकाल के लिए मैंडेट के लिए वोटिंग की भी कामना कर रहा है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि इस बार वो नहीं जीत पाएगा। इस बारे में सुनते रहिए, कई देशों ने नॉन कोऑपरेशन, असहयोग की बात की है। जहां तक जोर्डन एंडरसन का सवाल है, लिवरपूल का ये पुराना मिडफील्डर चेल्सी में चला गया है। कल ही 2 साल के कंट्रैक्ट पर सहमति बन पाई और इस सीज़न से जोर्डन एंडरसन चेल्सी फुटबॉल क्लब में खेलने वाला है। चेल्सी के द ब्लूज शाबी अलोंजो के अंदर अभी इस सीज़न मैदान पे उतरेंगे। अलोंजो और जोर्डन एंडरसन कई सीज़न साथ खेल चुके हैं और इस प्रकार जोर्डन एंडरसन अब चेल्सी में जाने वाला है। अभी 2 दिन पहले ही डैनी वेलबेक को भी 2 साल के लिए चेल्सी ने साइन किया। लगता है द ब्लूज अपने बैकअप प्लान एकदम सॉलिड तैयार कर रहे हैं। सो जोर्डन एंडरसन भी अब चेल्सी में चला गया। फ्रेंडली मैचों की बात करने से पहले बता दें कि स्कॉटिश प्रीमियरशिप में कल सेल्टिक ने अपने पहले मैच में डंडी को 1-0 से दंड दिया। नाइग्रेन का ये मात्र गोल, सेल्टिक 1-0। इंग्लिश लीग कप के प्रीलिम राउंड में क्रॉले ने यॉर्क को 2-0 से परास्त किया। और फ्रेंडलीज में कल कुछ मैच खेले गए, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण मैच नहीं थे, इसलिए आज के मैचों पर यदि हम नज़र डालें तो UEFA चैम्पियंस लीग के 3rd क्वालिफाइंग राउंड में आज कई महत्वपूर्ण मैच खेले जाएंगे। फिर यूरोपा लीग के 3रे क्वालिफाइंग राउंड में भी आज कुछ मैच खेले जाएंगे और UEFA कॉन्फ्रेंस लीग में भी आज मैच खेले जाएंगे। क्लब फ्रेंडलीज में आज रात बायर्न म्यूनिख खेलेगी जेजू टीम के विरुद्ध। AS रोमा का मुकाबला न्यूपोर्ट से, जबकि बोर्नमुथ खेलेगा जेनोवा के विरुद्ध। एस्टन विला का मुकाबला BJPU से होगा। इस प्रकार कल सुबह इसी समय आपको हम कई अन्य नतीजों के बारे में जानकारी देंगे। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियाँ। सुबह के 7:01 और 40 सेकंड हुए हैं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।

0: सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर, जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं। आशा करते हैं कि एक बार फिर आप हमारे साथ दिल से साथ निभाएंगे ज़रूर। और मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन सभी के लिए ज़बरदस्त रहे, बस यही आशा रखते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के साथ आइए जुड़ते हैं। प्रथानुसार सुबह का नजराना कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हम करते हैं चिंतन के साथ, और डॉक्टर शांति मुहाबिया इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और सदाबहार गीतों के साथ आज की ये सुबह को अभी थोड़ी ही देर में हम प्रस्तुत करेंगे।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया, किसी का साथ नहीं देती है। इसीलिए गुणीजन कहते हैं कि अहंकार के अंधकार को बुद्धि पर हावी मत होने दीजिए। अहंकार विनाश की ओर अग्रसर कराता है, जबकि विनम्रता सृष्टि की जननी।

0: अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेलेपन से भाई क्या डरना है। जब अपने आप से दोस्ती कर ली जाए तो ये अकेलापन भी एकांत में परिवर्तित हो जाता है। अकेलेपन में डर लगता है पर एकांत में हमें मन में शांति की अनुभूति होती है। वैसे चलिए आपको झलकियों के साथ बताते चले रेडियो मॉरिशस पर कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं आज दिन भर के लिए।
1: रेडियो मॉरिशस झलकियां
2: झलकियां रेडियो मॉरिशस।
0: वैसे बताना ही भूल गए कि ये जो गाना अभी थोड़ी देर पहले हमने चलाया मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, बात एक रात की फिल्म से लिया हुआ गीत था। और चलिए इसी के साथ लाजवाब गीतों का ये सफ़र जारी रखते हैं। इस वक्त 7:10 हो चुके हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रत्ना के साथ, और इसी के बीच रखे हुए कुछ पुराने गीतों से सजाया हुआ ये सफ़र जारी रखा जाएगा। भोजपुरी समाचारों के साथ हम जुड़ेंगे बिल्कुल 8 बजे, और 8 बजे के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे गायक कलाकार के साथ जो ना केवल गायक कलाकार हैं, एक्टर भी रह चुके हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं और कॉमेडियन भी रह चुके हैं। अब वे कौन हैं बिल्कुल हो सकता है कि आप अंदाजा लगा पाएंगे, हम आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। जी हाँ, 9 बजे तक हमारा साथ रहेगा। उससे पहले बिल्कुल हम बताते हुए चले कि 8:50 पर किरण जानकी का साथ रहेगा हमारी धरोहर कार्यक्रम में, और उसी के लगकर हम एक भोजपुरी गीत का भी आनंद उठाएंगे। 9 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम, जी हाँ, आज की चर्चा का कार्यक्रम जो चलता है रेडियो मॉरिशस पर 9 बजे से 10 बजे के अंतर्गत। और आज की चर्चा का कार्यक्रम आज मंगलवार है और आपका साथ देंगे सुमिता सरकार। और बिल्कुल आज हम बात करेंगे महिलाओं के योगदान, जिसमें परिवार से लेकर विश्व तक महिलाओं का क्या योगदान रहा है इस पर। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो होंगे श्रीमान अश्विन कुतवाहू जी। तो आप ज़रूर इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं रेडियो मॉरिशस के लहरों पर, इसका सीधा प्रसारण MBC के तीसरे चैनल पर भी आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ इसी कार्यक्रम को आप दोबारा से सुन पाएंगे 3:00 से 4:00 के बीच रेडियो मनोरंजन पर। 10 बजे पुनः मैं उपस्थित रहूंगी आप ही की सेवा में भक्तिमय कार्यक्रम, जी हाँ। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत भजन भजन के साथ साथ आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में, साथ ही साथ हिंदू महासभा द्वारा कार्यक्रम ज्ञान चक्र जो बिल्कुल श्रावण मास के उपलक्ष में चलाया जाएगा भक्ति धारा कार्यक्रम के अंतर्गत। वैसे हमारा और आपका साथ 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे के समाचारों के बाद आप विविध भाषाओं के कार्यक्रम को सुन पाएंगे, जिसकी

पहल होगी शमे फरोसा कार्यक्रम के साथ, जो होगा उर्दू भाषा में, पेशकश रहेगी सैयदा सुबाई की। 12 बजे सौंदर्य लहरी तेलुगु भाषा का ये कार्यक्रम लेकर आएंगी वर्षा। 12:30 बजे सीताबाई का साथ रहेगा मराठी गीतों के कार्यक्रम में। 1 बजे आरएसी की प्रस्तुति में तमिल भाषा का कार्यक्रम। 1:45 बजे गुजराती गीतों का कार्यक्रम अमिता की प्रस्तुति में। 2 बजे आप सुन पाएंगे डेविड को मैंडरिन के कार्यक्रम में। 2:30 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जिससे प्रस्तुत करेंगी रोशनी। और बिल्कुल 4 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। वैसे आपको बता दें 4 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम पुनः आप एंजॉय कर सकते हैं कलाईवानी वीरन द्वारा। शाम के 5 बजे पुराने गीतों का सफर, भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की जाएगी उषा द्वारा। शाम 6 बजे देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन में। 6:30 बजे एक बार फिर कारवां आगे बढ़ेगा विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का, मैंडरीन के साथ इसकी शुरुआत होगी और बिल्कुल समाचारों के बाद यानी लगभग 6:30 बजे के करीब और हॉन्ग हॉन्ग इसे प्रस्तुत करेंगे। 7 बजे पुवना लेकर आएंगी तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे तेलुगु भाषा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा कृतिका की ओर से। 7:50 पर श्रीश रामा की प्रस्तुति में मराठी गीतों का कार्यक्रम रहेगा और 8:10 पर अनीता की प्रस्तुति में भजले प्रभु का नाम। 8:40 पर महफिले शब उर्दू भाषा का ये कार्यक्रम पेशकश रहेगी निसार अख्तर की। रात के 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे के अंतर्गत भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत किया जाएगा प्रताप सिंह द्वारा। रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच पुराने गीतों का सफर सुनहरे पल, जिसे लेकर आएंगी नीतुषा। रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह बिल्कुल आप सुन पाएंगे विविध भाषाओं के गीतों को। ओवरनाइट प्लेलिस्ट सजाई जाएगी हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा। वैसे हम आपको ये भी याद दिला दें, श्रावण मास के उपलक्ष में विविध कार्यक्रम चलते हैं सुबह 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, जिसमें आप विविध संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों को सुन पाएंगे, जिसमें 5:30 बजे सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन द्वारा कार्यक्रम रहेगा। 5:35 पर सनातन धर्म मंदिर परिषद, 5:40 पर हिंदू महासभा, 6:45 आर्य सभा मॉरिशस, 5:50 पर गहलोत राजपूत महासभा और 5:55 पर आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा। तो ये थी सूची हमारे रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों की। वैसे आपको ये भी याद दिला दें, आज दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के अंतर्गत, जी हाँ 2 बजे से 3 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर मैं एक बार फिर उपस्थित रहूँगी उड़ान की कहानी कार्यक्रम को लेकर। और आज की हमारी जो मेहमान हैं वो होंगी श्रीमती निवेदिता नाथू जी, जो वेलनेस स्टेप्स की अध्यक्षा हैं, और बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे, बातें होंगी और उनकी उड़ान की कहानी उन्हीं की जुबानी आज हम जानेंगे रेडियो मनोरंजन पर। तो चलिए गीतों के इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं और एक लेजेंडरी सिंगर की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना।

इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, बल्कि ज़्यादा उन चीज़ों से बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जाती है। इसलिए कम सोचे पर सही सोचे, बेवजह खुश रहिए, क्योंकि वजह जो अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेंगी। इसलिए बस छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढे, चहकते हुए पंछियों को देखकर, खिलते हुए फूलों को देखकर, अपने बाग बगीचों को देखकर बस यूं ही खुश रहिए। और चलिए, कहते हैं ना कि खुद को पसंद करना ही जिंदगी का जश्न है। कोई पसंद ना करे भाई, ये उनका प्रश्न है। सही कहा ना, लाजवाब गीतों के इस सफर में चलिए हम भी जुड़ चुके हैं आपका साथ देने के लिए। प्यार भरा ये गाना है आक्रमण फिल्म से लिया हुआ, और किशोर कुमार लता जी की प्यारी सी आवाज। लाजवाब मौसम के साथ गुनगुनाते हुए गीतों को एंजॉय कीजिए, ये भी किसी खुशी से कम नहीं।

कहाँ मिलते हैं ऐसे मौसम सुहाने। सफर, चाय, कुछ नए ख्यालात और गाने पुराने, केवल सुबह का नजराना कार्यक्रम में। बिल्कुल लाजवाब गीतों से सजाया हुआ ये कारवां हम लेकर आते हैं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके दिल को खुश करने के लिए, आपके दिन को तरोताजा बनाने के लिए, ताकि एक सुबह की शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हो, एक ताजगी के साथ हो। और पुराने गानों से लाजवाब बात और कोई हो ही नहीं सकती। चलिए इसी के साथ 7:29 और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए ले चलते हैं आपको और पुराने ज़माने की ओर, 1956 के ज़माने की ओर ले चलते हैं, जहां पर नज़र आई थी नादिरा, साथ नज़र आए थे जॉनी वॉकर, फिल्म थी समुद्री डाकू। और इस फिल्म का लाजवाब सा गीत हम चुनकर लाए हैं तलत महमूद और आशा जी की आवाज़ में, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो तलत महमूद के गीतों को सुबह सुबह सुनना बड़ा ही पसंद करते हैं। तो बिल्कुल हमने भी चुनकर ये गाना हमारे सिलेक्शन में रखा है। आशा करते हैं ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

वो हुस्न क्या जब उठ के निगाह को न फेर ले, वो इश्क क्या जो छेड़ के न जुल्फ को बखेर दे।

पर दिमाग से सोचे, दिल से सोचे तो अगर जिंदगी जीना चाहो तो रोज मौज ही मौज है। डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, जिंदगी को किस तरह से लेते हैं। चलिए इसी पर आधारित आज की ये एक छोटी सी कहानी जो हमें मिली है, हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और बिल्कुल कहानी का शीर्षक है कि समस्या का समाधान हम कैसे ढूंढ पाए। दोस्तों एक बार की बात है, भ्रमण करते हुए भगवान गौतम बुद्ध कौशाम्बी जा पहुंचे। कौशाम्बी की महारानी को गौतम बुद्ध से बड़ी ही घृणा थी। उनके कौशाम्बी आने पर वो उन्हें अपमानित करने के लिए अपने सेवकों को भेजने लगी। अब रानी के सेवक गौतम बुद्ध के पास जाते ही बस बहुत ही ज़्यादा बुरा भला उनके साथ बर्ताव करते, बहुत बुरी बातें उनसे कहते। ये देखकर गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे वो परेशान हो गए। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, तथागत हमें किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए स्वामी जी, और इस जगह के लोग हमें व्यर्थ में परेशान कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध बोले, यदि वहाँ भी ऐसा ही हुआ तो क्या करोगे? तो बोले, गुरुजी तो फिर हम वहाँ से निकलकर किसी और जगह चले जाएंगे। और तब गौतम बुद्ध जी ने कहा कि वहाँ भी अगर ऐसे ही लोग मिले तो क्या करोगे? तो बोले, तो फिर वहां से भी हम निकल जाएंगे, किसी और अन्य जगह पर चले जाएंगे। ऐसा कब तक चलेगा बंधु? हम जब तक भागते रहेंगे समस्याएं तो आती रहेंगी। हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए, समाधान करना चाहिए। अब समाधान के बिना समस्या जड़ से समाप्त नहीं होती, इसीलिए पलायनवादी सोच को हमें बिल्कुल छोड़ना चाहिए। शिष्य समझ गया कि भागने से समस्याएं नहीं भागती, समस्याएं नहीं सुलझती। उसने दूसरी जगह जाने का दिमाग से विचार ही छोड़ दिया। और ये छोटी सी कहानी बस हमें यही सिखाती है कि समस्या आने पर सामना करना है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की हिम्मत दिखानी है, कोशिश करनी है, ना कि खुद भागना है, ना कि खुद डरना है। डरना नहीं है, हमें डट के उसका सामना करना है। अब जीवन के हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं, और हर एक अलग अलग समस्याओं का समाधान भी अलग तरीके का होता है। पर हिम्मत तो वही जो हमारे भीतर बसती है। इसलिए चाहे जैसी समस्या हो, चाहे जैसी सिचुएशन खड़ी हो जाए, हमेशा स्माइल के साथ उन समस्याओं का डट कर मुकाबला कीजिए, सामना कीजिए। आपको ज़रूर उन समस्याओं में से हल मिल ही जाएगा।

भाई मुश्किलों के सदा हल दे, मुश्किलों के सदा हल दे, थक न सके हम फुर्सत के कुछ ऐसे पल दे, है दुआ यही है प्रार्थना यही दिल से कि सबका हो सुखद आज और उससे बेहतर हमारा कल दे। चलिए इसी लाजवाब गीतों के साथ, कुछ ऐसी बातों के साथ आपका दिल लुभा रहे हैं। और भाई वल्लाह क्या बात है, गाना हम लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की प्यारी सी आवाज़ में। पर उससे पहले ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि जितने भी लोगों ने हमें मैसेज भेजा है प्यार से नाम जोड़ने के लिए, डेडिकेशंस भेजे हैं, हम ज़रूर आप सभी का नाम जोड़ना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में इस गीत के बिल्कुल बाद। और ये गाना आप ही के लिए है। सूरत हो प्यारी, चेहरे पर मुस्कुराहट हो प्यारी,

0: करने के तौबा ये कैसे है अंदाज।
1: 1962 के दौर की मूवी वल्लाह क्या बात है, गाना भी कुछ ऐसा ही लाजवाब है, मोहम्मद रफी और आशा जी की प्यारी सी आवाज में। और चलिए इसी के साथ डेडिकेशन टाइम।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर

जिसका होता है, आपको बेसब्री से इंतजार है आपके नामों को। आज के इस कार्यक्रम में हम जरूर जोड़ना चाहेंगे और पहले तो हम एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपके मैसेजेस के लिए, आपके प्यार भरे कॉल्स के लिए। और चलिए, आप बहुत पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर नाम जोड़ना चाहेंगे। यहाँ पर कौंदमास से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कालिंदी जी, कालिंदी रामफल, अपने सभी परिवार के साथ। आपको भी श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्लोगयाल से माधुरी जी भी जुड़ चुकी हैं और साथ दे रही हैं। गोंगोप से हमेशा की तरह श्यामा रघुनंदन, भाई हैं जयप्रकाश, भाभी हैं नम्रता, केशव और युदीश, और आपकी प्यारी सखियाँ कौंदमास से हैं विश्वानी दुखी, और साथ साथ यहूश से वीना रामफल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। काथोबोन से माला सुमारू जी भी बड़े ही प्यार से आपके मैसेज को, आप कभी नहीं चूकती, सुबह सवेरे 6 बजे आपका मैसेज आ जाता है, थैंक यू सो मच। आज आपकी प्यारी बहू आशा सुमारू का जन्मदिन है, जो कनाडा में है। उनके पति हैं सुयश, बेटी है आयुषी, उनके जेठ है उत्तम। सभी सुमारू परिवार, खासकर सासू माँ माला और ससुर जी हैं सूर्य देव की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आशा सुमारू को। गायत्री जी भी नुवलफोंस से जुड़ चुकी हैं और बिल्कुल पानी की समस्याओं के बारे में आप आए दिन हमें बताते हैं, बिल्कुल हम समझते हैं इस समस्या को। और आपके प्यारे बेटे अजय, मामी कल्याणी मोहन मेबग से, भाभी शकुंतला मोताइलोंग से, और आपकी सखी, आपकी प्यारी दोस्त गीता बाई हमारे साथ हैं नुवल फ्रांस से, ढेर सारा प्यार आपको। वाकवा से शोभा जी भी जुड़ चुकी हैं, अनुषा, शर्वीना, अवनीश, अर्निवी, और मोचिदा से आपकी प्यारी बहनें प्रेमिला जयमंगल, वीना, और आपकी खास सखी राधा बाल गोविंद। गौपुआ से जुड़ी हुई हैं हमेशा की तरह शिवरानी जी, उनके सभी परिवार के साथ। क्योपिप से गीता जी भी साथ दे रही हैं, जिनका जन्मदिन था कल, यानी 3 तारीख को। आप 80 वर्ष की हो चुकी हैं गीता जी, आपको ईश्वर और भी साहस दे, हिम्मत दे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। आपकी प्यारी बेटी अंजनी जो यूके में रहती है, उनका भी जन्मदिन होगा 7 तारीख को, यानी शुक्रवार को। हम उनको भी

एडवांस में जन्मदिन की बधाई देते हैं। और यहाँ प्रेमिला सी गुलाम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कोंदमास से, और आपकी प्यारी बेटी रक्षा और दामाद अविनाश की शादी की सालगिरह है आज। आहाना और आयांश, उनके दो प्यारे बच्चे और सभी दशरथ परिवार जो हैं सैपिया से, उनको ढेर सारा प्यार देते हैं। साथ ही साथ हमेशा की तरह प्रेमिला जी की प्यारी बहनें रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार ग्रीष्मा फ्लाक से हमेशा साथ देती हैं, और अनसुया राम केलावन उनकी प्यारी बहन जिनका जन्मदिन था कल 3 तारीख को, आपको अनसुया जी ढेर सारी बधाइयाँ आपकी प्यारे बेटे नीतीश की ओर से, और नातिन है याना और आपकी प्यारी बहन प्रेमिला की ओर से। क्लाविट से हमेशा की तरह विजय बंधन और उनकी प्यारी पत्नी रेखा साथ देते हैं। बहनें हैं चंदनी बिंदु कुमारी और आपके सभी दोस्त हमेशा काम से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लफलोगा से राजन लक्ष्मण जी भी हमेशा साथ देते हैं, पत्नी माला, बहन बेटियां हैं प्रार्थना और प्रगति। हाईलैंड से हमेशा की तरह उषा जी भी साथ जुड़ी रहती हैं कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ। मौका से जुड़ी हुई हैं सुदेवी जी अपने बच्चों और पति के साथ। रोजबेल से नवीन लक्ष्मण जी, आप भी हमेशा साथ देते हैं। चित्रा जी साथ जुड़ी हुई हैं, और आज का ये मैसेज आया है अमृता जी की ओर से, अमृता ओबिलक जो हमेशा साथ देती हैं न्यू ग्रोव से, आपके पति हैं राज। और बिल्कुल नवीन जी के परिवार जो मेबर्ग से है निवेदिता और सच्चिदानंद जी, मौडालबिया से हैं ललिता और धनराज चरण जी, और गौबुआ से हैं रमेश और प्रीति जी। उदय जी इस वक्त हमारे साथ हैं रिवेजपुर से, आपकी प्यारी बेटी स्मृति का जन्मदिन है और ढेर सारी बधाइयां ढेर सारा आशीर्वाद पापा उदय और मामा संगीता की ओर से, और खासकर मंगेतर जेंसन की ओर से, और आपकी प्यारी होने वाली ननंद की भी जन्मदिन है जिनका नाम है मानसिनी और जो जन्मदिन मनाएंगी कल। चलिए सभी धनी राम परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। यहाँ पर ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से जुड़ी हुई हैं शीला जी पति साजन के साथ, आप भी कल अपना जन्मदिन मनाएंगी शीला जी, तो चलिए आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, और हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मानती जी जुड़ी हुई हैं नुवेल फ्रांस से, उनकी प्यारी बहनें अनंती और आरती हमेशा साथ देती हैं, यहाँ पर हमेशा साथ देते हैं गिरीशा मितिशा भव्य पुष्कल और हितांशु। इक्वायोस से जुड़ी हुई हैं मून और आपकी प्यारी नातीन निया का जन्मदिन था शुक्रवार को, यानी 31 तारीख को, 31 जून को आपने अपना जन्मदिन मनाया, 5 साल की हो चुकी हैं। दादी मून और दादा चांद की ओर से सभी फुकिया चंद परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार, और खासकर पापा अविनाश, मामा है नीलम, भाई है निक्षु, चाचा है अभिषेक, चाची जिंसके, और पुप्पू है अविशा, फूफा अश्ली की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। गीता जी है पोम्फेया से, और आपके प्यारे पति रोहित, साथ है आपके नाती आदित्य, आरव और तानिश, और आपकी नातिन है जानवी, 3 बेटे 3 बहुओं के साथ आप भी जुड़ चुके हैं। सुनीता जी घोंघुप से हमेशा साथ देती हैं, 3 प्यारी बहनें विमला अमृत और वीना जी। कॉटेज से है आशा जानू, सभी को श्रावण मास की पावन शुभकामनाएं, आपको भी हम कहेंगे, और आपकी मामा कुमारी, बहन है आरती, जीजू राज, और साथ है शुभम और ऋषभ। सुमिला इगामन इक्वायो से जुड़ी हुई हैं अपने पति गुलाब चंद की ओर से, और साथ ही साथ सभी इगामन का नाम इरामन परिवार का नाम जोड़ते हैं। वाकवा से नलिनी जोखन भी हमारा साथ दे रही हैं, और कतकुको से जुड़ी हुई हैं कमला जी, प्यारी बहन शिवरानी को जन्मदिन की ढेर बधाई देना चाहती है जिन्होंने 2 तारीख को रविवार को अपना जन्मदिन मनाया सभी रामनाथ सिंह परिवार की ओर से। आप रहती हैं सेंट जूलियन दुतमा, और साथ है आपके 3 प्यारे बच्चे नीतीश, आरती और नीता, और प्यारी बड़ी बहन कमला की ओर से सभी रामन और सिपोल परिवार का नाम जोड़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सेंट जूलियन विलाज से जुड़ी हुई हैं नीता खेदनी, सभी खेदनी परिवार के साथ। काट्रोबोन से हैं स्वस्ति, आपकी प्यारी बेटी लेखानी, बेटा है सुमित। पुद्गदो अमलेट से विश्वानी जी भी जुड़ चुकी हैं, आपके भैया रामनाथ, भाभी है सुबिता, 3 प्यारी बहनें इंदिरा रीटा और शारदा। हमेशा की तरह देवी जी आपका भी प्यारा सा मैसेज आ पहुंचा है, और लिस्पे गौस्त्री बुशे से किरण बारोट और उनका परिवार भी हमेशा साथ जुड़ा रहता है। कॉन्फ्लाक से अनीता जी, आप भी हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह साथ देते रहिएगा। लीलो जी यहाँ गौबुआ से जुड़ी हुई हैं, आज खेत

से नहीं पर घर से बात करती हैं और चार बहनों का नाम जरूर जोड़ना चाहेंगी। वाकवा से हैं कालो, आसिराल से मानती, प्लैंड माइयों से धर्मावती, त्याकूश से है बहन तारा और आपके साथ जुड़े हुए प्लैंड माइयों से आपके भाई राजन और भाभी हैं भानु। लक्ष्मी जी हमारे साथ बॉम्बू से साथ दे रही हैं, अक्षय और आशनी आपके दो प्यारे बच्चे, इंदिरा लॉटन आपका भी मैसेज आ चुका है, लंदन से पेपे फैमिली और ओलिविया से इस वक्त चिंता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आपके प्यारे चाचा विजय का जन्मदिन है कल यानी बुधवार 5 तारीख को जो है इंग्लैंड से, सभी परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो चलिए इसी के साथ एक बहुत ही लाजवाब सा गाना आपके नाम, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार बनाए रखने के लिए और इसी के साथ आते हैं अभी थोड़ी ही देर में समाचारों के बाद अगले कार्यक्रम को लेकर, नाम है एक छोटी सी मुलाकात, जहां पर मुलाकात करवाएंगे एक लेजेंडरी सिंगर से आपकी, तो साथ दीजिएगा जरूर।

0: हमसे सुनो।
1: नमस्ते और ही सलाम, फजर के 8 बजलबा। आवाजा समाचार सुना जा। पानी के रिजर्व घटता होला जात बा। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी फिर से अपन वितरण योजना पर गौर करता। आवत सोमवार से नए कदम लागू कर जाए सके। पूरा देश में पानी के सप्लाई में कटौती लावल जालबा। काल बुधवार से जल आपूर्ति के 2 घंटा से कम करे के फैसला लेवल कर 10 अगस्त से नवा कदम लागू करल जाल बाते। सिर्फ सब्जी के खेती के खेतों में सिंचाई करल जा सकेला। कौवाश स्थल के पीने के पानी इस्तेमाल करे के इजाज़त नहीं बा। मुरीस में कम बारिश होल बा, यही खातिर जलाशय में पानी के स्तर घटता बा। जलाशय जैसन मजबूत ढांचा के होते हुए भी आज उ जलवायु परिवर्तन के चुनौती के सामने कमज़ोर बाते। महुवाकुआ, लानी कोलिया, मिडलैंड और बागातल डैम, ये सारे जलाशय कोनू ना कोनू कहानी दर्शाएला। गल बरिस में सूखे के स्थिति के चलत आज के नवा नस्ल खातिर एकर निर्माण करल कर रहल बाते। अनाबेल सवाबादी नई जूनियर पर्यटन मंत्री बनेला और टोनी अपोलो नवा जूनियर स्पोर्ट्स मंत्री। काल दुनो स्टेट हाउस रेजी में शपथ लेलन। कारण फुकुन स्पोर्ट्स मंत्रालय से पर्यावरण मंत्रालय के जूनियर मंत्री बन गल। राजनीतिक सतह पर वेरोनिक ले गोविन कला एवं संस्कृति जूनियर मंत्री के हैसियत से इस्तीफा दे लेबा।

0: नवोदिमोक्रात पार्टी से भी इस्तीफा दे लेगा। राष्ट्रसभा के एजेंडा में आज दुगो अहम कार्य शामिल बातें, उमें पहली परहत पर वेटलैंड्स बिल के पेशकश बातें और राष्ट्रसभा में खेल मुगिसिया के इस्तेमाल खातिर एगो सिलेक्ट कमिटी के गठन शामिल बातें। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बताइले बा कि ईरान के संगे बातचीत करल जात बा और ईरान खातिर एगो आखिरी मौका बाते। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसर मुल्क के दरख्वास्त पर अमेरिका ये बातचीत करे के तैयार होलबा, लेकिन अब तक ईरान के विदेश मंत्री वाशिंगटन के साथ बातचीत करे के दावे के झुठलाए ले बा। तो ई रहर समाचार, नमस्ते और सलाम।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: मरनी के खबर सुना जा। B40 ग्रीव लाटू के निक पॉइंट साबले में 3 कोरी 3 बरिस के 63 साल श्री कृतानंद मद्रा, श्री कृतानंद मद्रा जुन माधु मौसम पुमदामू के नाम से जस्ती जाना जाता गुजर कर हवन इनका माथी आज 10 बजे इनकर घरे B40 ग्रीव लाटू के निक पॉइंट साबले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर शबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टूडे एट 10 AM। डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट रजिल में 3 कोरी 17 बरिस के 87 साल श्रीमती दमवंती रामकिलावन, श्रीमती दमवंती रामकिलावन पैराशी नामो मिया जिन सरोज के नाम से जस्ती जाने जात्र लन गुजर कल हवन इनकर माती आज दस बज के आधा इनकर घरे। डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट रजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टूडे 8:30 AM। रिजर्वर रोड खोबे में 2 कोरी 8 बरिस के 48 साल श्रीमती कुसनावती लीलू, श्रीमती कुसनावती लीलू पैदाशी नाम तायमान जुन आशा के नाम से जस्ट जान छात्रालन गुजर कल हवन इनकर माती आज एक बजे इनकर घरे। रिजर्वर रोड खोबे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्यामी न्यूज त्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टूडे 1 PM। रेलवे रोड शिमैघोनी में 3 कोरी 17 बरिस के 87 साल श्रीमती लक्ष्मी गोइंदन गोइंदान, श्रीमती लक्ष्मी गोइंदन गोइंदान पैदाइशी नाम तिरुवेंगदम जो नायेगी के नाम से जस्ती चाना जात्रा लन गुजर कल हवन इनकर माती आज एक बज के आधा इनकर घरे। रेलवे रोड शिमैघोनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कोंगोपाल शामुनी के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टूडे 1 PM। टैगोर रोड लाल माटी में 4 कोरी 2 बरिस के 90 साल श्रीमती पुष्पावती चकोरी पैदाइशी नाम राम किशुन गुजर गल हवन इनकर माती आज ग्यारह बजे इनकर बेटी मानती बहुआ के घरे। टैगोर रोड लाल माटी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावौचिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टूडे 11 AM। फाइल रोड हाईलैंड फिनिक्स में 3 कोरी 6 बरिस के 87 साल श्री तुलसीदास बोलीराम जिन राजेश भाई वा के नाम से जस्ती जान यात्रा लन गुजर कल हवन इनकर माती आज दस बजे इनकर घरे। फाइल रोड हाईलैंड फिनिक्स से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुल्फीनू वाकवा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टूडे 10 AM। मधु लेन पालमाओ में 3 कोरी 18 बरिस के 87 साल श्रीमती पद्मावती मधु पैदाइशी नाम महादेव जन ककोवाइन के नाम से जस्ती जान यात्रा लन गुजर कल हवन इनकर माती आज दो बजे इनकर घरे। मधु लेन पालमाओ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टूडे 8:00 PM। पांडामानिकम लेन रैन्यू वाकवा में 3 कोरी 16 बरिस के 87 साल जनाब मोहम्मद वौसाली जन रशीद के नाम से जस्ती जान यात्रा लन इंतकाल कर कल हवन जनाजा आज दस बज के आधा इनकर घरे। पांडामानिकम लेन रैन्यू वाकवा से उठा के सबसे पहले जनाजे के नमाज खातिर सादाली वाकवा के कल्बे इस्लाम मस्जिद और दफनाए खातिर रिश्ते के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टूडे 10 AM। रॉयल रोड पॉम्पलमूस में 3 कोरी 3 बरिस के 63 साल श्रीधरमराज मनबोदोना जन धर्म के नाम से जस्ती जाने यात्रा लन गुजर गल हवन इनकर माती आज दो बजे इनकर बेटा राजीव मनबोदोना के घरे। रॉयल रोड पॉम्पलमूस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पीतों के शमशान भूमि ले

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: चलिए इस वक्त 8:19 प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चलिए। ये विज्ञप्ति है आज के लिए यानी 4 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे के बीच रॉयल रोड पीतों, साथ ही साथ पुलिस स्टेशन पीतों और गवर्नमेंट स्कूल के आसपास के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। इसी के साथ आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
3: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,
4: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
2: रेडियो मॉरिशस पर एक छोटी सी मुलाकात और आज की एक छोटी सी लाजवाब सी मुलाकात हम आपकी करवाने जा रहे हैं एक ऐसे प्लेबैक सिंगर के साथ जिनका गीत अभी थोड़ी देर आपने पहले सुना, राम बलराम फिल्म का आशा जी और किशोर कुमार साहब की आवाज़ में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार साहब की। और जब हम बात करते हैं किशोर कुमार साहब की तो वे एक बिल्कुल मशहूर गायक, प्लेबैक सिंगर भारतीय सिनेमा के, जिनका जन्म हुआ 4 अगस्त 1929 को, यानी आज किशोर कुमार साहब का जन्मदिन है। वे एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने गए हैं और हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़ा, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गाना गाया है और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगिंग के लिए 8 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी जीते हैं और उस श्रेणी में सबसे ज़्यादा फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उस वर्ष के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार एक नया पुरस्कार घोषित किया हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए। बिल्कुल

0: बिल्कुल, उनका जो कार्यकाल रहा वो 1946 से लेकर 1987 तक, जी हाँ 58 ईयर्स की आयु में, यानी 58 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ मुंबई में।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: तो चलिए आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। ऐसे किशोर कुमार साहब का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहाँ के जाने माने वकील श्री कुंजीलाल जी के यहाँ हुआ था। और किशोर कुमार का मूल नाम आभास कुमार गांगुली था। और किशोर कुमार 4 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को बहुत ही याद किया। और वे जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर गाना गाते या किसी समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे तो गर्व से कहते थे कि किशोर कुमार खंडवे वाले, अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि से के प्रति ऐसी श्रद्धा और बहुत कम लोग आज के ज़माने में दिखा पाते हैं। वैसे उनके संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों, किसी भी गायक कलाकार को इस कदर नाम कमाने के पीछे की जो कहानी होती है वो बहुत कम लोग जान पाते हैं। आलिया आपको बताते हैं, जी हाँ, आज के इस समय में बहुत कम लोग ऐसी जगह हासिल कर पाते हैं जहाँ किशोर कुमार ने भारतीय सिनेमा उस स्वर्ण काल में संघर्ष शुरू किया था जब उनके भाई अशोक कुमार एक सफल सितारे के रूप में स्थापित हो चुके थे। और इसी के साथ साथ दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद साहब, बलराज साहनी, गुरुदत्त और रहमान जैसे कलाकारों के साथ ही पार्श्व गायन में उन्होंने साथ दिया था मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों का उस समय पर बोलबाला था। और किशोर कुमार की जब पहली शादी हुई थी तो उनके वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारे संघर्षों का बयां किया गया है। और जैसे उनकी जो पहली शादी थी वो थी रूमा देवी के साथ, और ये बहुत ज़्यादा नहीं टिकी थी, जल्द ही ये शादी टूट गई थी। और उसके बाद बिल्कुल किशोर कुमार साहब ने अपनी शादी की मधुबाला के साथ। उस दौर में दिलीप कुमार जैसे सफल और शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे अभिनेता जहां मधुबाला जैसी रूप सुंदरी का दिल नहीं जीत पाए थे, वहीं मधुबाला किशोर कुमार की दूसरी पत्नी बनी। 1961 में बनी फिल्म झुमरू, जी हाँ, इस फिल्म में भी वे दोनों साथ में नजर आए थे। और इस दौरान कह सकते हैं कि ये फिल्म जो थी किशोर कुमार द्वारा निर्देश उन्होंने खुद निर्मित भी की थी और उन्होंने खुद ही इस फिल्म का निर्देशन भी किया था। के बाद दोनों ने 1962 में बनी फिल्म हाफ टिकट में भी एक साथ काम किया। और इस दौरान किशोर कुमार ने यादगार कॉमेडी पर अपनी एक बहुत ही अलग छवि पेश की। 1969 में मधुबाला जी की मृत्यु हो गई और 1976 में, यानी एक बहुत लंबे समय के बाद, उन्होंने योगिता बाली जी से शादी की, पर यह भी बस कुछ महीनों के लिए टिकी थी। इसके बाद योगिता बाली जी ने आगे चलकर मिथुन चक्रवर्ती से शादी की। 1980s में किशोर कुमार ने चौथी शादी की लीना चंदावरकर के साथ। और ये भी आपको शायद ही पता होगा कि लीना चंदावरकर जी जो थी वो उम्र में उनके बेटे यानी अमित कुमार से केवल 2 साल बड़ी थी। चलिए, गीतों का सफ़र है तो गीतों के इस सफ़र में किशोर कुमार जी पर फिल्माए कुछ ऐसे गाने और जो उन्होंने खुद गाए हैं, ऐसे ही कुछ गाने आज के सफ़र में हमने शामिल किए हैं। और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि गांगुली ब्रदर्स इस फिल्म में नज़र आए थे। बिल्कुल सही पहचाना आपने, चलती का नाम गाड़ी। और इस फिल्म का ये मशहूर सा गाना जिसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों साथ नजर आए थे, किशोर कुमार और मन्ना डे साहब की आवाज में रखा हुआ ये लाजवाब गीत
2: बाजू।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: अब आप खुद सोच ही सकते हैं कि इतने ज्यादा वॉइस डायमेंशंस के साथ किशोर कुमार ने अपनी एक अलग ही छाप, एक अलग ही छवि बना ली बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जहां एक ओर उनके एक्टिंग का बोलबाला, उसी दूसरी ओर आप उनकी गायकी में भी वो लचक, वो लचीलापन, वो डायमेंशनल सिंगिंग आपने सुनी होगी उनकी आवाज। और मनोज कुमार साहब की जुबानी, जो उन्होंने खुद कहा था कि मनोज कुमार साहब ने कहा था कि किशोर कुमार को लेकर एक यादगार किस्सा उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में सुनाया कि एक बार उनकी फिल्म उपकार के लिए किशोर कुमार को गाना गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। अब ये कहकर वे भाग खड़े हुए कि वे तो फिल्म के हीरो के लिए ही गाना गाते हैं, किसी खलनायक पर फिल्माया हुआ कोई गाना वे नहीं गा पाएंगे। लेकिन उपकार का वो गाना आपको शायद याद होगा, कस्मे वादे प्यार वफा सब। जब ये हिट हुआ तो किशोर कुमार साहब मनोज कुमार के पास गए और कहने लगे कि इतने अच्छे गाने का मौका उनसे छूट गया। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की ये स्वीकार करने में कि मन्ना डे साहब ने जिस खूबसूरती से इस गीत को प्रस्तुत किया, इस गीत को गाया, ऐसा तो मैं कई जन्मों तक नहीं गा सकूंगा, ये खुद किशोर कुमार साहब ने एडमिट किया था। और अच्छा ही हुआ कि मैंने इस गीत को नहीं गाया, ऐसा किशोर कुमार साहब ने कहा, वरना लोग इतने अच्छे गीत को मन्ना डे की इस खूबसूरत आवाज से बिल्कुल वंचित रह जाते। किशोर कुमार की जगह लेने के लिए किसी के लिए भी असंभव, ये ऐसा कहा था आशा ताई ने। अनुभवी आशा गायक आशा भोसले जी ने खुद अपने शब्दों में ये कहा था कि किशोर कुमार वन एंड ओनली है। उसने हर किसी को अपनी मज़ेदार आवाज़ के साथ घुमाया और यहाँ तक कि उसके चारों ओर हर किसी को हमेशा वे खुश कर देते थे। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने हाफ टिकट और झुमरू फिल्म का ये जो गाना हमने चलाया, जब कभी आपका मूड खराब हो जाए बस किशोर कुमार के किसी भी गाने को आप लेकर सुन लीजिए, खासकर जो बहुत ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने गाया, जैसे पड़ोसन का गाना आज भी जब हम सुनते हैं, आप चाहे किसी भी तनाव में क्यों ना हो, किसी भी माइंडसेट, किसी भी मूड में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर हंसी आ ही जाती है। और गायक आशा भोसले का ये भी कहना था कि देर से गायक किशोर कुमार एक तरह का था, लेकिन किसी के लिए अपना स्थान लेना वो असंभव है। और कह सकते हैं कि संगीत रॉयल्टी शो दिल है हिंदुस्तानी 2 के एक एपिसोड के लिए उन्होंने शूटिंग करते हुए कहा था कि गायक किशोर कुमार के बारे में एक बयान उन्होंने कहीं पर पढ़ा था कि उन्होंने 1957 की फिल्म आशा से गीत इना मीना डिका को रिकॉर्ड करने के बारे में भी बहुत सारी बातें उन्होंने साझा की थी। आशा जी ने कहा था कि किशोर कुमार एक
0: के साथ
1: बहुत ही मजेदार आवाज और बहुत ही मजेदार शख्सियत है, उस संगीत उद्योग के लिए एक असली मणि है, डायमंड है, और मैंने हमेशा उसके साथ काम करने का आनंद लिया।

है आज किसी के लिए अपना स्थान लेना वास्तव में असंभव है, ऐसा खुद आशा जी ने कहा था। वैसे उनकी जर्नी जो है बहुत ही लाजवाब रही। किशोर कुमार साहब इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे और उनकी आदत थी कि कॉलेज के कैंटीन से उधार ले

भी बहुत मायने रखती थी। और किशोर कुमार जब कैंटीन वाले से 5 रुपया 12 आना उधार हो गए और कैंटीन का मालिक जब उनको अपने 5 रुपया 12 आना चुकाने को कहता तो वे कैंटीन में बैठकर ही टेबल पर गिलास और चम्मच बजाकर 5 रुपया 12 आना गाना गाकर कई धुन निकालते और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते। बाद में उन्होंने अपने गीत में इस 5 रुपया 12 आना वाले वाली जो बात थी वो भली भांति का उस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था और बहुत कम लोगों को 5 रुपया 12 आना वाले गीत की इस मूल कहानी को पता रखते होंगे वे। और बिल्कुल लाजवाब गीतों का ये सफ़र, और ये सफ़र जो है जहाँ पर हम आपकी मुलाकात करते हैं एक ऐसे कलाकार के साथ, और आज जब हम बात करते हैं किशोर कुमार साहब की, तो ये जो गाना है इस गीत में मजाक तो नहीं पर कितना ज़्यादा दर्द भरा हुआ है ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए, आप सोच रहे होंगे कौन से गाने की हम बात कर रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको ये गाना। इसका जो हर शब्द है वैसे दर्द तो नहीं कहेंगे पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल गाना है कि जीवन के हर सफर में आपको मन मौजी बने रहना है।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: बिल्कुल किशोर कुमार साहब आज अपना जन्मदिन, आज उनका जन्मदिन है और किशोर कुमार साहब के जीवन की हम कह सकते हैं कि अभिनय की जो उन्होंने यात्रा शुरू की थी 1946 में आई फिल्म शिकारी से हुई और इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में बनी फिल्म जिद्दी, जिसमें देवानंद साहब के लिए उन्होंने गाना गाया था और किशोर कुमार के एल सहगल के विशिष्ट प्रशंसक, यानी वे उनके बहुत ही बड़े फैन थे और इसीलिए उन्होंने ये गीत और गायन की जो शैली है वो उन्होंने अपनाई थी। यानी हम कह सकते हैं कि के.एल. सहगल के गाने सुन सुनकर किशोर कुमार साहब के मन में भी आया कि भाई उनको भी एक दिन सिंगर बनना है, गायक बनना है। और जिद्दी की सफलता के बावजूद उन्हें ना तो पहचान मिली थी ना कोई खास काम मिला, यानी देखा जाए तो शुरुआती तौर पर उनको कोई पहचानता ही नहीं था। उन्होंने 1951 में फनी मजुमदार द्वारा निर्मित फिल्म आंदोलन में हीरो के रूप में, यानी एक लीडिंग रोल उनको प्राप्त हुआ था, पर वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। 1954 में उन्होंने बिमल रॉय की फिल्म नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका निभाकर अपनी प्रभावकारी अभिनय प्रतिभा से लोगों को परिचित किया। इसके बाद 1955 में बनी बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मिस मैरी और आशा जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1958 में बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों के साथ काम किया था और उनकी अभिनेत्री बनी मधुबाला। और ये भी मज़ेदार बात है कि किशोर कुमार की शुरुआत की कई फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज़ दी थी। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म रागिनी तथा शरारत में किशोर कुमार को अपनी आवाज़ उधार दी थी, जो मेहनताना लिया सिर्फ एक रुपया, यानी एक रुपए का उन्होंने काम किया था। और काम के लिए किशोर कुमार सबसे पहले एसडी बर्मन के पास गए थे, जिन्होंने पहले भी उन्हें 1950 में बनी फिल्म प्यार में गाने का मौका दिया था और एसडी बर्मन ने उन्हें फिर बाहर फिल्म में भी एक गाना गवाया था और कसूर आपका, और ये गाना बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। लाजवाब फिल्मों के इस सफर में, बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही गीतों को हम तो भाई बहुत सारे गाने चुनकर लाए थे, पर क्या करें, कहते हैं ना कि ये सेगमेंट इतना छोटा है। और जब हम एक गायक कलाकार की बात करते हैं, एक लेजेंडरी सिंगर की बात करते हैं, आय हाय उनके तो हर गाने में कितना लाजवाब मज़ा है ये तो आप जानते ही होंगे। और इसी के साथ चलिए, आपके लिए हम ये आखिरी गाना लेकर आए हैं, फिल्म पड़ोसन का आखिरी गाना, इसीलिए क्योंकि समय का इशारा बस यही कह रहा है कि हमें थोड़ी ही देर में जुड़ना है हमारी अगली कड़ी के साथ। तो बस आशा करते हैं कि इस गीत के साथ भी आपके चेहरे की रौनक, आपके चेहरे की मुस्कुराहट और किशोर साहब किशोर दा की जो आवाज है उसकी एनर्जी आप तक जरूर पहुंचेगी। वैसे ये तो बताना ही भूल गए कि किशोर कुमार साहब जो थे, जब भी गाना गाते थे, जिस मूड का गाना हो वो उस ढंग के कपड़े पहनकर गाना पसंद करते थे, ताकि उस गीत का मूड जो है वो पूरी तरह से उनकी आवाज़ के द्वारा झलक के बाहर आए।

0: जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: तो श्रोताओ, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं हमारे अगले चरण पर, यानी अंतिम चरण पर हम कह सकते हैं, बिल्कुल हमारी धरोहर कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करती है किरण जानकी। और इसी के साथ सुबह का नजराना कार्यक्रम बस यहीं समाप्त हो जाएगा। थोड़ी ही देर में 9 बजे के समाचारों के बाद आप जुड़ पाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम में। तो आइए पहले तो स्वागत करते हैं किरण जानकी जी का हमारी धरोहर कार्यक्रम में।
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
4: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। कल हमने चर्चा शुरू कर ले रही जा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर, और हमने देख ली जा कि कैसे ई दीवार के जोन ढांचा बा उ दुनिया के 7वां अजूबा में गिनल जाला, और ई एगो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा होला जगह है, साथ में ई एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आज देखब जा कि ई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जे कि देखे खातिर दुनिया भर के लोग जुटे लन जा, एकर अंकन वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के कौन शर्त पर हो रहल, और एकर जोन विशेषता है उका है। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के 5 गो क्राइटेरिया, 5 गो शर्त पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करल गल बा। पहला जोन शर्त है वह मिंग डिनास्टी के ग्रेट वॉल के रंग रूप ही अद्भुत नहीं बा, बल्कि ओकर निर्माण भी संपूर्ण पेफिक्सियों से करा गल बा। ई पूरा रूप से एगो मास्टरपीस है। ई उ अकेला हाथ से बनावल ढांचा है ई पृथ्वी पर जोन चांद से भी नजर आवेला। ई दीवार एगो पूरा कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा जगह ले ले बा, और एगो बहुत ही निपुण उदाहरण है जहाँ आर्किटेक्चर लैंडस्केप बहुत सुंदर रूप से घुल मिल गल बा। दूसरा जोन शर्त बा उ ई कि चंग्यू पीरियड के दौरान चीनी लोग अपन जोन कंस्ट्रक्शन मॉडल बा और अपन उलोके लेसपास बा ओके अपन प्रतिरक्षा कार्य में और उत्तर के जोन सरहद बा ओकर पर स्थापित कर लनसा, ओकर पर एम्पोजे कर लनसा। तीसरा शर्त है ग्रेट वॉल प्राचीन सभ्यता के अनोखा गवाह, कहे कि एकर कुछ भाग गांसू

0: प्रोविंस में मिंग जमाना से बा, मतलब कि ये बहुत ही पुराना एगो दीवार है जोन बने के शुरू हो रहा। चौथा शर्त है कि ये जटिल जोन कल्चरल प्रॉपर्टी बा एगो मिलिट्री आर्किटेक्चरल एंसेंबल है। एकर अनोखा और एकमात्र उदाहरण है जोन अपन उद्देश्य के 2000 बरिस तक पूरा कर लेबा, लेकिन साथ ही बदलती राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार एकर जोन प्रतिरक्षा के तकनीक बा ओकर में नवापन आने लगल बा। अब पांचवा और छठा शर्त है कि ग्रेट वॉल चीन के इतिहास में अद्वितीय है। एकर मकसद रहल चीन के प्रतिरक्षा बाहरी हमला के खिलाफ करेगी, लेकिन साथ ही चीनी सभ्यता के जिंदा रख के ओके बचावे के भी एकर उद्देश्य रहल। एकर निर्माण बहुत दुख और त्याग से करा गल बा। एक खातिर चीनी साहित्य में ग्रेट वॉल एगो रेफरेंस है, एगो उदाहरण है। ग्रेट वॉल उस सब टैंजिबल मूर्त आध्यात्मिक ऐतिहासिक पहलू के बचा के रख लेबा जोन ओकर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू दर्शावेला। ग्रेट वॉल अपन जोन मौलिक स्थान बा ओरिजिनल प्लेस, ओकर जोन निर्माण के सामग्री बा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ओकर जोन रूप बा टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर के प्रिजर्व करके रख लेबा, ओके सुरक्षित रख लेबा, संरक्षित रख लेबा। त ई रहल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कौन कौन शर्त पर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करा गल बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद। नमस्ते, कल फिर मिलब जा।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ।
2: तो चला इसी के साथ किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और गोवर्धन कुमार के आवाज में रखल है अगला गीत, और है भोजपुरी गीत संगे जुड़ब जा 9 बजे के समाचारों के साथ। और 9 बजे के बाद तू सुने सकब आज की चर्चा कार्यक्रम, जेकर सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर रही और साथ ही साथ MBC के तीसरा चैनल पर है कार्यक्रम के सीधा प्रसारण तू देखे सकब। तो चला इसी के साथ सुनते रहिए, साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस पर हमनी के। और हम अब सब कोई के साथ देव जा 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में। तब तक नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मंगलवार 4 अगस्त, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर सुमैरा आ चुकी है। सुमैरा, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार राधा। पानी के रिजर्व घटते जा रहे हैं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने फिर से अपनी वितरण योजना पर गौर किया है। आते सोमवार से नए कदम लागू किए जाएंगे। पूरे देश में पानी की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कल बुधवार से जल आपूर्ति को 2 घंटों से कम करने का फैसला लिया गया है। कौवाश स्थलों को पीने का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। उच्च दबाव वाली मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और नल पानी से स्विमिंग पूल को भरने की अनुमति भी नहीं होगी। अनाबेल सवाबादी नई जूनियर पर्यटन मंत्री बनी है और टोनी अपोलो नए जूनियर स्पोर्ट्स मंत्री। कल दोनों ने स्टेट हाउस रेजी में शपथ ली। कारेन फुकुन स्पोर्ट्स मंत्रालय से पर्यावरण मंत्रालय की जूनियर मंत्री बनी है। राजनीतिक स्तर पर वेरोनिक लुगोविन ने कल एवं संस्कृति जूनियर मंत्री की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। उनके पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने नुवो डेमोक्रेट पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामेंट्री प्राइवेट सेक्रेटरीज पीपीएस प्रणाली फिर से स्थापित की जा सकती है। स्टेट हाउस रेजी में कल नए जूनियर मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने प्रेस के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने राष्ट्रसभा के सामने मालिना श्रीनिवास के सिटिंग को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उसने एक गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि एक मंगलवार को राष्ट्रसभा के सामने प्रदर्शन करना गैर कानूनी है, फिर भी प्रधानमंत्री ने 4 व्यक्ति समझ कर ये प्रदर्शन होने दिया, लेकिन इन लोगों ने इस इजाज़त का गलत फ़ायदा उठाया है। आज राष्ट्रसभा के एजेंडे में 2 अहम कार्य शामिल होंगे। इनमें पहली पढ़त पर वेटलैंड्स बिल को प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रसभा में क्रियोल मोरिशिया के इस्तेमाल करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन भी किया जाएगा। विदेश में यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वन डर लायन ने पिछले हफ्ते स्पेन के घिरे हुए इलाके सियुता में प्रवासियों के प्रवेश के सिलसिले में सामूहिक कदम उठाने की मांग की। स्पेन के मुताबिक अब तक 69,500 प्रवासी मोरक्को लौट चुके हैं। सरहद पर स्पेन की तरफ 72 लोगों की मौत हुई है और मोरक्को की तरफ 11 मौतें दर्ज हैं। आज इस मामले पर बातचीत करने के लिए यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की आपात बैठक एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाई जाने वाली है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 4 अगस्त, आप सभी का स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा इस प्रोग्राम में। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, इस प्रोग्राम को इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर और इसे आप साथ ही में देख पा रहे हैं MBC प्ले ऐप पर भी। आपको ये भी याद दिला दें कि ये जो प्रोग्राम है इसका रिब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही MBC के चैनल 3 पर सपहर के 4 बजे। तो चलिए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। ऐसे तो मंगलवार को आपको पता ही है, खासकर हम या तो शिक्षा से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं, कभी कभार किसी सामाजिक जो है विषय को भी हम लेकर आते हैं। आज हमने सोचा क्यों ना महिलाओं के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। महिलाओं का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है, हमारे परिवारों में तो है ही, साथ ही हमारे समाज में भी, देश के विकास में भी, और साथ ही जो है ग्लोबली भी महिलाओं के योगदान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मिस्टर अश्विन कतवारू जी जुड़ चुके हैं। अश्विन जी जो है फाउंडर प्रेसिडेंट है लकी चाइल्ड स्पेशल एजुकेशन नीड्स एसोसिएशन के, साथ ही वो सामाजिक और जो है सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी अपना योगदान देते हैं। जूरिस्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर्स में भी जो है इनका काफ़ी योगदान है, साथ ही इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन से भी जो है इनका नाता है, और बच्चों और नौजवानों के लिए काफ़ी काम करते हैं, मेंटर भी है और साथ ही फाउंडर है JP नारायण सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड पीस के। तो चलिए अश्विन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, नमस्कार आपको। और महिलाओं की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कह सकता है कि महिलाओं का योगदान नहीं है उनके जीवन में। अगर हम परिवार से शुरू करते हैं तो बच्चे के लिए पहली गुरु कहे वो माँ ही होती है, जो उसे जन्म तो देती ही है, साथ ही पालन पोषण भी करती है, और जीवन में आगे बढ़ने की जो नींव होती है वो कहीं ना कहीं माता पिता के द्वारा ही होती है। तो जब हम परिवार की बात करते हैं, निजी जीवन की बात करते हैं, तो महिलाओं को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, उनके योगदान को?
2: सुमित जी, सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने हमको यहाँ पर बुलाया और इस विषय में बोलने का योग समझा, तो आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: पहली बात है कि जब हम घर से निकलते हैं, काम पर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो जब कहाँ से निकलते हैं वो घर है। और आखिर तो मैं मुझको पता नहीं है, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग जो माता है वो देखभाल करती है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस दुनिया के इस सभा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो माता ही ऐसी व्यक्ति है जो बच्चों का पालन पोषण करती है
1: जी।
2: और जितने जो जैसे व्यवहार कैसा होना चाहिए,
1: हमारा आचरण कैसा होना चाहिए,
2: डिसिप्लिन, ये सब तो घर से शुरू होता है। और जो बच्चा घर से निकलता है वो जो माता जी के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है तो आगे चलकर काम में उन्नति करता है और आगे जो समाज का भविष्य का वो नींव बनता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे आचरण की बात करें, हमारे व्यवहार की बात करें, कभी कभार एक बच्चा जब समाज में प्रगति करता है, अच्छा कार्य करता है, समाज के प्रति अपना योगदान देता है, तो सबसे पहली बात जो व्यक्ति देख रहा है उसे उसके मुंह से यही निकलता है कि इसे जो है अच्छे संस्कार मिले हैं। और संस्कारों का जो भार है वो कहीं ना कहीं माताओं पर ज़्यादा है, इस पर आपके क्या विचार है?
2: हाँ, ये तो एक पहली बात जो है,

0: जो बोलते हैं जो एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम एंड्स इन द टूम, तो जब बच्चा माता जी के घर में होता है तब से वो शिक्षा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माता ही एक ऐसी है कि बच्चों को नज़दीक से देखते हैं, तो इसीलिए माता जी को इतना बड़ा दर्जा दिया है,
1: दर्जा दिया जाता है, बिल्कुल।
0: और पहला गुरु होता है बच्चों का
1: जी। और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ महिला दिवस पर ही महिलाओं के योगदान के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं की बात करें तो माँ के रूप में, बहन के रूप में और अन्य हमारे रिश्ते नातों के रूप में महिलाएं हमारे जीवन का, हर रोज़ के जीवन का हिस्सा है, है ना। सुबह उठते ही हम सबसे पहले माँ को याद करते हैं, भले एक बच्चे की शादी भी क्यों ना हो जाए, कितने साल भी क्यों ना हो जाए, आज भी हम एक दिन में एक बार अपनी माँ से बात किए बगैर नहीं रह पाते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और संस्कारों की बात करें, अभी के समय में जो है लाइफस्टाइल हमारी काफ़ी बदल गई है, जीवन शैली अभी जो नए तौर तरीके हैं उसके चलते काफ़ी प्रभावित हुई है, और आजकल बच्चों में संस्कारों की कमी देखी जा रही है। शायद काफ़ी बाहरी इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से कह सकते हैं, या काफ़ी फैक्टर्स है, तो इस पर आपके क्या विचार है?
0: वैसे देखेंगे तो जो यूनिट होता है जो परिवार का, उसमें माता होता है, एक पिता होता है
1: जी,
0: और कभी कभी भाई बहन भी होते हैं। तो आगे देखते थे तो एक एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करता था, तो एक्सटेंडेड फैमिली में दादा दादी चाचा चाची सब इकट्ठे रहते थे। अब देखेंगे अभी नए दौर में माता पिता और बच्चों के साथ रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। तब न्यूक्लियर फैमिली के दौर में देखेंगे तो बच्चों का जो स्कूल जब समाप्त होता है, घर पर आते हैं तो माता पिता काम पर रहते हैं, तो कौन बच्चे का देखभाल करेगा?
1: कर रहा है, बिल्कुल।
0: हाँ, तो एक साधन है कि उसके हाथ में मोबाइल थमा दें, या वो टीवी देखेगा या ट्यूशन जाएगा
1: जी।
0: तो ये आधुनिक मॉरिशस का अभी स्थिति है,
1: मॉरिशस ही के परिप्रेक्ष्य में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्लोबली यही चीजें हमें देखने को मिल रही है।
0: ग्लोबली है, लेकिन फिर भी ग्लोबल में देखेंगे तो कानून भी है कि बच्चों को अकेले 16 साल के नीचे नहीं रखना चाहिए, छोड़ना होता है।
1: कई देशों में ऐसा है,
0: जैसे इंग्लैंड हो गया
1: जी,
0: तो और भारत के वर्ष में देखेंगे तो वहाँ पर भी ये सिस्टम हो गया है कि एक न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन उन लोगों के साथ एक हेल्प होता है,
1: एक हाउस हेल्प कहे या केयरटेकर कहे।
0: तो यहाँ पर सुविधा ज़्यादा हम देखने को नहीं मिलता है
1: जी। अच्छा,
0: तो बच्चे अपने आप रहते हैं और तब देखेंगे तो सहारा हो जाता है टीवी या मोबाइल या फोन
1: जी,
0: तो यही एक साधन हो जाता है बच्चों को।
1: और समय के साथ बच्चे जो है अपने, अभी खासकर हम बच्चों की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, और अभी तो हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे छुट्टियों पर हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो इस कार्यक्रम को अवश्य सुन रहे होंगे और कार्यक्रम से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उठा रहे होंगे। अगर हम बात करें महिलाओं के रोल की, आज से कई वर्षों पहले जो है मॉरिशन समाज में जो है महिलाओं का, परिवारों का बड़ा योगदान रहा है। आज जो एक खुशहाल जीवन शैली हम व्यतीत कर रहे हैं, आज हम जहाँ हैं, जिस तरह के जो है वर्तमान को जी रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले वो काफ़ी संघर्ष से भरा रहा, तो चाहेंगे कि एक नज़र हम उस पर भी दौड़ाएं।
0: हाँ, आगे आगे था कि माता ज़्यादातर जो पुरुष वर्ग होते थे वो लोग काम पर जाते थे, और माता जो है घर पर रहती है थी। कोई किसी के पास गाय थी, कोई किसी के पास कुछ ऐसा व्यवसाय था,
1: छोटे मोटे साधनों से अपने जीवन को चलाते थे।
0: हाँ, चलाते थे। लेकिन अब देखते हैं कि ये थोड़ा बदल गया है और आगे के समय में, जैसे मैंने बोला, आगे के समय में दादा दादी थे तो वो बच्चों को जैसे कहानी ये सबसे ये करती थी, अवगत कराती थी, तो बच्चों में संस्कार भरने का वो एकमात्र साधन था
1: जी।
0: अब लुप्त हो गया है।
1: हाँ, बिल्कुल। अभी जो है शायद बच्चे जो है या अन्य लोग भी है, अकेलेपन का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, है ना, क्योंकि आइसोलेशन ज़्यादा हो गया है हमारे जीवन में, स्ट्रेस बढ़ गया है, चैलेंजेस बढ़ गए, और कभी कभी हम अपने स्ट्रेस और चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को बंद कर लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसके बारे में बात

0: करना बहुत ज़रूरी है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो हमारी बातों को समझ पाए, जो हमारी भावनाओं को समझ पाए, जो हमारे इमोशंस को समझ पाए। और कहीं ना कहीं महिलाएं अभी के समय में इससे बहुत जूझ रही है। आजकल मेंटल वेलनेस की जहां पर हम बात करते हैं, मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं, कहते हैं कि एक उम्र के बाद महिलाएँ जो है अपने आप में इस तरह से गिर जाती है परेशानियों से कि निकल नहीं पाती हैं, क्योंकि जब तक वो फिज़िकली फिट है, बच्चों को देख रही है, बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी राह चुन लेते हैं, तो ऐसे में महिलाएं अकेले हो जाती है, क्योंकि इतने दिन पूरा भरा परिवार था और एक समय आता है अकेले। तो इस ट्रांजिशन को आप कैसे देखते हैं?
1: हाँ, जैसे आप तो जानते ही हैं कि मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ, और वेदों में बताया गया है कि जितने जो आश्रम होते हैं, तो एक समय में आता है जब हमको इसमें डिटैच होना पड़ता है।
0: जी।
1: तो हमको जो जो डिटैचमेंट है, जो वनवास जो लेते हैं, तो वो खास नहीं है कि हम घर से निकल जाते हैं, उसमें है कि हम ध्यान करें, पूजा पाठ करें, हवन यज्ञ करें, तो ये सब एक साधन होता है उस चीज़ से बाहर आने के लिए। तो हमको जो प्लानिंग होता है, जैसे बोलते हैं ना, जब
0: रिटायरमेंट
1: प्लान करते हैं, तो उस ट्रांजिशन को भी प्लान करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो जैसे एक वेव जैसा होता है, ठीक है ना, ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो उसमें चाहिए कि हमको एक प्लानिंग, और हमको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि ज़िंदगी एक तरह का ये नहीं होता है, हर सुख और हर सुख के बाद हर दुख के बाद सुख आता है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कभी कभार ज़िंदगी में, जैसे आपने कहा, ये सारी चीज़ें पहले से हमारे जीवन का हिस्सा हैं। बचपन हुआ, बड़ा हुआ, हम करियर की ओर गए, फिर गृहस्थ जीवन में हमने प्रवेश किया, बच्चों का पालन पोषण, फिर एक समय आता है जहाँ पर हम इन सब से दूर होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से चलती आई है, इसमें कुछ नया नहीं है। सिर्फ हम अपने आप को इन सभी बदलावों के लिए किस तरह से तैयार करते हैं, ये अपने आप में हमें पहले से प्लानिंग होनी ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं ना, दिन की शुरुआत करने से पहले अगर हम पूरे दिन को अच्छे से प्लान कर लें कि मुझे किस समय क्या करना है, तो वो दिन में जितने भी काम हमने सोचे होते अच्छे से हो जाते हैं। वहीं जब प्लानिंग नहीं होती तो बहुत सारे काम छूट जाते हैं, बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं, फिर हम अफसोस करते हैं। तो शायद हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है।
1: तो एक चीज़ है
0: जी,
1: जिसे एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, अपेक्षा, तो ये सबसे ये बुरा चीज़ है
0: जी।
1: जो हम सोचते हैं कि हमने इतना काम किया और इतना मेहनत किया बच्चों के लिए, अब जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चे हमारे ये करेंगे, ये फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब जब बच्चों के पास समय नहीं होता है, तब ये दुख का शिकार।
0: बिल्कुल। और अभी बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे शायद इस परेशानी से गुजर रहे होंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि पहले का जो लाइफस्टाइल थी, अभी की जो लाइफस्टाइल है, काफ़ी बदल चुकी है, हमारी जीवन शैली काफ़ी बदल चुकी है। जिस तरह के चैलेंजेस शायद हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने देखे हैं, जिस तरह की कठिनाइयां उन्होंने देखी है, शायद हमने वो नहीं देखे हैं। अभी के समय में जो कठिनाइयां हैं वो पहले के मुकाबले अलग है, और आने वाले दिनों में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनके सामने जो चैलेंजेस होंगे वो अलग होंगे। तो कहीं ना कहीं जब हम इस फेस को समझ नहीं पाते हैं, तब ऐसा होता है कि हम में मतभेद हो जाता है, सोचते कि सामने वाला हमें समझ नहीं पाता।
1: Exactly.
0: तो इसलिए कहते हैं ना, बदलते समय के साथ हमें भी अपने सोच को, अपने विचारों को बदलना चाहिए। ये नहीं कि हमें अपने बच्चों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा उम्मीदें कभी कभार हमें ही तकलीफ देती है, है ना? इस पर आप क्या कहेंगे?
1: क्योंकि बच्चे भी, जैसे माता पिता, उन लोग को समझ में आना चाहिए, और समझ में आता है कि माता पिता ने इतना हमारे लिए किया है, लेकिन हद से ज्यादा जो अपेक्षा होता है वो हानिकारक होता है।
0: चलिए हम अगर माओं की बात करें, हमारे बहनों की बात करें, हमारे नानी दादियों की बात करें, जो कुछ हम उनसे सीखते हैं वो शायद हम अपने स्कूल कॉलेज के लाइफ में नहीं सीख पाते, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में सीखा होता है अपने माता पिता से, वही गुण, वही जो ज्ञान है हमें मिलता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, और वो होता है हमारे दिमाग के लिए, ठीक है, दिमाग को सशक्त करने के लिए, दिमाग को तेज़ करने के लिए, और मेमोराइजेशन और ये सब करने के लिए, जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, लिटरेचर, ये सब एग्ज़ाम को पार करने के लिए।

0: लेकिन जो शिक्षा जो हमारी माए और जैसे दादी नानी हो गई है वो हमारे दिल हृदय के लिए है। तो ग्रैटिट्यूड हो गया, लोगों से प्यार करना,
1: एक दूसरे के प्रति करुणा की
0: करुणा
1: भावना
0: की
1: ना,
0: भावना,
1: समझ की
0: हाँ
1: भावना,
0: समझ की
1: बिल्कुल
0: भावना। तो वो जो शिक्षा है वो हमारी माता और
1: जी।
0: नानी दादी से।
1: आजकल जैसे हॉलिस्टिक
0: हाँ
1: लर्निंग्स की बात करते हैं, टीचिंग्स की बात करते हैं, जो आजकल स्कूल कॉलेजों में इस पर बड़ा जो है ध्यान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी मानवीय मूल्यों को ही उजागर करता है।
0: हाँ
1: क्योंकि
0: हाँ
1: हम अपने माताओं की बात करें, नानी दादी की बात करें, तो हमें जो है ह्यूमन वैल्यूज़ ही हमें उनसे मिले हैं ना, संस्कारों की
0: हाँ
1: अगर हम बात करते हैं।
0: लेकिन लेकिन वो जो देखते हैं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो जैसे अकेडेमिक हो जाता है,
1: जी
0: ठीक है ना, वो अकेडेमिक जैसा हो जाता है। और एक जैसे टीचर आता है ब्लैक बोर्ड के सामने, व्हाइट बोर्ड के सामने, ग्रीन बोर्ड के सामने। लेकिन ये जो माताएं और नानी दादी है ये उदाहरणों से आपको शिक्षित करती
1: मतलब
0: है।
1: कि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में
0: हाँ
1: सीखा
0: अपने
1: है
0: जीवन में,
1: उसी के चल
0: हाँ,
1: हाँ
0: और वो अपने जैसे उसमें इमोशंस भाव भी ला
1: जी
0: रहे हैं उसमें,
1: बिल्कुल
0: और दिखाते हैं कि ये देखो ये तुम्हारा जो चाचा है या मामू है, मैंने
1: जी
0: इसको ये
1: जी
0: किया, ऐसे किया
1: जी
0: तो इतना अचीव किया।
1: जी
0: लेकिन क्लासरूम में इतने बच्चों के सामने ये
1: जी मतलब कि
0: प्रोफेसर,
1: वो इमोशनल कनेक्शन नहीं होता,
0: हाँ
1: ये
0: नहीं
1: नहीं
0: सर,
1: कह रहे
0: हाँ
1: कि
0: कि
1: वो
0: नहीं
1: जो
0: है,
1: सिखा रहे ठीक नहीं है, वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
0: हाँ
1: लेकिन जैसे कि हम अपनी माँ से जिस तरह से बात करते
0: हाँ
1: हैं, जब एक किसी इमोशनल टॉपिक पर बात कर रहे हैं या किसी लाइफ एक्सपीरियंस पर बात कर रहे हैं, तो जो भाव उस समय हमारे मन में आते हैं, शायद एक क्लासरूम में वो भाव नहीं आता है।
0: एग्जैक्टली यही
1: ठीक है,
0: मैं,
1: चलिए अगर हम समाज के प्रति, समाज को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो आजकल महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटैलिटी हो, पढ़ाई के क्षेत्र, मतलब कि आज जहाँ तक आप सोच सकते हैं महिलाएं वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो इस पर आपके क्या विचार है? क्योंकि अभी भी देखें तो महिलाओं के लिए चैलेंजेस ज़्यादा है एज पुरुषों के मुकाबले।
0: देखेंगे जो काम और जो लगन के साथ वो जो माताएं वो कर रही है वो जैसे इग्नोर हो जाता है जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है
1: जी
0: जो माताएं हैं
1: जी
0: उसको बिल्कुल नज़रअंदाज हो जाता है।
1: जी
0: लेकिन जो काम करती है
1: जी
0: वो लोग काम करती है फुल टाइम
1: जी
0: और घर आकर फिर
1: फिर
0: फुल
1: घर के
0: टाइम
1: कामकाजों में
0: घर
1: लग जाती है,
0: कामकाज।
1: बिल्कुल
0: तो ये एक जैसे उसको एक मूल ये नहीं डालते हैं उसमें,
1: जी
0: जैसे एक प्राइस नहीं कर सकेंगे उसको,
1: जी
0: तो इतना अमूल्य है वो जितना जो
1: आपने बिल्कुल
0: कंट्रीब्यूशन।
1: सही कहा, क्योंकि जो महिलाएं बाहर कार्य करती है अपने प्रोफेशनल लाइफ को तो देखती ही हैं, लेकिन जब वो घर पर आती है तो घर की जिम्मेदारियां भी उस पर पड़ जाती है। लेकिन बदलते समय के साथ अभी के जो नव जो नए कपल्स हैं उनमें हम थोड़ा सा बदलाव ज़रूर देख रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति समझ उनमें थोड़ी सी ज़्यादा है ना, घर के कामों में हाथ बटाना। पहले ऐसा होता था कि लड़का जब घर का काम कर रहा है तो उसे टोका जाता था कि ये लड़के
0: हाँ
1: का काम नहीं है, लेकिन
0: हाँ
1: समय के साथ ये धारणा काफ़ी बदल रही है,
0: हाँ
1: काफ़ी घरों में इस चीज़ को अपनाया जा रहा है, समाज में भी इसके प्रति जो नज़रिया है वो बदल चुका है। आजकल तो हम तो काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि महिलाएं घर चला रही है और पुरुष घर पर जो है घर के काम काजों को देख रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है,
0: हाँ
1: खासकर हमारे समाज के लिए।
0: मैं अभी गत साल एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है चेतन भगत, नाम
1: जी
0: सुना होगा
1: जी
0: आपने,
1: जी बिल्कुल
0: तो मैं उनसे मॉरिशस में ही मिला था।
1: अच्छा
0: तो उसके परिचय में एक जो एक सेमिनार हुआ था तो उस वो बोलते हैं कि आई एम ए हाउस हस्बैंड। तो ये शब्द दिया गया है हाउस
1: हाँ
0: हस्बैंड,
1: हाँ
0: तो हाउस हस्बैंड,
1: जैसे हाउस
0: हाँ
1: वाइफ हम
0: हाउस
1: कहते
0: वाइफ, तो
1: हैं।
0: हाउस
1: जी
0: हस्बैंड है, तो घर में रहते हैं। और काफ़ी अभी इस आधुनिक दौर में देखेंगे जैसे मैं घर पर रहता हूँ, कभी घर से काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम। और तो मैं भी एक तरह का वो घर पे रह के मेरे काम मैं करता हूँ और अन्य घर का भी काम करता हूँ,
1: बिल्कुल हाँ।
0: तो
1: और
0: ये
1: इसमें
0: इसमें
1: कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं ये सालों से करती आई है। अभी के लिए जो है, जैसे हमने कहा, जीवन शैली काफ़ी बदल गई है, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। कोविड के बाद जो है एक नया
0: हाँ
1: ट्रेंड
0: ना,
1: शुरू हो चुका है, बहुत सारे ऑफशोर्स कंपनी है जो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं जहाँ पर आपको हर रोज़ दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है,
0: नहीं
1: सिर्फ शायद सप्ताह में एक दिन या कुछ दिन रिपोर्ट करना होता है। तो ऐसे पुरुषों को भी अवसर मिल रहा है कि के घर पर रहकर काम करें और साथ ही घर में जो उनका योगदान है वो बढ़ गया है और ये समाज

0: समाज की प्रगति के लिए और खासकर रिश्तों में जो है मधुरता लाने के लिए या वो जो कंपैटिबिलिटी है लाने के लिए बहुत अच्छा जो है ये अपना प्रभाव डाल रही है।
1: जैसे बोलते हैं ना टीम वर्क होता है।
0: एग्जैक्टली
1: एक टीम वर्क होता है ना कि एक आइसोलेशन में।
0: बिल्कुल।
1: तो जब ये टीम वर्क होता है जो मैं अभी खुद सीख रहा हूँ टीम वर्क, क्योंकि मैं ज्यादा टीम वर्क में
0: आप सीख रहे हैं और आप ये कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े थोड़ा अपना अनुभव बताएं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक पुरुष घर पर रह के काम कर रहा है, पहले के समय में ये बात को अलग तरीके से देखा जाता था। महिलाओं का घर पर रहना अपने आप में बड़ी बात नहीं होती थी हमारे समाज के लिए, क्योंकि ऐसी धारणा थी कि महिलाएं घर का काम करने के लिए बनी है। लेकिन समय के साथ ये धारणा काफी बदली है और हमें बड़ा गर्व है इस पर। तो इस पर आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
1: मेरा अनुभव है कि जब मैं छोटा था तो माता जी जब शाम के समय वो हमको जैसे वो खाना परोसती थी तो हमको जिम्मेदारी दिया करती थी कि हम पानी और जैसे प्लेट हो गया ये सब वो खाने के बाद फिर उसको समेटना और धोना तो हम करते थे। तो बीच में हम विदेश चले गए पढ़ाई के लिए और काम के लिए। जब वापस आए तो हम बड़े हुए हैं देखने कि माता जी पकाती है और वो खुद मान ये बर्तन सब मांजती थी। तो हमको अब देख हमको ऐसा था कि पिताजी कुछ नहीं करते थे, लेकिन पिताजी का और काम था ना, जैसे वो काम करते थे फुल टाइम और माताजी घर पर रहती थी। अब जब मेरे पर आ गया ये सब तो मुझको भी अभी थोड़ा शुरू शुरू में ऐसा लग देखता था कि थोड़ा अजीब सा महसूस होता था कि हमको भी हाथ बटाना ये सब। तो अभी इस दौर में तो सबको हाथ बटाना पड़ता है
0: और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी जो है हमारे जो है जीवन शैली काफ़ी बदल चुकी है और महंगाई का समय है, बच्चे हैं, बच्चों के एक्सपेक्टेशंस है, बच्चों की उम्मीदें हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्च है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में अगर पति पत्नी दोनों काम नहीं करे तो जीवन को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब अगर दोनों काम कर रहे हैं, बाहर की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, तो आई बिलीव हस्बैंड एंड वाइफ की दोनों ही की जिम्मेदारी होती है कि घर की जिम्मेदारियों को भी एक साथ निभाए, है ना। और बहुत से ऐसे पुरुष हैं कि घर पर खाना पकाते हैं, अपनी पत्नी का हाथ बटाते हैं। और अगर बच्चों में आपने कहा छोटे थे तो घर का काम छोटा मोटा करते थे, कल को अगर वही लड़का बड़ा होकर विदेश में पढ़ने जा रहा है और छोटे मोटे काम करने की आदत है तो उसका जो जीवन है वो सरल हो जाता है, क्योंकि उसे आदत हो जाती है घर के काम करने की, है ना।
1: तो अभी जैसे आपने बोला ना छुट्टी चल रही है और शायद नौजवान लोग हमसे जुड़े हैं, तो मैं इस यहाँ से मैं बोलूँगा कि थोड़ा थोड़ा काम अभी से सीखें, झाड़ू पोछा और ये सब बंतर मांझना, क्योंकि बाद में आपको ये काम आएगा।
0: हाँ बिल्कुल,
1: विदेश में
0: जी नहीं, काफ़ी काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि घर के काम सिर्फ महिलाओं को करना या महिलाओं तक सीमित नहीं है, अभी के समय में पुरुष भी जो है अपना योगदान दे रहे हैं। और अगर हम बात करें कि कभी कभार ऐसा होता है कि सारी बोझ सारी जिम्मेदारियां घर की जब महिलाओं पर आ जाती है तो महिलाओं का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। एक समय के बाद जो है शारीरिक रूप से जो है बहुत कुछ बदलने लगता है। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति बीमार है तभी ही उसके शारीरिक मतलब कि इसमें बदलाव आता है, उम्र के साथ हमारे शरीर में बहुत कुछ बदलाव आता है और ये फिर कल को स्ट्रेस का कारण बन जाता है। और घर में एक व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कितना हर एक व्यक्ति मतलब कि हर एक परिवार के सदस्य को जागरूक होना चाहिए।
1: हाँ, मैंने अभी जैसे हम भी बड़े हो रहे हैं और माता जी भी
0: उम्र हो रही है,
1: तो हम देखते थे कि जितने जो गति से आगे खाना पकाती थी और ये सब काम करती थी, अब थोड़ा मैं देख रहा हूँ थोड़ा कम होने लगा है
0: जी।
1: तो अभी जब बोल रहे हैं ना इतना ये समस्या, तो मैं सोचता हूँ उसी का एक
0: असर होगा।
1: असर
0: हाँ,
1: होता
0: बिल्कुल,
1: है लेकिन जैसे बोलते हैं वो काम को लगातार करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा ढीलापन हो जाएगा तो खुद स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम एक जैसे एक गति से हम भागेंगे ना तो रोकेंगे एकदम से, तो ये भी हानिकारक होता है।
0: क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ परिवार के सदस्य काफ़ी डिमांडिंग होते हैं, मतलब कि आज अगर मेरी सेहत अच्छी है तो मैं सब कुछ करके दे पा रही हूँ, कल को अगर मेरी सेहत ख़राब है या मानसिक रूप से शायद मैं किसी चीज़ का शिकार हूँ या मेरा आज मन नहीं कर रहा है तो शायद मैं अपने हर एक कार्य को उस गति से नहीं कर पाऊँगी। और जब नहीं कर पा रही हूँ तो सामने वाला के एक्सपेक्टेशन जब पूरे नहीं हो रहे तो आपस में

0: बन शुरू हो जाता है कि देखो तुम तो कुछ करती ही नहीं हो ना।
1: ये बहुत सही आपने बोला है और मैंने देखा है अपने ही घर में और बहुत घरों में मैंने देखा है ये सब होते हुए।
0: जी, क्योंकि ऐसा होता है कि हम महिलाओं पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डालते हैं। आप सोचते हैं कि महिला अगर घर पर है तो शायद पूरा दिन उसे काम ही करते रहना चाहिए, क्योंकि सुबह अगर महिला अपने बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही है, पति के लिए खाना, लंच, ब्रेकफास्ट सब बना कर दे रही है, तो सोचो कि पूरे दिन का काम उसने सुबह के उस एक घंटे में कर लिया है, है ना। और फिर शाम के आपके आते आते उसने कुछ और तैयार कर लिया, और फिर बाद में रात के खाने की तैयारी, इसी में तो दिन निकल गया। फिर घर की सफाई, घर को समेटना, और घर बड़ा है तो आंगन की सफाई, तो जिम्मेदारियां काफ़ी हैं।
1: मैं निजी तौर पे किसी को जानता हूँ
0: जी
1: जो आगे बहुत, जैसे मैं अत्याचार नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत ये सख्ती से वो पेश आता था अपने धर्म पत्नी से
0: जी।
1: तो बाद में जब वो चल बसी तो मैं उनसे जब पूछता हूँ तो आप क्या कर रहे हैं दिन में, तो आप निकल ये जाए, तो बोलते हैं नहीं नहीं अब मुझको पता लग गया है कि जब मैं मेरी धर्म पत्नी को बोलता था कि इतना काम है तो वो घर में रहते हुए कितना काम होगा, तो मैं काम करता हूँ, तुम क्या काम करती हो घर पे, तब अब उसको एहसास होने लग गया है
0: कितना काम
1: कि कितना
0: होता
1: काम
0: है,
1: होता
0: बिल्कुल
1: है घर में।
0: क्योंकि एक व्यक्ति 2400 घंटे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सुबह आपने थोड़ा काम कर ले तो थोड़ा सा समय आपको अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप अपने अनुभव बांटना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने घर की महिलाओं की सहायता करते हैं, किस तरह से आप योगदान देते हैं, या उनके योगदान के बारे में अगर आप अपने विचार बांटना चाहते हैं, तो 402-8085 है नंबर हमारा। अभी के टाइम में जो है इस सोशल वर्ल्ड के चलते, इस ग्लोबलाइजेशन के चलते, आजकल मी टाइम को बहुत जो है इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि अपना ध्यान रखना, अपने बारे में सोचना। पहले जब कोई अपने बारे में सोचता था तो कहते थे कि वो बहुत सेल्फिश है, अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी के समय में जहाँ पर हम मेंटल हेल्थ की बात ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पर अपने आप को समय देना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होते जा रही है समय के साथ। फिर चाहे वो महिला अपने अपने ज़रूरतों को समझे, अपनी इच्छाओं को समझे, या अपनी इच्छाओं को व्यक्त करे, वह ये लागू घर के हर सदस्य पर होता है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, मी टाइम में देखेंगे, जैसे अब तो मॉरिशस के अंदर बहुत सुविधा होने लग गया है, जैसे मसाज हो गया है, स्पा, ये सब आए दिन देखते हैं कि ये मॉरिशस भर में स्पा अभी उमड़ने लग गया है
0: जी।
1: तो हमको भी इस क्षेत्र में बहुत ध्यान देना चाहिए, योग,
0: योग ध्यान,
1: योग ध्यान और ये सब, तो हमको भी ये सब में जाना चाहिए और उसका लाभ भी लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके अलावा एक छोटी सी बात ये भी जोड़ना चाहूँगी कि इसके अलावा अपने आप को व्यक्त करना ना, ये एक बहुत, मतलब शुरुआत इसी से होती है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों को सुनने वाला और समझने वाला नहीं है, तो महिलाएँ जो है अपनी इच्छाओं को दबा कर रखती है, अपनी बातों को बोल नहीं पाती है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाती है, और वहीं पर जाकर उसका स्ट्रेस शुरू हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, और अन्य बीमारियों का फिर समय के साथ, ये कभी कभार किसी बड़ी बड़ी बीमारियों का कहते हैं कि इसका तो कारण स्ट्रेस ही है, है ना।
1: स्ट्रेस एक तरह का वो अच्छा है, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा है। अभी पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं होता तो हम यहाँ पर स्टूडियो में नहीं बैठे।
0: हाँ, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कह सकते हैं।
1: लेकिन ये थोड़ा भी स्ट्रेस भी है
0: और
1: जब खाना खाते हैं तो भी ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के वजह से हम खाते हैं और ये सब करते हैं, लेकिन जब निगेटिव स्ट्रेस हो जाता है तब ये हानिकारक हो जाता है।
0: चलिए ऐसा करते हैं, एक छोटे से गीत के साथ कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।
2: सलाम।

आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज महिलाओं के योगदान की बात कर रहे हैं, फिर चाहे हम परिवार में उनके योगदान की बात करें, समाज में, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो मॉरिशन महिलाओं का बड़ा ही योगदान रहा है आज मॉरिशस को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। पहले के समय में भले ही वो खेतों में जाती थी काम

0: करने, लेकिन उस योगदान को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। खेतों में काम करते करते आज महिलाएं देखिए पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है, तो इस पर आपके क्या विचार है अश्विन जी?
1: तो देख, जैसे आपने बोला है पॉलिटिक्स में आकर और इस देश का राष्ट्रपति भी बन गए हैं महिला, तो ये इतना योगदान उन लोगों का होता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है शिक्षा
0: जी।
1: तो शिक्षा के वजह से हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो देखते हैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, ये सभी लोग, सभी काम में महिलाओं है उसमें। अब देखेंगे कंडक्टर, ड्राइवर, बस
0: मतलब
1: का,
0: कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जो सिर्फ पुरुष तक पुरुष प्रधान थे, अभी महिलाएं भी, फिर चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आज हर एक सेक्टर में हम महिलाओं को उभरते हुए देख रहे हैं।
1: तो ये एक तो एक पॉजिटिव बात हो गई है
0: जी।
1: और लेकिन उसमें भी बहुत महिला सोचते हैं कि एक थोड़ा एक ग्लास सीलिंग हो गया है, तो उससे ऊपर भी जाना उन लोगों को चाहिए, लेकिन वो जा नहीं पा रही है। तो ये इस पर थोड़ा काम करना बाकी है।
0: क्योंकि मॉरिशस में तो उतना नहीं शायद, हम अगर ग्लोबली इसकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर महिलाएं हैं, जहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बीच में अभी भी जो पे स्केल है वो समान नहीं है। हम यहाँ के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे, लेकिन विश्व स्तर पर बात कर रहे हैं। तो बहुत से लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है इस पर नज़र दौड़ाई जाती है कि जो काम पुरुष कर रहे हैं महिलाएँ भी तो वही कर रही है। तो फिर जब तनख्वाह देने की बात आती है तो फिर बराबर क्यों नहीं है, है ना?
1: तो ये एक डिस्पैरिटी जैसा हो जाता है। और ये बात तो आम मॉरिशस में नहीं है बहुत, लेकिन विदेशों में
0: हाँ, विश्व स्तर पर इसे काफ़ी जो है देखा जाता है इसके बारे में। चलिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो आज महिलाएं किसी देश की प्रधानमंत्री है, तो कहीं प्रेसिडेंट है, बड़े बड़े जो है सोशो कल्चरल ग्रुप के जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपने कहा शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी नींव होती है, और महिला सशक्तिकरण की बात करें, और ख़ासकर हम एक बहुत ही ऐसे समृद्ध देश में रहते हैं जहाँ पर लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं किया जाता है, लेकिन ये फ़र्क आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से देशों में देखा जाता है कि महिलाओं को या बच्चियों को वो समानता जो है नहीं दी जा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, इसमें है कि जैसे आपने बताया पुरुष प्रधान, जितने जो खास तौर पर जितने जो MNCs होता है मल्टीनेशनल कंपनी में हम देखेंगे तो रेम्यूनरेशन में डिस्पैरिटी होता है
0: जी।
1: हाँ, कितना सेम वर्क लेकिन डिफरेंट पे।
0: एग्जैक्टली
1: तो ये इसमें बहुत काम अभी काम चल रहा है
0: exactly,
1: हाँ, और अलग अलग संस्था है विश्व स्तर पर, तो उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है
0: जी।
1: खासतौर आपने जब मेरा जो इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस
0: जी,
1: तो उसमें ये विषय आता है।
0: अच्छा,
1: तो बोर्ड में इक्वालिटी और बोर्ड में जैसे एंगेजमेंट कैसे उसमें शामिल हो और काम हो
0: जी। और डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो आज भी समाज में काफ़ी वर्ग में हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रति जो है अत्याचार अभी भी हम देखते हैं, विश्व स्तर की हम बात कर रहे हैं। तो किस तरह से जो है इस पर कार्य किया जा सकता है, क्योंकि आज हम यहाँ से चांद तक पहुँच गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मानसिकताएँ अभी भी नहीं बदली है। महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति जो अत्याचार हैं विश्व स्तर पर आज भी हो रहे हैं, तो किस तरह के जो है हमें कार्य करना चाहिए या अपना योगदान किस तरह से देना चाहिए कि इसके बारे में लोग और ज़्यादा जागरूक हो?
1: हाँ, जैसे देखते हैं ना, एक समय मॉरिशस में था कि जब बच्चे वो बच्चा ये लड़का है तो आगे पढ़ाई जारी रखेगा, और जो लड़की है वो जैसे यहाँ पर बोलते थे सीजम के बाद कुछ नहीं होना।
0: लेकिन समय के साथ इसमें काफी बदलाव आया है,
1: तो समय के
0: अभी वैसा नहीं है,
1: ऐसी वैसा नहीं है। तो फिर भी अलग देशों में ये हो रहा है कि बच्चों को ऐसे वो रोकते हैं, उसको पढ़ाई आगे नहीं करने देते हैं। तो ये जब बदलेगा तो
0: अपने आप में अन्य बदलाव भी आएंगे, क्योंकि कई देश आज देखो जहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे देशों में हम देखते हैं कि बच्चियाँ और महिलाएं भी हैं जो ज़्यादा अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें जो है

0: उनके ही हक से वंचित रखा जा रहा है। तो महिलाओं की हक की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से एक महिला को अपने हक के बारे में जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आप जो है जूरिस्ट भी है, जो है लीगल कार्यों में भी अपना योगदान देते हैं, तो आप बताइए कि किस तरह से एक महिला की हम बात करें तो किन बेसिक चीज़ों की जानकारी उसे होनी चाहिए कि हाँ ये उसका हक है, ये उसका राइट है, इसके लिए उसे आवाज़ उठानी चाहिए।
1: हाँ, जैसे देखते हैं ना, अभी के दौर में एक मान लो एक एप्लीकेशन निकलता है तो देखते हैं ऑन द बेसिस, जैसे वो अभी शादीशुदा है तो इंटरव्यू में पूछते हैं यदि आप शादीशुदा है तो इन लोगों को लगता है कि अभी आगे चल के उन लोगों को बच्चा ये सब होने लगेगा तो फिर ऑफ लेंगे। तो ये सब के खिलाफ हमको काम करना चाहिए कि इक्वल ये हमको चाहिए कि उन लोगों को एम्प्लॉय करना। और जैसे अभी देखे है ना, आगे ये वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम नहीं था,
0: लेकिन अब हुआ है।
1: हाँ, अब हुआ है तो बच्चे भी होंगे और काम भी करेंगे, ना कि वो शादीशुदा है या उसके जवान है तो बच्चे होने का संभावना है तो उसको वंचित करेंगे उसे काम से।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को तो आगे लेकर जाना ही है ना, तो करके ना जो है लोग शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे ही तो आने वाले कल का भविष्य है। तो इस पर भी आपने सही कहा कि बहुत से जगहों पर इस सभी बातों को हम सुनते हैं, पर किस हद तक वाकई में ऐसा होता है शायद सही सही हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में।
1: तो ये सब आगे नहीं आएगा ना, क्योंकि वो कुछ ऐसा फोल्ड दिखा के वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन बहुत प्राइवेट सेक्टर में जब हम देखते हैं, अभी मॉरिशस की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व भर में जो स्टैटिस्टिक है तो देखेंगे कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है इस वजह से, क्योंकि वो महिला है, जवान है और शादीशुदा है और उसके बच्चे होने का संभावना है। तो क्योंकि वो तीन मॉरिशस में 3 महीना है, विदेशों में 6 महीना है और ज़्यादा भी है। तो ये पूरा ट्रेनिंग हम आपको देंगे और 6 महीने के बाद बोलेंगे कि मैं थोड़ा काम स्लो करूँगा क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और उसके बाद में बच्चा होगा, तो फिर से किसी और को लेना चाहिए और उसको भी ट्रेनिंग देना चाहिए। तो ऐसा लोग सोचते हैं कि मत ही
0: है।
1: मैं नहीं लूँ तो अच्छा है।
0: जी, और ये धारणा बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं। आज जहाँ पर देश प्रगति कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इतना कुछ हो रहा है, तो उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन सराहनीय है। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी के समय में हम बदल सकते हैं जिससे महिलाएं और प्रगति कर सके आपके हिसाब से?
1: हाँ, मैं सोचता हूँ जैसे बहुत से सुविधा है, ठीक है, जैसे लोन हो गया है और ट्रेनिंग, क्योंकि हम देखते हैं कि एक जैसे बहुत यहाँ मॉरिशस में मैंने देखा है कि बहुत लोगों के पास हुनर है और उस हुनर को आगे तक जैसे इकोनॉमिक करने के लिए, उससे आमदनी आने के लिए उन लोगों को पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए, जो स्टार्टअप है। हाँ, तो बहुत महिला है कि महिलाओं के पास बहुत ये सब हुनर है लेकिन शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। है भी ऐसे डेवलपमेंट बैंक ये सब पैसे देते हैं लेकिन मुझको लगता है कि ज़्यादा वो नहीं दे पाते हैं। तो यदि ये हो और ट्रेनिंग हो तो मैं सोचता हूँ ये बहुत आगे चलेंगे।
0: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं SME की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करें, ज़्यादातर महिलाएं जो है इससे जुड़ी हुई है। जहाँ पर उन्हें कोर्स दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, आगे बढ़ने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। और अगर महिलाओं में कुछ हुनर है तो समाज को आगे आकर उनका साथ देना चाहिए, इस हुनर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ उसके लिए ही रोज़गार का ज़रिया नहीं बनता है, वो समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपना योगदान दे रही है। इससे समाज की भी प्रगति हो रही है और साथ साथ में राष्ट्र की भी प्रगति हो रही है।
1: हाँ, क्योंकि इसमें देखते हैं कि महिलाओं के पास जैसे बोलते हैं ना, बहुत शक्ति होती है और इन लोगों को बहुत जैसे पेशेंस होता है और ये सब काम करने के लिए। तो खास तौर पर जब देखेंगे कि खुद का बिजनेस रहेगा तो बहुत प्रगति करते हैं। और देखने में भी आया है कि जितने जितने बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ पेप्सी का, तो उसमें वो महिला थी भारत

0: भारतीय मूल के, तो बहुत आगे लेकर गई है कंपनी को। तो मॉरिशस में बहुत और पैसा देना चाहिए महिलाओं लोगों को,
1: महिलाओं की प्रगति के लिए,
0: प्रगति के लिए, हाँ, और पैसा निवेश करना चाहिए
1: जी। और कहीं ना कहीं अगर हम लड़कियों की बात करें तो आजकल एजुकेशन में भी लड़कियां जो है ज़्यादा बेहतर कार्य कर रही हैं। हाँ। मतलब कि नंबर्स की बात करें, मार्क्स की बात करें, तो लड़कों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जो है लड़कियां कर रही है। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि अगर आप महिलाओं में इन्वेस्ट करें, अगर उनके पास कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस आइडिया है, तो उसे डेवलप करने की कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं ना कि आप उसे मकान देते हो तो वो उस मकान को घर बनाती है। तो ये शायद उसकी पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है, ये उसके प्रोफेशनल लाइफ को भी शायद इस तरह से कर सकता है कि आप उसे एक चीज़ दो तो उसे 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकती है, है ना। जैसे प्रकृति को हम माँ कहते हैं ना, एक बीज डालते तो उसे कितना बड़ा पेड़ होता है, और उसी पेड़ पर न जाने कितने फिर फल आते हैं और बीज के रूप में फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो महिला भी अपने आप में कुछ उसी तरह की है।
0: क्योंकि वो लोग जैसे बोलते हैं ना, बहुत जुड़े होते हैं और बहुत डिलीजेंटली काम करती है, तो इस वजह से वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं SC HSC के। जब पेशाक से लेकर जितने जो ये एग्ज़ाम होते हैं उसमें लड़की सबसे अच्छा वो काम
1: परफॉर्म करती है। तो चलिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम था खासकर हमारी महिलाओं पर आधारित था, उनके योगदान को जो है हमें इस पर बात करने का अवसर मिला इस कार्यक्रम के द्वारा। और देखते ही देखते हम कार्यक्रम के लगभग अंत तक भी आ पहुँचे हैं। अश्विन जी, जाते जाते आप हमारे जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनको कोई संदेश देना चाहते हैं।
0: हाँ, तो मैं संदेश यही दूंगा कि महिलाओं को हम रिस्पेक्ट दें, और बहुत से ऐसे वो हम देख रहे हैं कि केसेस आए हैं फेमिनिसाइड का, जो क्योंकि वो एक महिला है, इसके लिए इसीलिए हमने उसको मार दिया, तो उसको फेमिनिसाइड बोलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस को भी थोड़ा
1: इस पर भी हमें सोच
0: विचार करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि देश को आगे बढ़ाएंगे तो टीम वर्क होना चाहिए, क्योंकि इतना आधा पुरुष करता है आधा महिला करता है, तो हम दोनों हाथ में हाथ डाल के आगे की ओर हम अग्रसर हो साथ में।
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये प्रकृति भी हमें ये सिखाती है। देखिए, भगवान शिव को यदि हम देखें जो अर्धनारेश्वर का रूप है, एक तरफ पुरुष और एक तरफ स्त्री, तो कहीं ना कहीं ये नेचर, ये प्रकृति जो हम आसपास देखते हैं, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें इससे भी सीखना चाहिए, ये हमें बताती है कि किसी भी व्यक्ति का योगदान अपने आप में कम नहीं होता है। हर कोई अपने आप से जो है कोशिश करता है, और उस कोशिश में, और कहते हैं ना कि जो भी बदलाव हम समाज में देखना चाहते हैं उसके लिए पहला कदम हमें उठाना चाहिए। तो अगर हम कुछ अच्छा बदलाव देखना चाहते हैं तो सिर्फ बातें करने के बजाय उस बदलाव की ओर हमें भी अग्रसर होना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अश्विन जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन कहेंगे आपको, और जितने लोग हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहे, रेडियो टीवी के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जाते जाते हम हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम और टेक्निकल टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे प्रोड्यूसर रितेश महाबिया जी को। साथ में हमें काद्य और उरुषा का भी सहयोग मिला, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारी आपकी भेंट जल्द होगी। नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से।

0: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह की ठीक 10 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

0: पार्लियामेंट्री प्राइवेट सेक्रेटरीज पीपीएस प्रणाली फिर से स्थापित की जा सकती है। कल नए जूनियर मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद इस मुद्दे पर प्रेस के सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वेरोनिक लुगोविन ने कला एवं संस्कृति जूनियर मंत्री की हैसियत से इस्तीफा देने का फैसला लिया क्योंकि उनके पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी के चलते उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि राष्ट्रसभा के सामने प्रदर्शन करना खासतौर पर एक मंगलवार के दिन गैर कानूनन है, फिर भी उन्होंने चार व्यक्ति समझकर ये प्रदर्शन होने दिया लेकिन इन लोगों ने इस इजाज़त का गलत फ़ायदा उठाया। मालिना चिनिबास के सिटिंग को लेकर डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान उसने एक गर्भवती महिला के साथ बदसुलूकी भी की है। आज राष्ट्रसभा के एजेंडे में दो अहम कार्य शामिल होंगे। इनमें पहली परहत पर वेटलैंड्स बिल की पेशकश और राष्ट्रसभा में खेल मवेशियों के इस्तेमाल करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन शामिल हैं। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की जा रही है और ये ईरान के लिए आखिरी मौका है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसरे मुल्कों की दरख्वास्त पर अमेरिका ये बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन अब तक ईरान के विदेश मंत्री ने वाशिंगटन के साथ बातचीत करने के दावे को झुठलाया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रामजीत लेन बालीसों रोजबेल में 69 साल की 69 years old श्रीमती सरोज सिकोरी। श्रीमती सरोज सिकोरी पैदाइशी नाम बसोवन जो नीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके पति सुखदेव सिकोरी के घर रामजीत लेन बालीसों रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिशानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: चलिए आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नज़र डालते चलें। ये विज्ञप्ति है रोजबेल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर रोजबेल स्टेडियम, ट्रैफिक सेंटर रोजबेल, रोजबेल कोऑपरेटिव और रोजबेल मार्केट के आसपास के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 6 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा।
1: रेडियो मॉरिशस
3: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस।

भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर। भक्ति धारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम करजोड़ अभिवादन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, पुनः उपस्थित हो चुकी हूँ आप सभी का भक्तिमय रूप से साथ देने के लिए। आज का यह दिन पावन है, श्रावण का यह पावन मास सभी के लिए ऊर्जाजनक हो, बस इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में आइए भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं और आप सभी को याद दिलाते चले कि भक्ति धारा कार्यक्रम के अंतर्गत आप अभी थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे ज्ञान चक्र का कार्यक्रम जो हिंदू महासभा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य गिरीश जी। और 10:15 के करीब आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश पत्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आज के इस प्रथम गणेश भजन द्वारा।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत लोक

त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमीश्वर श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्रीसांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आज ट्यूसडे के इस विशेष ज्ञान चक्र कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, इन दिनों सभी अपनी अपनी श्रद्धा आस्था और सामर्थ्य के अनुसार पवित्र श्रावण मास के व्रत एवं पूजन का पालन कर रहे हैं। शास्त्र हमें केवल व्रत रखने की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि उसके सही स्वरूप और उद्देश्य का भी मार्गदर्शन करते हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है कि व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान कर शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, संयम एवं सात्विक भोजन करना चाहिए तथा अपने सामर्थ्य अनुसार यज्ञ, पूजा, जप और ईश्वर आराधना में समय देना चाहिए। व्रत का वास्तविक उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि इंद्रियों का संयम, मन की शुद्धि और आत्मिक उन्नति है। इसी प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि व्रत उपवास करने वाले व्यक्ति को अपने इष्ट देव के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करते रहना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए तथा पूर्ण भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जब व्रत के साथ मन भी परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तभी उसका वास्तविक आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। अतः इस पावन श्रावण मास में हम केवल

0: बाहरी आदम्बरों तक सीमित ना रहे, बल्कि अपने जीवन में सत्यम, संयम, करुणा, सेवा, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति को स्थान दें। श्रोताओं, यही श्रावण मास की सच्ची साधना है और यही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पक्ष श्री रामचरित मानस का पारायण भी है। भगवान शिव स्वयं श्री राम के अनन्य भक्त हैं तथा राम कथा के प्रथम वक्ता है। ऐसे मान्यता है कि श्री रामचरित मानस के नियमित पारायण से साधक पर भगवान शिव और श्री राम दोनों की कृपा बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि अनेक संत महात्माओं ने श्रावण मास को रामचरित मानस मास के रूप में स्मरण करते हैं। आइए इस पावन श्रावण मास में भगवान शिव और श्री राम की कृपा प्राप्त करने हेतु श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ हम अपनी साधना करें और अपने जीवन को धर्ममय बनाएं। तुलसीदास जी रामचरित मानस के बालकान दोहा 35 में लिखते हैं, रचि महेश अनिज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा। यानी भगवान शंकर ने ही इस रामचरित मानस की रचना कर अपने मन में रखा और अवसर पाकर पार्वती जी को सुनाया। चलिए आज इस कार्यक्रम को यही विराम दूं। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम के समस्त आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की गई है कि सर्वप्रथम हम वेद पाठ एवं उसका भावार्थ सुनेंगे, तत्पश्चात एक मधुर भजन का आनंद लेंगे और अंत में एक वैदिक मंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं वेद पाठ से। ॐ त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयन्त्स्त्वं गा त्वमातरुरुर्वान्तरिक्षं त्वं ज्योतिषावितमो ववर्थ। इस संसार में रोगों को नष्ट करने वाली जितनी भी औषधियां हैं, जल हैं, वा इन सब के अतिरिक्त भी जो कुछ भी है, उस सब को उत्पन्न करने वाला वह एक ही परमेश्वर है। ओम वसंत इन्नूरंत्यो ओ ग्रीष्म इन्नूरंत्यः वर्षाण्यनु शरदो हेमंत शिशिरः इन्नूरंत्यः। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, तो फिर मनुष्य के लिए वर्ष भर भी सभी ऋतुएं अनुकूल हो जाती है, सभी दिशाएं अनुकूल हो जाती है, सब व्यक्ति अनुकूल हो जाते हैं, तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके लिए सारा संसार रमणीय बन गया हो। ओम अभिशुणः सखीना आमविता जरित्रिणाम शतम भवास्योतये। प्रभु के जो सच्चे भक्त होते हैं वे उसके समान अपने गुण कर्म स्वभावों को बनाने का हार्दिक प्रयास करते हैं, उनकी वह प्रभु भली भांति रक्षा करता है। ओम पुरुहूतम पुरुष्टुतम गाथां या आसनश्रुतम इंद्र इति ब्रवीतन। जिसे अपने जीवन में सुख दुख में सहायतार्थ छोटे बड़े सशक्त अनेक प्राणी अनेक प्रकार से अनेक बार स्मरण करते हैं, पुकारते हैं,

सदा गुणगान करने योग्य है, जो सदा भजने योग्य है, जो सनातन काल से, जो अनादि काल से अति प्रसिद्ध है, जो अनादि काल से सबसे सुना जाता है, वही इंद्र है, वही परमेश्वर है, वही सब जगत का स्वामी है, सम्राट है। ओम शांति शांति।

सक्तुमिवातिना पुनन्तु यत्र धीरा मनसा वाचमक्रता अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। श्रोताओ, वेद मानव सभ्यता का आदि ज्ञान है। वेदों में वाणी, ज्ञान, विचार, सत्य को मानव जीवन की सर्वोच्च विभूतियों में स्थान दिया गया है। ऋग्वेद के दशम मंडल का यह प्रसिद्ध मंत्र सक्तुमिव तितूना पुनन्तु यत्र धीरा मनसवा चमक्रत वाणी की पवित्रता, विचारों की निर्मलता, ज्ञान की परिपक्वता तथा सामाजिक सौहार्द का अद्भुत घोष है। यह मंत्र केवल सुंदर बोलने का उपदेश नहीं देता, बल्कि यह सिखाता

कहता है कि मनुष्य की वाणी उसके अंतःकरण की निर्मलता, ज्ञान की गंभीरता और चरित्र की श्रेष्ठता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होती है। श्रोताओं, श्रावणी उपाकर्म के अवसर पर इसी मंत्र से आहुति दी जाती है। इसका कारण यह है कि श्रावणी केवल यज्ञोपवीत परिवर्तन का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, वेदाध्ययन के पुनः आरंभ, ज्ञान की पुनर्स्थापना तथा वाणी के संस्कार का पावन अवसर है। यह मंत्र उस संकल्प का प्रतीक है कि जिस प्रकार किसान अन्न को भूसी और अशुद्धियों से अलग करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी, आचार्य और साधक अपनी वाणी को असत्य, कटुता, अहंकार, अज्ञान और अशिष्टता से मुक्त करें। श्रोताओं, मंत्र का पदच्छेद करने पर इसका गंभीर अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाता है। सत्तुमिव अर्थात जैसे सत्तु अथवा अन्न को तितिउना अर्थात छलनी या चलनी के द्वारा, पुनंतः अर्थात शुद्ध करते हुए, यत्र जहां धीराः विवेकी, ज्ञानी और मननशील पुरुष मनसा मन के द्वारा वाचम अकृत वाणी का निर्माण करते हैं, अत्र वहीं सखायः मित्रजन सख्यानि जानते सच्ची मित्रता को पहचानते हैं, भद्रा एषां लक्ष्मीः अर्थात उनका कल्याणकारी ऐश्वर्य, निहिता अधिवाची अर्थात उनकी वाणी में ही स्थित रहता है। श्रोताओं, इस प्रकार मंत्र का भावार्थ है कि जैसे मनुष्य छलनी से सत्तु को छानकर उसे शुद्ध करता है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष अपने मन के द्वारा अपनी वाणी को शुद्ध, संयमित और विचारपूर्ण बनाते हैं। ऐसी पवित्र वाणी वाले व्यक्तियों के बीच सच्ची मित्रता स्थापित होती है और उनके शुभ गुण, सम्मान, समृद्धि तथा दिव्य ऐश्वर्य उनकी वाणी में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। श्रोताओं, यह मंत्र वैदिक मनोविज्ञान का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है। वेद के अनुसार वाणी केवल मुख से निकलने वाली ध्वनि नहीं है, वाणी मन, बुद्धि और आत्मा का संयुक्त प्रकाश है। यदि मन अशुद्ध है तो वाणी भी कटु होगी, यदि मन निर्मल है तो वाणी स्वतः मधुर, हितकारी और सत्ययुक्त होगी। इसलिए मंत्र कहता है कि पहले मन को शुद्ध करो, तब वाणी स्वतः शुद्ध हो जाएगी। वेदों में वाणी को देवत्व प्राप्त है। ऋग्वेद के इसी सूक्त में वाणी को दिव्य शक्ति कहा गया है। बृहस्पति ने मनुष्य को नामकरण और भाषा की व्यवस्था प्रदान की, जिससे समाज में ज्ञान का आदान प्रदान संभव हुआ। अतः वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संपूर्ण संस्कृति की आधारशिला है। मनुष्य का ज्ञान, धर्म, विज्ञान, दर्शन, शिक्षा, साहित्य, न्याय और सभ्यता सब वाणी के माध्यम से ही सुरक्षित रहते हैं। श्रोतागण, इस मंत्र में प्रयुक्त सक्तुम युवा तितुना पुनंतह की उपमा अत्यंत प्रभावशाली है। किसान जब खेत से अन्न लाता है तो उसमें भूसी, धूल और तिनके मिले रहते हैं। यदि उन्हें बिना छाने खाया जाए तो भोजन शुद्ध नहीं माना जाएगा, इसलिए वह छलनी का प्रयोग करता है। छलनी आवश्यक है और उपयोगी अन्न को सुरक्षित रखती है तथा अशुद्धियों को अलग कर देती है। यही प्रक्रिया वैदिक जीवन में विचारों के लिए भी आवश्यक है।
मनुष्य प्रतिदिन असंख्य विचार सुनता

और बोलता है। यदि वह बिना विचार किए प्रत्येक बात को स्वीकार कर ले तो उसका विवेक नष्ट हो जाएगा। इसलिए वेद आदेश देता है कि प्रत्येक विचार को सत्य, तर्क, अनुभव और धर्म की कसौटी पर परखो। जो विचार हितकारी हो उसे स्वीकार करो और जो अहितकारी हो उसे त्याग दो। यही मानसिक छलनी है जिसे इस मंत्र में तितिउना कहा गया है। श्रोतागण, महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में बार बार यही शिक्षा दी है कि मनुष्य को प्रमाण, तर्क, वेद और युक्ति के आधार पर सत्य को ग्रहण करना चाहिए। अंधविश्वास, मिथ्या, रूढ़ी, परंपरा और असत्य कथनों को बिना परीक्षा स्वीकार करना वैदिक मार्ग नहीं है। यह मंत्र उसी वैदिक विवेक का आधार प्रस्तुत करता है। श्रोताओं, मंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द धीरा है। वैदिक साहित्य में धीर वह है जो धैर्यवान होने के साथ साथ विवेकशील, मननशील, सत्यनिष्ठ और आत्मसंयमी हो। धीर व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है। वह शब्दों का चयन सावधानी से करता है। उसकी वाणी किसी को आहत नहीं करती बल्कि प्रेरणा देती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है कि व्यक्ति की भाषा उसके व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष दर्पण होती है। वेद ने हजारों वर्ष पूर्व यही सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था। मनसा वाचम क्रत, इस मंत्र का अत्यंत गूढ़ दार्शनिक वाक्य है। इसका आशय यह है कि वाणी का निर्माण पहले मन में होता है। जो विचार मन में जन्म लेते हैं वही शब्द बनकर बाहर आते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति में मन की शुद्धि को वाणी की शुद्धि का आधार माना गया है। योग दर्शन भी कहता है कि चित्त वृत्तियों के शुद्ध होने पर व्यवहार स्वतः श्रेष्ठ बन जाता है। अतः वाणी का संस्कार वास्तव में मन का संस्कार है। श्रोताओं, मंत्र का अगला भाग अत्रा सखा यह सख्यानि जानते, सामाजिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करता है। सच्ची मित्रता केवल स्वार्थ से नहीं बनती। मित्रता सत्य, विश्वास, स्पष्टता और मधुर वाणी पर आधारित होती है। जो व्यक्ति असत्य बोलता है, छल करता है अथवा कटु वचन बोलता है, उसके संबंध अधिक समय तक स्थिर नहीं रहते। इसके विपरीत जो व्यक्ति सत्य, प्रेम और सद्भाव से बोलता है, उसके चारों ओर विश्वास का वातावरण निर्मित होता है। यही कारण है कि मंत्र कहता है कि ऐसी शुद्ध वाणी वाले व्यक्तियों के बीच सच्ची मित्रता विकसित होती है। आज के सामाजिक जीवन में परिवारों का विघटन, मित्रता में दूरी, संस्थाओं में संघर्ष तथा समाज में वैमनस्य का एक बड़ा कारण असंयमित वाणी भी है। यदि लोग इस मंत्र की शिक्षा को अपनाएं तो विवाद समाप्त हो सकते हैं। मधुर, सत्य और हितकारी वाणी समाज में शांति का सबसे प्रभावी साधन है। श्रोताओं, श्रावणी उपाकर्म में इस मंत्र से आहुति देने का गहन आध्यात्मिक कारण है। श्रावणी उपाकर्म वैदिक विद्यार्थियों के नवीन अध्ययन वर्ष का प्रारंभ माना गया है। इस अवसर पर यज्ञोपवीत परिवर्तन बाहरी संस्कार हैं, किंतु वास्तविक उद्देश्य अंतःकरण का नवीनकरण है। विद्यार्थी संकल्प करता है कि वह अपनी वाणी को सत्य, मधुर और ज्ञानमयी बनाएगा। वेदाध्ययन में आलस्य नहीं करेगा, गुरु के उपदेशों का सम्मान करेगा तथा समाज में

0: ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। इस मंत्र की आहुति वास्तव में वाणी की अशुद्धियों को अग्नि में समर्पित करने और सत्यवाणी का व्रत ग्रहण करने का प्रतीक है। अंततः कहा जा सकता है कि ऋग्वेद का यह मंत्र संपूर्ण वैदिक संस्कृति का संवाद दर्शन प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि वाणी का निर्माण मन से होता है, मन का निर्माण ज्ञान से होता है और ज्ञान का आधार सत्य होता है। इसलिए वाणी को शुद्ध करना वास्तव में संपूर्ण व्यक्तित्व को संस्कारित करना है। श्रावणी उपाकर्म में इस मंत्र से आहुति देकर साधक यह संकल्प करता है कि वह अपने विचारों को विवेक की छलनी से छानेगा, सत्य को ग्रहण करेगा, असत्य का परित्याग करेगा, मधुर एवं हितकारी वाणी बोलेगा, सच्ची मित्रता स्थापित करेगा तथा अपने जीवन को वेद सम्मत ज्ञान, चरित्र और लोक मंगल के लिए समर्पित करेगा। यही इस मंत्र का वास्तविक तात्पर्य है, यही इसकी वैदिक महिमा है और यही इसका शाश्वत संदेश है। आदरणीय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। हमें विश्वास है कि वेद मंत्र की व्याख्या ने आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की होगी। इस कार्यक्रम को सजाने हेतु श्रीमती अंजू जी का विशेष योगदान रहा। आपने सुना, आप समस्त श्रोताओं को आभार हैं। पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

श्रोताओं, स्वीकारना, सीखना, सुधरना और बदलना, यही जीवन है। जीवन में किसी भी बात की अति हो जाए तो अवश्य क्षति होने में देर नहीं लगती। फिर चाहे आप कितने भी महान क्यों ना, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु की जीवन में अति ना होने दें। श्रावण का यह पावन महीना श्रवण करने का महीना, सुनने का महीना, और आए दिन आजकल रेडियो मॉरिशस पर हमारे कई ऐसे गुरुजन हैं, कई संस्थाओं से यहाँ पर उपस्थित होते हैं और हमें ज्ञानवर्धक बातें समझाते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। श्रावण के इस पावन महीने में बस मन को शांत करिए, तनाव से मुक्त करिए और इसी के साथ अच्छी बातों का श्रवण करें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। भक्ति में इस कार्यक्रम में आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस अगले भजन के साथ।

वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। श्रोताओं, इस श्रावण के पावन मास में जितनी अधिक भक्ति करेंगे, उतना हमारे जीवन के कर्म ठीक होंगे। हमारी बुद्धि में जो नकारात्मकताएं हैं उसका नाश होगा। हमारे भीतर बढ़ने वाली नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक भावनाएं कम होंगी, समाप्त होंगी, नष्ट होंगी। उस जीवन में बस हमें यही तो सीखना है, केवल रोज मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, इससे सीमित नहीं रह जाता। भक्ति करना, बस मन को पवित्र करना, विचारों को पवित्र करना, कर्म और वाणी में सुधार लाना, एक दूसरे के प्रति मानवता की भावना रखना, अपने कर्म में पूरी तरह से निष्ठा से मानव सेवा करना, यही सारी चीजें तो हमारा धर्म सिखाता है हमें। तो श्रोताओं, श्रावण के इस पावन मास में बस भगवान की भक्ति में लीन होने के साथ साथ मन को पवित्र बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। आज के इस कार्यक्रम को इस अंतिम धुन के साथ समाप्त करेंगे। आप सभी ने कल्याण कामना भक्ति भाव से हमारा साथ दिया। ईश्वर सदा आप सभी का कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं विराम देंगे। अन्य कार्यक्रम के साथ पुनः उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: अभी के लिए सुनते हैं फिर से संक्षिप्त समाचार आपके साथ सुमेरा। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार राधाब। राष्ट्रसभा के कार्य दिन के 11:30 बजे से शुरू हो रहे हैं। विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित रहेगा। पिछले 31 जुलाई को मिस्टर जी और होनरेबल VLG के घर की तलाशी के सिलसिले में जूली जोंग को जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्या क्या जब्त किया गया। वे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ड्रग तस्करी से प्राप्त पैसों के मामले में संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में पूछताछ कर रहा है या नहीं, और क्या अटॉर्नी जनरल दफ्तर ने रेन्यून टापू से कानूनी मदद की मांग की है या नहीं। राष्ट्रसभा के कार्यों के दौरान वेटलैंड्स की हिफाजत एजेंडा में शामिल रहेगी। कृषि उद्योग मंत्री पहली परहत पर वेटलैंड्स बिल को पेश करेंगे। इस विधेयक का मकसद सरकारी और निजी दोनों तरह की जमीनों पर मौजूद वेटलैंड्स के संरक्षण और बहाली के लिए एक नया कानूनी ढांचा तैयार करना है। बिल के तहत एक नेशनल वेटलैंड्स कमेटी कायम करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वेटलैंड्स के आसपास बफर जोन्स बनाए जाएंगे और इन सुरक्षित इलाकों में किसी भी तरह की गतिविधि या निर्माण का काम शुरू करने से पहले परमिट लेना लाजमी होगा। दूसरा अहम मुद्दा राष्ट्रसभा में क्रियोल मॉरिशियन को शामिल करने का है, जिसके लिए ये स्टीयरिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा लिया जाएगा, जिसका गठन बहुत जल्द किया जाएगा। पानी के रिजर्व घटते जा रहे हैं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने फिर से अपनी वितरण योजना पर गौर किया। आते सोमवार से नए कदम लागू किए जाएंगे। पूरे देश में पानी की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार से जलापूर्ति को 2 घंटों से कम करने का फैसला लिया गया। 10 अगस्त से नए कदम लागू किए जाएंगे। सिर्फ सब्जियों के खेतों में सिंचाई की जा सकेगी। गौवाश स्थलों को पीने का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी और उच्च दबाव वाली मशीनों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा, तथा नल पानी से स्विमिंग पूल को भरने की अनुमति भी नहीं होगी। और विदेश में पूर्वी एशिया में गर्मी बहुत शदीद होती जा रही है। कुछ जगहों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य पूर्वी एशियाई देशों में स्थिति बहुत ही गंभीर है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। बनवेन कोचे मिलितिया में 78 साल की 78 years old शेख बीबी आबेदा जानी पैदाइशी नाम जानी, जो फिरोजा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज साढ़े बारह बजे इनके घर बनवेन कोचे मिलितिया से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए इत्तेफाक मस्जिद कोचे मिलितिया और फिर दफनाने के लिए आलमा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: शम्मे फरोजा

आउज़ु बिल्लाही मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा, वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं, वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ले खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फ़रोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में हर मंगल की तरह आप समाअत फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक हम्द मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब का बयान नातु सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात। आसानियों के वास्ते रब की अता है ये, बेकार मसलों में ना ऐसे पड़ा करो, तुमको हर एक सवाल का मिल जाएगा जवाब, कुरान पाक को हमेशा समझ कर पढ़ा करो। तो आइए आगाज़ करते हैं कुरान पाक की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

तो उन्होंने सूरज निकलते वक्त उनका ताकुब किया। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुईं, तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो, तो समंदर फट गया। सो हर एक टुकड़ा यूं हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है, और दूसरों यानी फिरौनियों को वहां हमने करीब कर दिया, और मूसा और उनके साथ वालों को तो हमने बचा लिया, फिर दूसरों को हमने डुबो दिया।

और इनको इब्राहिम का हाल पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम किस चीज को पूजते हो, वो कहने लगे कि हम बुतों को पूजते हैं और उनकी पूजा पर कायम हैं। इब्राहिम ने कहा कि जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी आवाज सुनते हैं या तुम्हें कुछ फायदा दे सकते या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है।

इब्राहिम ने कहा, क्या तुमने देखा कि जिनको तुम पूजते रहे हो, तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, तो वो मेरे दुश्मन हैं, मगर रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया है सो वही मुझे रास्ता दिखाता है, और वो जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो मुझे शिफा बख्शता है, और वो जो मुझे मौत देगा और फिर जिंदा करेगा, और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि कयामत के दिन मेरा कसूर बख्शेगा।

ऐ परवरदिगार, मुझे इल्म दानिश अता फरमा और नेकुकारों में शामिल फरमा, और बाद वाले लोगों में मेरा जिक्र नेक बाकी रखियो, और मुझे नेमत की बहिश्त के वारिसों में शामिल कीजो, और मेरे बाप को बख्श दे कि वो गुमराहों में से है, और जिस दिन लोग उठा खड़े किए जाएंगे मुझे रुस्वा न कीजो, जिस दिन न माल ही कुछ फायदा दे सकेगा और न बेटे। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास बेरोक दिल लेकर आया वो बच जाएगा।

और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी और दोजख गुमराहों के सामने लाई जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि जिनको तुम पूजते थे वो कहां हैं, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजते थे क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद बदला ले सकते हैं। तो वो खुद और गुमराह यानी बुत और बुत परस्त औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे और शैतान के लश्कर सब के सब दाखिल है जहन्नम होंगे।

वहां वो आपस में झगड़ेंगे और कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो खुली गुमराही में थे जबकि हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे, और हमको इन गुनाहगारों ही ने गुमराह किया था, तो आज न कोई हमारे लिए सिफारिश करने वाला है और न कोई गर्मजोश दोस्त, तो काश हमें दुनिया में दोबारा जाना हो तो हम मोमिनों में हो जाएं।

वो बोले कि क्या हम तुमको मान लें जबकि तुम्हारे पैरों तो रजील तरीन लोग हुए हैं। नूह ने कहा मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते हैं, उनका हिसाब आमाल मेरे परवरदिगार के जिम्मे है, काश तुम समझो। और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूं, मैं तो फकत साफ साफ खबरदार करने वाला हूं।

उन्होंने कहा कि नूह अगर तुम बाज ना आओगे तो संसार कर दिए जाओगे। नूह ने कहा कि परवरदिगार मेरी कौम ने तो मुझे झुठला दिया, सो तू मेरे और इनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको बचा ले। बस हमने उनको और जो उनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया, फिर उसके बाद हमने बाकी लोगों को डुबो दिया।

कौमी आद ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इसका तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है।

पर फजूल निशान तामीर करते हो और महल बनाते हो कि शायद तुम हमेशा रहोगे, और जब किसी को पकड़ते हो तो जाबिराना पकड़ते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और उससे डरो जिसने तुमको उन चीजों से मदद दी जिनको तुम जानते हो। उसने तुम्हें मवेशियों और बेटों से मदद दी और बागों और चश्मों से। मुझको तुम्हारे बारे में बड़े सख्त दिन के अजाब का खौफ है।

0: वो कहने लगे कि तुम हमें खा नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए यकसा है, ये तो अगलों ही की आदत है और हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। तो उन्होंने हूद को झुटलाया सो हमने उनको हलाक कर डाला, बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है मेहरबान है।
1: सदकल्लाहुलअज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। ऐ खुदाया हम पर कुछ तेरी इनायत हो जाए, करम कर इतना कि चलते फिरते बस तेरा अज़िक्र करें, हमारा खाना पीना जागना सोना तेरी इबादत हो जाए। अता कर हम में ईमान का ऐसा शौक़ व जुनून, फ़र्ज तो फ़र्ज़ अदा हम से इस सभी रसूल की सुन्नत हो जाए। रखना हश्र में हमें अपने अर्श के साए तले, रखना अर्श में हमें अपने अर्श के साए तले, काम वो करें कि नसीब हमें जन्नत हो जाए, काम वो करें कि नसीब हमें जन्नत हो जाए।

हम जलील और रुस्वा हो जाएंगे, तो फिर उन्हें किसी तरह का जुल्म ढाने से कोई चीज़ रोक नहीं पाई। नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल को सिर्फ बेदर्दी के साथ शहीद करने पर उन लोगों ने इक्तफा नहीं किया, बल्कि आपके जिस्म अक़दस से कपड़े भी उतारे गए और घोड़ों की टापों से आपकी लाश मुबारक को पामाल करके हड्डियों को चकनाचूर भी किया। फिर खेमे की तरफ बढ़े, तमाम असबाब और सामान लूट लिया, यहाँ तक कि पर्दा नशी ख़वातीनों के सरों से चादरें खींच ली और खेमे को जलाकर राख कर दिया। जल गया खेमे अतहर, लेकिन दीन पर आँच आने नहीं दी। मरहबा जुरत इब्न हैदर, सर दिया बात नहीं जाने दी। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान जब ज़ुल्म पर आमादा हो जाता है और इबलीस ने उसे ज़ुल्म के रास्ते पे छोड़ दिया, तो फिर वो इंसान इबलीस से भी ज़्यादा, शैतान से भी ज़्यादा ज़ुल्म सितम करने लगता है। फिर ऐसे इंसान को ना अपने नेक नामी की परवाह होती है, ना बदनामी की परवाह होती है, ना ही ख़ानदान की परवाह होती है कि लोग ख़ानदान के बारे में क्या कहेंगे, ना ही परवरिश की परवाह होती है लोग परवरिश के बारे में क्या कहेंगे। तारीख़ करबला के ज़ुल्म को देखने के बाद लगता है कि इबलीस भी शर्म से निगाहें झुका ली होंगी, जो ज़ुल्म और सितम यजीद और उसके हमनवाओं ने अहले बैत पर की। बहर कैफ, क़ुरान मुक़द्दस शाहिद है, क़ुरान की आयत मुबारका शाहिद हैं कि आप मत समझो कि अल्लाह ताला ज़ालिमों के ज़ुल्म से गाफिल है और उनके करतूत और ज़ुल्म को नहीं देख रहा, वो देख रहा है। फ़ौरन बदला क्यों नहीं ले रहा रब तबारक ताला, फ़ौरन अज़ाब क्यों नहीं भेज देता अल्लाह तबारक ताला, कि वो ज़ालिम भी तो अल्लाह के बंदे हैं, इंसान हैं। अल्लाह ताला उन्हें एक मौका देता है, शायद ये सुधर जाए, ठीक होकर तौबा कर ले और सिरात मुस्तकीम पर आ जाए। इसलिए ऐसे ज़ालिमों को अल्लाह ताला हमेशा मोहलत देता है, और फिर जब नहीं सिरात मुस्तकीम की तरफ पलट कर आते हैं तो अल्लाह तबारक ताला की जहाँ शान रहमान और रहीम है, वहीं पर अल्लाह की शान कहार और जब्बार भी है। कुछ ऐसे ही हालात तारीख़ करबला के बाद हुए कि उसने ये समझा कि अब तो सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबदीन रदियल्लाहु ताला बचे हुए हैं, अब कौन है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि अल्लाह तबारक व ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है, और अल्लाह का ख़ुद फरमान है इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। तो आज पूरी दुनिया में करबला से वापस होने वाले तने तनहा मर्दों की जमात में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रदियल्लाहु ताला कि नस्ल पाक से नस्ल हसनी हुसैनी सब चली, तो आज पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में औलाद फातिमतु ज़हरा, औलाद अली मुर्तज़ा, तमाम सैयद की शान और सैयद की आनो बान में पूरी दुनिया में मौजूद हैं।

इस छोटे से जज़ीरे के अंदर भी हज़रत पीर जमाल शाह, पीर जहांगीर शाह वगैरह, इनकी तारीखें देखो, ये भी आले रसूल है। आले रसूल जिस ज़मीन पर होते हैं उस ज़मीन की जीनत, रौनक और ख़ूबसूरती और जमाल पैदा होता है। और ज़ालिमीन का ख़ात्मा होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, वाक़ई करबला के बाद मुख्तार उबैद सक़फ़ी ने काम तो बहुत शानदार अंजाम दिया, एक एक कातिल हुसैन को पकड़ा और सबको इसी दुनिया में उनको सज़ा दी और उन्हें मार मार कर जहन्नम में ठूंस दिया। बस ये कि अच्छा काम जब होता है तो शैतान उसके करीब ज़रूर आता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो मुख्तार मगरूर होकर उसने दावे नबूवत की कि मेरे पास जिब्रील अमीन आते हैं और मुझ पर खुदा की तरफ से वही लाता है। दावे नबूवत किया तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला ने उसके दावे नबूवत की खबर मिली तो आपने उसकी सरकोबी के लिए लश्कर रवाना किया और 67 यानी 67 हिजरी में उस बकबूल को कत्ल किया। उसके बाद कातिलाने इमाम हुसैन पर तरह तरह के अजाब आए। जो लोग हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला के मुकाबले में करबला गए उनके कत्ल में शरीक हुए, उनमें से तकरीबन 6,000 कूफी तो मुख्तार के हाथों हलाक हुए और दूसरे लोग तरह तरह के अजाब में मुब्तला हुए। उलमाए किराम फरमाते हैं कि उनमें से कोई नहीं बचा जो आखरत के अजाब से पहले इस दुनिया में सज़ा ना पाई हो। उनमें से कुछ बुरी तरह कत्ल किए गए, कुछ अंधे और कुछ कोढ़ी और कुछ लोग सत किस्म की आफतों में मुब्तला होकर हलाक हुए। हज़रत अबू शेख फरमाते हैं एक मजलिस में कुछ लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि हज़रत इमाम हुसैन के कत्ल में जिसने भी किसी तरह की कोई मदद की वो मरने से पहले किसी न किसी अजाब में ज़रूर मुब्तला हुआ। एक बुढ़ा जो उसी मजलिस में था उसने कहा, मैंने भी तो मदद की थी मगर मैं किसी अजाब में मुब्तला नहीं हुआ। इतना कहने के बाद वो चराग दुरुस्त करने लगा और उसकी आग ने बुढ़े को पकड़ लिया और उसका पूरा बदन जलने लगा। वो आग आग चिल्लाता रहा यहाँ तक कि दरियाए फरात में कूद पड़ा मगर आग भी नहीं बुझी और उसी में जलकर हलाक हो गया। इसी किस्म का एक वाक़ इमाम सुद्दी से भी मनकूल है कि उन्होंने फरमाया, वल्लाहु अना रायतुहु कअन्नहु हुममतुन, खुदा की कसम मैंने उसको देखा वह इस तरह जल रहा था जैसे कोयला। और इमाम वाकदी इससे रवायत है कि एक शख्स जो लश्कर यजीद के साथ था मगर उसने किसी को कत्ल नहीं किया था, वाकई करबला के बाद वो अंधा हो गया। उससे उसका सबब दरियाफ्त किया गया, उसने कहा, मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा कि वह आस्तीन मुबारक चढ़ाए हुए और हाथ में नंगी तलवार लिए खड़े हैं और हुजूर के सामने एक चमड़ा बिछा हुआ है और 10 कातिलाने हुसैन ज़बा किए हुए पड़े हैं। जब आपकी निगाह मुझ पर पड़ी तो बहुत लानतों मलामत की और ख़ून में डुबा कर एक सलाई मेरी आँखों में लगा दी, फिर मैं उसी वक्त से अंधा हो गया। यानी कि दुश्मनान अहले बैत अतहार करबला के बाद भी अगर आज भी कोई दुश्मन अहले बैत दुश्मन सादात है तो उस पर लानतों मलानत करना ये हुजूर की सुन्नत है, उसे अपने करीब ना बिठाओ

जो दुश्मन अहले बैत हो, वो चाहे हमारी शक्ल में जुब्बो कुब्बो दस्तार क्यों न हो। और हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की फरमाते हैं, यजीद के लश्कर का वो सिपाही जिसने इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला के सरे मुबारक को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था, कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा उसका

इमाम हुसैन के सर को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया। उसी रोज़ से हर रात दो आदमी मेरे पास आते हैं, मुझे पकड़ कर ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ बहुत सी आग होती है, मुझे मुँह के बल उस आग में डाल कर निकालते हैं। उस वजह से मेरा मुँह इतना ज़्यादा काला हो गया। रावी का बयान, वो शख्स बहुत बुरी मौत मरा। अल्लामा बारजी हजरत मंसूर से रवायत करते हैं, उन्होंने मुल्क शाम में एक ऐसे शख्स को देखा जिसका मुंह सूअर जैसा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बी व तूब इलैह। उसने उसकी वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया, वो रोज़ाना हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर 1000 मरतबा और जुमा के दिन 4000 मरतबा उन पर और उनकी औलाद पर लानत भेजा करता था। तो एक रात उसने ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उसने लंबा ख्वाब बयान किया, उसमें एक बात ये भी थी कि हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला ने उस पर लानत भेजने की हुजूर की खिदमत में शिकायत की तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई और उसके मुंह पर थूक दिया तो उसका मुंह सूअर खिंजीर जैसा हो गया और वो लोगों के लिए नसीहत बन गया। सवा के मुहर्रका सफ़ा 120। अज़ान मोहतरम, इससे हमें नसीहत हासिल करना चाहिए। जो लोग आज भी अहले बैत तहार वो सादात की जमात, चाहे हसनी हो, हुसैनी हो, फातिमी हो, अलवी हो, कोई भी हो, वो औलाद गौसे आज़म हो, औलाद सरकार गरीब नवाज हों, औलाद हुजूर मखदूम अशरफ सिमना हों, औलाद हजरत दाता गंज बख्श हिजवरी हों, औलाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हों, या कोई भी वली कामिल की औलाद पाक जो हसनी हुसैनी सैयद हों या हसनी हों या हुसैनी हों, उनकी औलाद को जो लोग नहीं पसंद करते हैं वो अपनी दुनिया बर्बाद कर रहे हैं और अपनी आकिबत बर्बाद कर रहे हैं। और जो लोग मुँह चढ़े हो गए हैं, आले रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी मुँह खोल कर गुस्ताखी करते हैं और कभी मुँह बंद रहता है, दिल में बेअदबी और गुस्ताखी रखते हैं कि तमाम आले रसूल आ रहे हैं, ऐसों को सबक सीखना चाहिए इन वाक़यात से जो दुश्मन अली मुर्तज़ा हो या औलाद अली मुर्तज़ा हो, उसकी उसका हाल क्या होगा। आपने सुना नहीं कि उसका मुँह सूअर जैसा हो गया। ज़बान से आज बहुत से लोग हैं कि इमाम अली मकाम की तारीफ मुख्तसरन कर देते हैं ताकि लोग मुझे ना जाने कि मैं कौन हूँ। वो नासिबी अपने आप को छुपा रहे हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह तबारक ताला दिलों के हाल को बेहतर जानता है। ऐसे के चेहरे से रौनक ख़त्म होती है और ऐसों की मौत बड़ी दर्दनाक होती है। कोई ऐसे मर जाते हैं तो किसी की ज़बान बाहर निकल आती है, किसी का चेहरा बिगड़ जाता है। वो चाहे जो हों, चाहे आवाम में से हों, चाहे उलमा की बड़ी जमातों में से क्यों ना हों, तारीख़ आप पढ़ें। अज़ीज़ान मोहतरम, वो बदबख्त जिसने हज़रत अली असगर रदियल्लाहु ताला के हल्क में तीर मारा था, वह इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ कि उसके पेट की तरफ ऐसी सख्त गर्मी पैदा हुई कि गोया आग लगी है और पीठ की तरफ ऐसी सर्दी खुदा की पना। इस हालत में उसके पेट पर पानी छिड़कते और बर्फ़ रखते और पंखा झेलते मगर ठंडक पैदा न होती और पीठ की तरफ आग जला के गर्मी पहुंचाने की कोशिश करते मगर कुछ फ़ायदा न होता और प्यास प्यास चिल्लाता और उसी
उसके लिए सत्तू पानी दूर लाया जाता, लेकिन पांच पांच घड़ा भी उसको पिलाया जाता, वो भी पी लेता, फिर भी प्यास प्यास

0: चिल्लाता ही रहता, यहाँ तक कि इसी तरह पीते पीते उसका पेट फट गया और मरकर जहन्नम चला गया। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुहाज़रात में तहरीर फरमाते हैं, कूफे में चेचक की बीमारी एक साल ऐसी हुई जो लोग इमाम हुसैन अहले बैत तहार रिजवानुल ताजमैन को कत्ल करने के लिए गए थे, 1500 औलाद उनकी चेचक से अंधी हो गई। हाकिम हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला से रवायत करते हैं कि खुदा ताला ने रसूल सल्लम के पास वही भेजी कि मैंने यहया इब्न ज़करिया के एवज़ 70,000 को मारा, ऐ महबूब तुम्हारे नवासे के कत्ल के एवज़ 70,000 यानी 1,40,000 को मारूंगा। चुनांचे बहुत से लोगों को मुख्तार के हाथों से मारा और बेशुमार लोगों को तरह तरह की मुसीबतों आफतों से हलाक किया। फिर कई हज़ार अब्बासी सल्तनत के बानी अब्दुल्ला सफ़ा के हाथों से मारे गए, इसी तरह वादे इलाही पूरा हो गया, कुल 1,40,000 मारे गए। इमाम अली मकाम रदिल्लाह तलन के मुकाबले में 22,000 का लश्कर मैदान करबला में था तो 1,40,000 को अल्लाह ने क्यों मारा? इस एतराज़ का जवाब ये है, हज़रत इमाम हुसैन रदिल्लाह तलन के कत्ल में शरीक हुए उन मुजरिम होने के साथ वो भी मुजरिम हुए जो कत्ल हुसैन पर राज़ी थे, लिहाजा कातिलान हुसैन के साथ वो भी मारे गए जो उनके हमराह करबला नहीं गए थे। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सरकार दुआ सल्लम ने फरमाया, जब किसी जगह कोई गुनाह किया जाए तो वो शख्स वहाँ हाजिर हो मगर उसे बुरा समझता है तो वो उस आदमी की तरह है जो वहाँ मौजूद नहीं, और जो शख्स वहाँ मौजूद ना हो मगर राज़ी हो तो उस आदमी के मिसल है जो वहाँ मौजूद हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें बड़ी नसीहतें और सबक मिलते हैं मॉरिशस गवर्नमेंट के रेडियो के ज़रिए हम लोग आप तक पैगाम पहुँचाते हैं ताकि ऐ मुसलमानों तुम सुधर जाओ, अपने अकायद को सुधार लो। उलमा आइम्मा आप भी अपनी ज़िम्मेदारी बयान करें, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, हक बात कहें, अहले बैत तहार की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करें और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखें। यजीदियत और ज़हन यजीदियत से अपने आप को भी हम सब आज़ाद करें और आवाम को भी यजीदियत फ़िरक़े की तरफ न जाने दें। मोहब्बत हुसैन में आप जो कुछ कर रहे हैं, शरीयत मुताहरा के दायरे में रहकर, उसका सवाब सिर्फ़ इस दुनिया में नहीं कब्र आखरत हश्र में भी है। अज़ान मोहतरम, ये सफ़र का महीना, आप हज़रात इसे याद रखें। मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत से मंसूब है। इस सफ़र के महीने में भी हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा 28 सफ़र को शहीद किए गए। ये शहादत सिर्री यानी जहर देकर इमाम हसन को शहीद किया गया। तो देखा जाए तो औलियाए कामलीन मोहब्बत अहले बैत की निगाह से देखोगे तो मुहर्रम का महीना हुसैन का है, सफ़र का महीना हसन का है। अल्लाह ताला इन कलिमात को कबूल फरमाए, मुल्क मॉरिशस में अमन व सुकून, आलम इस्लाम में अमन व सुकून और मोहब्बत अहले बैत ताज़ीम सादात हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीबो इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब की ज़ुबानी एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए चंद ऐलानात। जुमेरात

6 अगस्त, जी हाँ, जुमेरात 6 अगस्त, दारुल उलूम मजलिस रज़ा प्लेंदे पपाई में बाद नमाज ज़ोहर मोहतरमा आलिमा सैयदा उनाजा फ़ातिमा और उस्तादा यास्मीन आज़िया साहिबा की सरपरस्ती में उर्स आला हज़रत और ज़िक्र का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। और इतवार 9 अगस्त, जी हाँ, इतवार 9 अगस्त सुबह 10 बजे सुन्नी रज़वी औलिया मस्जिद और सुन्नी रज़वी एकेडमी सईदगो लोगों पोटलुस में सुन्नी रज़वी सोसाइटी इंटरनेशनल की जानिब से उर्स आला हज़रत का अहतमाम किया जा रहा है।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क में हमारे जज़ीरे पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा, पानी की किल्लत को दूर फरमा, हमारे लिए नफ़ा बख्श और बाबरकत बारिश अता फरमा और हमें अपनी नेमतों की क़द्र करने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस। मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 有。
1: 女人说，再不说我要生气了。嗯。
2: 您所收听的是毛里求斯广播电台八一九频道。

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟你告别，下次节目再会。

0: तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपके लाए हैं आपकी पसंद कार्यक्रम 4028085 पे आप हमारा साथ दे रहे हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो है 5251700। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ व्हाट्सअप मैसेज पे है मोरारबा की अनिता जी, है करुणा है अमृता, सभी परिवारों के लिए ये अगला गीत हम चला रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नजराना जो है हम इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। वैसे आपको पता है सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। तो चलिए एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा नजाना है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी सुनने वालों के नाम जो है ये प्यारा सा नजाना जो है मेरी तरफ से और एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

तो चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। विश्वानी डुमेन जी है वाकवा की रहने वाली। ये अगला गीत है जाएगा उनके सभी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा है, उनकी सहेलियां हैं नीला, प्रतिभा, शोभा जी है और साथ में है गीता गजादर। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत है। दिल कितना नादान है इस फिल्म का ये शीर्षक गीत हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। 2:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। चलिए गीतों का एक खूबसूरत सफर से हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओ, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। सुदेवी जी है वाकवा की रहने वाली। अगला गीत जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए, त्रियोले की दीदी ललिता के लिए। कुशल परिवार है, दीदी सुनीता है, शोभा, देवीना, बिंदु, माला, मालिंगा के रहने वाले अनुषा है, किरण, राम रतन परिवार है, मुलाम परिवार है, कुआकू परिवार है, गुबा परिवार है, जालू परिवार है। तो इन सभी परिवारों के लिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म छलिया से लिया गया।

चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत हमारे साथ, जी हाँ, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो चलिए कुछ मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ विद्या जी है, न्यूएम्पा की रहने वाली, और ये अगला गीत जाएगा उनके समस्त परिवारों के लिए। उनके साथ है अमृता, साथ में है विमला, वेदना, प्रीति है, उनकी चाची है कुमारी, साथ में है सुरेखा, उनकी बहन है सती। तो उनके समस्त परिवारों के लिए ये अगला गीत जो है हम चला रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म का नाम है ठोकर, और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है जाएगा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के नाम विद्या जी की तरफ से। साथ में है राधा जी, आप है पिछे वैसे सैंपिया की रहने वाली है, हमेशा आप हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत आपके लिए, कांकोप की सुनीता जी है, साथ में है केश जी का थोबोन की रहने वाली, उनकी दो बेटियों हैं नेहा नितिशा, और साथ में है उनके दामाद अलविन और उनके समस्त परिवारों के लिए।

चलिए, ये श्रोता हुआ आपकी पसंद कार्यक्रम की अंतिम भेंट में। जी हाँ, समाचारों से पहले ये प्यारा सा गीत हमारे साथ इस समय समस्त बंधु परिवार है त्रियोले के रहने वाले, तो ये प्यारा सा गीत प्रदीप के स्वर में, फिल्म का नाम है नास्तिक। तो सुपर के 3 बजे आप समाचार सुन सकेंगे, समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जी हाँ आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

0: कितना।
1: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। हम मौत के सौदागरों के खिलाफ अपनी लड़ाई में समझौता नहीं करेंगे और कोई कवर अप नहीं की जाएगी, ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कही। वे विपक्ष नेता जूली झोंगा के पीएनक्यू का जवाब दे रहे थे। जोरेनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलो गांजे के कथित तस्करी के मामले में पूर्व जूनियर मिनिस्टर वेहोनिकुल गोविंद के पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि वेहोनिकुल गोविंद के वाहन की फोरेंसिक पुलिस द्वारा जांच की गई है, उसमें कैनबिस का एक बीज और उसके निशान मिले हैं। नवंबर 2024 से इस वर्ष 29 जुलाई तक देश की जेलों में 579 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इनमें से 41 फोन कैदियों के पास से बरामद किए गए। आज राज्यसभा में सांसद अदरियन जुवाल के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये आंकड़े साझा किए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इनमें से कुछ फोन का इस्तेमाल आपराधिक अपराध करने के लिए किया गया था। जेल परिसरों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 6 कदम लागू किए जाएंगे, जिसमें मिलगोज जेल में मोबाइल फोन जामर सिस्टम की स्थापना भी शामिल है। प्रधानमंत्री को संबोधित प्रश्नों के सत्र में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि की है कि सरकार पार्लियामेंट्री प्राइवेट सेक्रेटरीज पीपीएस की व्यवस्था को बहाल करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इस बदलाव से जूनियर मिनिस्टर का पद समाप्त हो जाएगा। सांसद अदरियन जुवाल ने तब ये तर्क दिया कि एक जूनियर मिनिस्टर के विपरीत जो उस मंत्री पर निर्भर होता है जिसके साथ वो जुड़ा होता है।

पीपीएस की विशिष्ट जिम्मेदारियां होती हैं, विशेष रूप से किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति। हालांकि प्रधानमंत्री इस विचार से सहमत नहीं है। सांसद जुआना बेहोंशे के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा में क्रेओल मॉरिसियन के इस्तेमाल पर बनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले सिलेक्ट कमेटी के समक्ष पेश किया जाना होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस समिति की भूमिका के बारे में अधिक स्पष्टता आज देर शाम तक दी जाएगी। वैसे ये रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में स्पीकर को सौंप दी गई थी। 8 साल की घोषणा के बाद वेटलैंड्स बिल को आखिरकार इस मंगलवार को राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया। इस कानून का उद्देश्य वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिन्हें अब तक एनवायरनमेंट एक्ट के तहत केवल अप्रत्यक्ष सुरक्षा ही प्राप्त थी। अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए भी एक कानून तैयार किया जा रहा है। और विदेश में जंगल की भीषण आग के कारण उत्तर पश्चिमी अमरीकी राज्य वाशिंगटन के कुछ हिस्सों से लगभग 60,000 लोगों को सुरक्षित बाहर जाना पड़ा है, जिससे सैकड़ों इमारतें नष्ट हो गई और हजारों लोग बिजली से वंचित हो गए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सपहर के 3:03 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओ और हम प्रसारित कर रहे हैं इस समय आपकी पसंद कार्यक्रम। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे, और चलिए गीतों का एक खूबसूरत सफ़र इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आप ही के अनुरोध पे हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए गीतों की ओर हम बढ़ेंगे, और ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप तमाम श्रोताओं के नाम जो है ये अगला गीत, और ये प्यारा सा गीत जो है आप फिल्म आसमान से लिया गया सुन पाएंगे। ये गीत जाने वाला है हमारे साथ जो है माला सुमारू जी है कथबोन की रहने वाली, उनके पति सूर्यदेव जी उनके सभी बच्चों के लिए, साथ में ये गीत माँ गायत्री जी के लिए जो कि नोवेल फ्रांस की रहने वाली, उनके बेटे हैं अजय, उनके सभी परिवारों के लिए। गीता जी है पोंफिया की रहने वाली, साथ में है उनके पति रोहित जी, आदित्य और जानवी तनिष, उनकी बहन है मीरा निकोव की रहने वाली। तो इन सभी लोगों के नाम जो हैं ये बहुत ही बढ़िया सा नज़ाना हम शामिल कर रहे हैं। तो आपकी पसंद कार्यक्रम शाम के 4 बजे तक
2: आपकी पसंद।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए, ये अगला गीत बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत है, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत जो है हम चलाने वाले हैं। और आप हैं हमारे साथ इस समय, सुरेखा जी है डेपिने की रहने वाली, और यही गीत पे हम नाम जोड़ने वाले हैं। हमारे साथ त्रिवेणी जी है गुडलैंड की रहने वाली, उनके पति है अनिल जी, सभी मोहन परिवार के लिए।

तो चलिए श्रोताओं, सपहर के 3:20 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। तो चलिए हम अगले गाने की ओर बढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम चलाने वाले हैं। ये

हमारा संगीत जो है हमारे साथ इस समय मीरा जी हैं, मीरा गाम स्वामी जी हैं, पामा का तो बोन की रहने वाली। तो ये गीत जो है जाएगा उनके सभी बच्चों के लिए, रोडीना है, शिवना है, लोना है, तो इन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म सफ़र से लिया गया।

चलिए श्रोते आओ आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी मुलाकात इस फिल्म से लिया गया गीत है शोभाजी की पसंद पे, जो कि पॉम्पे मिसेज की रहने वाली है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए श्रोता, अगला गीत बहुत ही प्यारा सा गीत है। ये गीत जो है राधा जी के लिए, पिछले वर्ष सैपिया की रहने वाली उनकी तीन बेटियों हैं, काजल, शीतल, दीक्षा, उनके दामाद है वितिश, उनके पति है बालदेव, जो कि सभी बच्चों के लिए ये प्यारा सा गीत आपके लिए अनिता जी, जो कि पिछले वर्ष सैपिया की रहने वाली है। स्टूडियो की घड़ी में 3:30 बज रहे हैं श्रोता, बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म आंटी।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं, तो चलिए इस कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही खूबसूरत सा गीत इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, और ये गीत जो है हमारे साथ इस समय, जी हमारे साथ इस समय अनसुया जी है त्रियोले की रहने वाली, और उनका ये मनपसंद गीत है, जाएगा उनके समस्त परिवारों के लिए। और ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है उनकी नातिनियाना के लिए, साथ में उनके बेटे हैं नितिश, साथ में है प्रेमिला सी गुलाम, रागिनी है, साधना है, ये सब उनकी बहनें हैं। तो इन सभी बहनों के लिए ये प्यारा सा गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो एक से बढ़कर एक गीत

हम चला रहे हैं आपकी मनपसंद रेडियो चैनल पे टू शूट आउट। तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में, इन सभी लोगों के नाम 4028085 पे आप जो है जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो चलिए, बन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इसे जारी रखेंगे शाम के 4 बजे तक।

और इसी गीत पे नाम जोड़ेंगे। सुनीता जी हैं गांवकोप की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। मन जी है क्वायो की रहने वाली, ये गीत जायगांव के सभी परिवारों के लिए, फोकियाचंद परिवार है एक्वायो के रहने वाली।

चलिए अगला गीत हमारे साथ जैबुन जी है पोपाला की रहने वाली और ये गीत जाएगा उनकी भाभी जैबुन और भैया आज़ाद की सालगिरह शादी की सालगिरह के मौके पर। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों की तरफ से, सात बेटे हैं, चार बहुएं हैं, नाती पोते हैं। तो चलिए ये प्यारा सा गीत जो है एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से, खास करके जैबुन जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

आपकी पसंद कार्यक्रम 3:50 हुए हैं हमारे साथ इस समय सेंट जूलियन की रहने वाली जी हैं उमा जी अपना जन्मदिन मना रही है, ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी बहन प्रेमिला बोजू की तरफ से जो कि कॉटेज की रहने वाली है, ढेर सारी शुभकामनाएं पति मुकुंद की तरफ से, जेनीता है, जेशिना है, उनके सभी बच्चों की तरफ से, मेविन भी हैं साथ में हैं, उनकी माता जी रत्नावती और उनके भाई है आत्माराम, उनकी बहनें हैं और साथ में उनके सभी भाइयों की तरफ से ये प्यारा सा गीत है जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए श्रोताओं।

चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद है, इसे रेडियो मॉरिशस पे चला रहे हैं, तो अगले गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, और जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत जो है इन लोगों की फरमाइश पे हम शामिल कर रहे हैं। फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन, और बहुत ही पॉपुलर गीत है ये गीत जो है, ख़ास करके हम उमा जी के जन्मदिन के मौके पे चला रहे हैं। आप सेंट जुलिया के रहने वाले हैं।

तो चलिए उमा जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पर। आप जो है सेंट जूलिया की रहने वाली है, तो चलिए पहला सा गीत आपके नाम इस समय आप सुन रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो जाएगा। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आपकी फ़ोन कॉल्स, आपके व्हाट्सअप मैसेजेस के लिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक अंतिम नजाना आपके नाम छोड़े जा रहे हैं, तो हम आपको कहेंगे नमस्कार, फिर मिलेंगे। कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और आप तमिल भाषा में युवा रसन के साथ सुन पाएंगे। हमारी तरफ से नमस्कार।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: Radio Mauritius.
2: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस.
1: रेडियो मॉरिशस.
2: रेडियो मॉरिशस.

5:12 हुए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस के लहरों पर, जहां आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम, और आप सबका स्वागत है। मैं हूं उषा कौर, यहां पर साथ निभाने के लिए एक से बढ़कर एक गीत 40s 50s के खूबसूरत गाने तलत महमूद की आवाज़ में। चलिए उनके गाने हम एंजॉय करते हैं।

है सबसे मधुर वही है गीत, वो है गीत। जी हाँ, बस ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में अगर संगीत नहीं होता तो हम क्या करते। भोले बिस्तरे गीत प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। जी हाँ, 5:20 हुआ है दोस्तों। फिल्म हालाकू के गीत सिर्फ सुरों का संगम नहीं, यह फिल्म आपने देखी होगी, बल्कि उस दौर की संगीतमय विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। इन गानों में मधुर धुनों के साथ गहरी भावनाएं भी बसी हुई है। हर लफ्ज़ और हर सुर दिल को उस ज़माने की यादों में ले जाते हैं जब संगीत को महसूस किया जाता था, सिर्फ सुना नहीं जाता था। तो चलिए यहाँ पर लता जी की प्यारी आवाज़ में ये चांद ये सितारे ये गाना आपके लिए।

5:45 हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, खोया खोया चांद, जी हाँ ये गाना आपने सुना होगा और ये गाना फिल्म काला बाजार से लिया गया 1959 में। जी हाँ, और ये गाना आप सुनेंगे रफ़ी साहब की आवाज़ में। और चलिए ये गाना आप सुने। और जितने लोग इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, हमें पता है काफ़ी लोग हमें मैसेजेस भी करते हैं कि उषा जी आपका जो प्लेलिस्ट है हम हर मंगलवार का इंतज़ार करते हैं, कब आप आएंगे और ऐसे ऐसे गाने चलाएंगे जो हमें फिर से उन ज़माने में लेकर जाएगा। चलिए, खोया खोया चांद, खुला आसमान।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: लाते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा।

5:52 हुए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम, और ये गाना आप सुनेंगे सुमन कल्याणपुर और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। दोनों की आवाज़ें बहुत ही प्यारी हैं, और यहाँ पर इसी गीत के साथ या आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभरात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। मंगलवार 4 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कोई भी कानून से परे नहीं है और इस मामले में किसी तरह का कवर अप नहीं होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में ये बात कही। वे पूर्व जूनियर मिनिस्टर वेरोनिका लेगोविन के पति गुलशन गोविन से जुड़े कथित ड्रग तस्करी मामले पर विपक्ष नेता जूली जोंगो के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। मॉरिशस में वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है। वेटलैंड्स बिल राष्ट्रीय सभा में पहली बार पेश किया गया। इसका मकसद इन प्राकृतिक क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी आज स्वदेश लौट गए। देश के नाम आई मेडल हमारी हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच एक बार फिर अनिश्चितता बढ़ गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही बातचीत संघर्ष समाप्त करने का आखिरी मौका है। वहीं ईरान ने अमरीका के साथ किसी भी प्रत्यक्ष वार्ता से एक बार फिर इनकार किया है। और उधर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून का कहर अभी भी जारी है। आसाम में बाढ़ और बारिश से हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। इस बीच भारत मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। कोई भी कानून से परे नहीं है और इस मामले में किसी तरह का कवर अप नहीं होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में ये बात कही। ये वे पूर्व जूनियर मिनिस्टर वेरोनिका लेगोविन के पति गुलशन गोविन से जुड़े कथित ड्रग तस्करी मामले पर विपक्ष नेता जो लेजोंगो के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। सिंचामुथु की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
2: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने 26 जुलाई को रियूनियन टापू से प्राप्त उस सूचना के बाद की घटनाओं का क्रम बताया जिसमें 155 किलोग्राम से ज्यादा गांजा जब्त किए जाने की जानकारी दी गई थी। इस खेप की कीमत 233 मिलियन रुपए बताई गई है। इसके बाद गोविंद परिवार के घर की तलाशी का वारंट जारी किया गया। पूर्व जूनियर मंत्री वेरोनिका लेगोविन का एक वाहन भी जब्त किया गया। वहीं उनके पति गुलशन गोविन को गिरफ्तार कर अस्थायी रूप से आरोपित किया गया।
3: On the 1st of August 2026, in the presence of Mr. YJ and ATSU officers,
2: 1 अगस्त 2026 को आत्सू और एफएसएल के अफसरों ने संदिग्ध की उपस्थिति में गाड़ी की जांच की जिसमें गांजे के पत्ते और बीज पाए गए। उसी दिन उस पर अस्थायी

0: आरोप लगाए गए और उसे वीकेंड कोर्ट में पेश किया गया। उसे पुलिस हिरासत में रखा गया। ब्लैक रिवर की अदालत में उसे फिर से पेश किया जाएगा। 3 अगस्त 2026 को ब्लैक रिवर की जिला अदालत में उसके खिलाफ डेंजरस ड्रग्स एक्ट के तहत ड्रग तस्करी करके मॉरिशस में गांजे लाने, गांजे के पौधे रोपने और खतरनाक ड्रग्स अपने पास रखने के आरोप लगाए गए। उसे जमानत पर रिहा करने पर आपत्ति जताई गई। रविवार 2 अगस्त को उनकी पत्नी आजसू दफ्तर गई, ये सोचकर कि उसे बयान देना होगा। उसे बुधवार 5 अगस्त 2026 को अपने वकील के साथ वहां आने को कहा गया।
1: On Sunday, the 2nd of August, Mrs. VLG voluntarily went to the ATSU Western Division because she thought she might need to give a statement. However, ATSU Western Division asked her to come with the legal counsel on Wednesday, the 5th of August, 2026.
0: डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने बताया कि अटोर्नी जनरल ने रियूनियन टापू से पारस्परिक कानूनी सहायता की मांग की है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में जांच शुरू कर दी है।
1: I'm informed by the Financial Crimes Commission that following information published in the press to the effect that Mr. YJ and others were arrested by the ATSU in connection with an alleged network involving the importation of drugs between Reunion Island and Mauritius.
0: फाइनेंशियल सर्विसेज क्राइम्स और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से मुझे सूचित किया गया है कि प्रेस में प्रकाशित खबरों के बाद कि रियूनियन टापू और मॉरिशस के बीच भारी मात्रा में ड्रग्स आयात करने के संबंध में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और कि इस नेटवर्क के साथ उसका संबंध है, उसके और उसके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच की जा रही है। FCC के एसेट रिकवरी एंड मैनेजमेंट डिविजन उसके और उसके परिवार की संपत्ति की जाँच कर रही है। FCC इस मामले की सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है और जांच जारी है। हमने कई बार बताया है कि जब से ये सरकार सत्ता पर आई है, यानी 14 नवंबर 2024 से, हम ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष में कोई नरमी नहीं दिखाएंगे। अब तक की गई गिरफ्तारियों से पता चलता है कि हम ड्रग लीडरों को कैसे पकड़ रहे हैं।
1: There will never be any cover-up. Whoever you may be, whatever high office you may hold, you will have to bear the consequences of your actions.
0: इसके बाद इस मामले पर कई अतिरिक्त प्रश्न भी पूछे गए।
2: Madam Speaker, while I note that the junior minister stepped down only yesterday, does the Honourable Prime Minister concur that this resignation should have been immediate upon the search of her residence rather than delayed until the public and media pressure became unbearable in the country?
1: I don't agree with the Honourable Leader of the Opposition. You must have evidence for people to step down. There was no evidence yet, but there was the perception. So that's why she decided she would step down.
2: Can the Honourable Prime Minister confirm if the former junior minister or her husband or both together have travelled to Reunion Island recently, and how many times, and whether they have had access to the VIP lounge?
1: Naturally, when she travels, she's a junior minister, she would have access to the VIP lounge. She traveled 3 times to Reunion Island. Twice, I think, her husband accompanied her.
2: My information, and can the Honourable Prime Minister confirm that they have traveled together to Reunion Island on 5 occasions in 2025 and on 2 occasions in 2026, and they have had access to the VIP lounge, both of them?
1: I was informed 3 times, but the Honourable Leader of the Opposition is saying 3 times. I'll check on that.
3: As the Prime Minister, whether he's aware that the Honourable Member is born on record for dealing in stolen property, and that her husband is also born on record, have been convicted, both of them, is she aware?
4: Are you aware?
1: I'm not aware of this. It's a new
4: PSP.
1: I'm not aware of this. No.
3: Well, I will inform the Prime Minister, cause number 398/11, dealing in stolen property, convicted for, she was, 3 years on good behavior, and 5,000 rupee fine. Is she aware of that?
4: Are you aware, Prime Minister?
1: No, I'm not aware, but you were the president of the PMSD at the time. PMSD.
3: The PMSD refused to give her a ticket, and she came to your party, and you gave her a ticket. That is the reason why.

0: Will you give assurance to the House that there will be no cover-up in this case?
1: I again said the proof of the pudding is in the eating. She is a junior minister in my government, but I did not hesitate. I did not tell the police, no, don't do this, don't do that. They did the work, and I said in my answer, nobody is going to be spared. Nobody is above the law.
2: खबरों को आगे बढ़ाती हैं। जेलों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में पीएमक्यूटी के दौरान ऐलान किया कि मार्च 2027 तक जेल प्रशासन को एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी मदद से बिना अनुमति उड़ने वाले ड्रोन का पता लगाया जा सकेगा और उन्हें रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि प्रोजेक्ट मॉनिटोरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट और टैक्स व्यवस्था से जुड़े कई सवालों के भी जवाब दिए। मीगान परापनाई कैन करुणा लालू।
3: बजट 2025-2026 में VAT रजिस्ट्रेशन की सीमा 6 मिलियन रुपए से घटाकर 3 मिलियन रुपए कर दी गई। सांसद बिचुक के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने नई पंजीकृत संस्थाओं से प्राप्त आय का उल्लेख किया।
1: For the period 1st of October 2025 to 29th of July 2026, the total VAT revenue collected from newly VAT registered entities amounts to 655 million rupees. The number of new VAT registration is 8,764 and the number of VAT deregistrations is 84.
3: सांसद सिबर ने किराए पर निवेश के लिए आवास ऋण यानी बाई टू लेट मोर्टगेज मौके के विकास पर प्रश्न किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस में पहले ही आवास ऋण और गृह वित्त पोषण का एक सुव्यवस्थित बाजार मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक बैंक ऑफ मॉरिशस को इस संबंध में नियामक ढांचे में बदलाव के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
1: That the banking sector has not approached the bank with regard to the lending based on the equity of existing residential properties and the income generating potential of investments. In the event of such a proposal, the bank will study all the aspects of these types of lending arrangements before determining the appropriate regulatory framework, if any.
3: सांसद जोआना बेरांजे के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि उनके दफ्तर के अधीन शीघ्र ही एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन, निगरानी और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना है।
1: Consultations are already underway for the selection of a highly qualified professional with a view to ensuring that the unit will be manned by a proficient team with robust engineering background and proven track record in project management.
4: Can you nous dire si cette unité aura un pouvoir décisionnel ou uniquement consultatif?
1: No decisional power, because he will be able to tell us where the bottlenecks is, where the delay are, where the costs of a run are, and he will look at that.
3: जेलों में जब्त किए गए मोबाइल फोनों के संबंध में सांसद अरविंद अग्रवाल के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2026 तक कुल 579 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इनमें से 41 मोबाइल कैदियों के पास से बरामद हुए, जबकि 41 मामलों को जांच के लिए पुलिस को सौंपा गया। एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा चुका और 35 मामले पर जांच जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेल प्रशासन ने मोबाइल फोन की तस्करी रोकने के लिए पहले ही कई सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी लगाए जाएंगे।
1: The upgrading of the mobile phone jamming system at the Melrose prison will be implemented shortly. The Mauritius Prison Service is also implementing anti-pelting netting in correctional facilities to prevent the introduction of contraband and enhance the safety and security of prison institutions. The Mauritius Prison Service will also procure a new anti-drone system by March of next year to detect and counter unauthorized drone activity, thereby further reinforcing the security of prison premises.
5: Whether he will review urgently, whenever a mobile phone is seized, an inquiry be initiated into the owner of that SIM card, the registered owner.
1: I can tell them.

0: सदस्यों को शामिल करने के प्रस्ताव पर आज बहस जारी रही। मंत्री पत्रिका सियावादन ने इसे लोकतंत्र की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वहीं पोल बेरांजे ने कहा कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों का चयन सोच समझ कर किया जाना चाहिए और क्रियोल मोरिसियन देश की राष्ट्रीय भाषा है। मंत्री शकील मोहम्मद ने इसे आज़ादी के बाद की एक ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि भाषा का धर्म से नहीं बल्कि संस्कृति से संबंध होता है। वहीं सांसद साबावदी ने इसे नागरिकों के करीब एक गणराज्य की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। क्रियोल मोरिसियन को राष्ट्रीय सभा में शामिल करने के प्रस्ताव पर बोलने वाले अन्य सांसदों ने भी इस पहल का समर्थन किया। उनके अनुसार ये इस भाषा के संरक्षण और प्रोत्साहन के साथ साथ संसद को लोगों के और करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका ये भी कहना था कि सिलेक्ट कमेटी को इस राष्ट्रीय सुधार के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करना चाहिए। मॉरिशस में वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है। वेटलैंड्स बिल राष्ट्रीय सभा में पहली बार पेश किया गया। इसका मकसद इन प्राकृतिक क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार अन्य संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों के लिए भी नया कानून तैयार कर रही है। डोमेस्टिक अब्यूज एक्ट अब बिना सहमति के बनाए गए यौन संबंधों को घरेलू हिंसा का एक रूप मानता है। वहीं क्रिमिनल कोड में लाए गए बदलाव के बाद अब पति या पत्नी पर वैवाहिक बलात्कार का मामला भी चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में ये कैसे साबित किया जाता है कि वास्तव में वैवाहिक बलात्कार हुआ है? जांचकर्ता और अदालत किन बातों और सबूतों पर ध्यान देते हैं? आइए जानते हैं अंजू रामगुलाम की इस रिपोर्ट में करुणा लालू के विवरण के साथ।
1: वैवाहिक बलात्कार को अब कानून द्वारा अपराध के रूप में मान्यता दे दी गई है। हाल के कानूनी सुधारों के तहत यदि कोई पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।
2: Définir le viol comme la pénétration du vagin de la femme de l'organe féminin par l'organe masculin. Donc là, nous pouvons éliminer tout ce qu'on appelle objet, etc., etc.
1: Vakil Mokshada Pertub ne kaha, yahan par sabse mahatvapurna baat bina sahmati ke yon sambandh banana hai. Vaivahik balatkar hua hai ya nahi, ye nirdharit karne ke liye, janchkarta aur nyayalay kai prakar ke sakshon par vichar karte hain. यदि हिंसा हुई है तो सबूत होने चाहिए, मेडिकल एविडेंस होने चाहिए या गवाह होने चाहिए जिनसे आपने बात की। यदि किसी व्यक्ति ने शुरुआत में यौन संबंध के लिए सहमति दी लेकिन बाद में नहीं कह दिया तो उस क्षण से उसका इनकार मान्य होगा और उसका सम्मान किया जाना
2: चाहिए।
1: यदि कोई चोट लगने या प्रतिशोध के डर से शारीरिक रूप से विरोध नहीं करता तो सिर्फ विरोध न करने का अर्थ ये नहीं कि उसने सहमति दी हो। एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, फैमिली सपोर्ट यूनिट जा सकते हैं अथवा पुलिस की फैमिली प्रोटेक्शन यूनिट भी जा सकते हैं और प्राप्त साइकोलॉजिकल रिपोर्ट को अदालत में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
2: एक अन्य
1: महत्वपूर्ण बात, वैवाहिक बलात्कार से संबंधित वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत किसी पुरुष को अपनी पत्नी के विरुद्ध इस अपराध में शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं। इस बीच एक पत्नी, लिविन साथी, जीवन साथी या प्रेमिका अपने पति या साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं यदि उसे लगता है कि उसके साथ उसकी इच्छा और सहमति के बिना यौन संबंध बनाया गया है। वैवाहिक बलात्कार का दोषी पाए जाने पर अधिकतम 40 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
0: मॉरिशस में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर बनाने की दिशा की भर्ती को बेहतर बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने मेक्सा और आगिमा के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर

0: किए। इनका उद्देश्य है विदेशी कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना, भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना और देश में कामगारों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना।
1: जून 2026 में मॉरिशस के सदस्य बनने के बाद से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने देश में प्रवासन शासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें प्रवासन नीतियों के निर्माण में सहयोग, डायस्पोरा की भागीदारी को बढ़ावा देना और अन्य कई पहलें शामिल हैं। मॉरिशस के साथ सहयोग किए 20 वर्ष IOM की 75वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाते हैं। मॉरिशस और सेशेल्स के लिए IOM की प्रमुख आलिया हिरजी कहती हैं, हम प्रवृत्तियों को समझ सके हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, विदेश में डायस्पोरा की क्या स्थिति है और देश के विकास में किस तरह योगदान दे सकता है। हम प्रणाली मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो वीजा या परमिट से संबंधित हो। हम सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर। इस अवसर पर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक भी मॉरिशस पहुंचे हैं। फ्रांस सेलेस्टिन कहते हैं, मॉरिशस को प्रवासियों की जरूरत है, लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, बजाय कि लोग कभी भी और किसी भी तरीके से यहां आए। इस प्रक्रिया से सरकार फैसला ले सकती है कि कब कितने लोग आ सकते हैं और वो भी स्थानीय लोगों की रक्षा करते हुए। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रवासन के क्षेत्र में मॉरिशस के सामने कई चुनौतियां होंगी। मॉरिशस उन देशों में शामिल हैं जिन्हें विदेशी कामगारों की आवश्यकता है। हम कानूनी रूप से आने वाले उन प्रवासियों की ओर से समस्याओं का सामना करते हैं जो अपने ठहराव को बढ़ा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दफ्तर प्रधानमंत्री दफ्तर के साथ काम कर रहा है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके।
2: Pour venir de l'avant avec un plan pour capable adresser le problème de banque immigration qui nous gagnait.
3: Mauritius was at the time in 2012 one of the pilot countries to really make these linkages.
1: संगठन का ये भी मानना है कि प्रवासन के प्रवाह का बेहतर प्रबंधन टिकाऊ विकास में योगदान दे सकता है, साथ ही मानव गरिमा को पूरा सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी आज स्वदेश लौट आए। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में मॉरिशस के लिए पहला पदक जीतने वाली नोएमी अल्फोंस और बॉक्सिंग में कांस्य पदक विजेता मर्विन क्लेयर का परिवार, खेल प्रेमियों और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। उनके इस शानदार प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है। उर्दू स्पीकिंग यूनियन ने साल भर आयोजित की गई अलग अलग प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में बेहतरीन भूमिका देने वाले छात्रों को सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह वाकवा के सियाश कुंस्तोते थिएटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर उनकी मेहनत की सराहना की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून का कहर अभी भी जारी है। आसाम में बाढ़ और बारिश से हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है, जबकि लगभग 2,00,000 लोग अब भी राहत शिविरों और अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हैं। इस बीच भारत मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरला, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी तेज बारिश, जल भराव और बाढ़ का बना हुआ है। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। इस पर तथा दुनिया भर की अन्य खबरों के बारे में ये रिपोर्ट पेश है।
4: एथेंस के पश्चिम में एक हवाई अभियान के दौरान दो दमकल हेलीकॉप्टरों की आपस में टक्कर हो जाने से दो चालकों की मौत हो गई। इस दुर्घटना ने आपातकालीन कर्मियों के सामने आने वाली बढ़ती जोखिमों को उजागर कर दिया है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में आग फैल रही है। अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। रविवार को रूस में कम से कम 9 और यूक्रेन में 5 लोग मारे गए, क्योंकि कीव और मॉस्को ने एक दूसरे पर लंबी दूरी के हमले तेज कर दिए थे। फरवरी में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए जाने के बाद से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर अमेरिका के नेतृत्व वाली वार्ता प्रभावी रूप से ठप पड़ी हुई है। अधिकारियों के अनुसार कम से कम 250 लोगों को ले जा रही एक इंडोनेशियाई नौका में समुद्र में आग लगने के बाद 5 लोग मृत पाए गए हैं और 41 लोग लापता हैं। ये स्पष्ट नहीं था कि नौका में आग कैसे लगी। रविवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की स्वात घाटी में एक उग्रवादी विरोधी रैली को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती बम धमाके में नागरिकों और पुलिस अधिकारियों सहित कम से कम 14 लोग मारे गए और 2 दर्जन से अधिक अन्य घायल हो गए। हाल के दिनों में इसराइल की चपेट में लेने वाली लू के रविवार अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद थी, जिससे असाधारण रूप से उच्च तापमान और अत्यधिक गर्मी की स्थिति पैदा हो गई। बुधवार तक उल्लेखनीय रूप से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है।
0: बढ़ते हम मौसम के हाल की ओर गीता सौरान के साथ।
1: मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं। पूर्व से आने वाली अस्थिरता से जुड़े बादलों का असर कल से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज रात और कल सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिन के दौरान बादल घिराएंगे। पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 24 और साहिली इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:37 पर सूरज निकलेगा।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरी समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी लीडोविक है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम शुक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शुभ समाचार सुनिए. कनाल बातूस सैंक्वा में, कनाल बातूस सैंक्वा में 77 साल की 77 years old की श्री सत्यदेव बोयरू जिन्हें देव के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल 12:30 बजे उनके घर सैंक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बोयले वाली दीपद की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM. रेलवे रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे में, रेलवे रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे में 36 साल की 36 years old की श्रीमती प्रतिमा रामखिलावन, श्रीमती प्रतिमा रामखिलावन पैदाश्याम राजकुमार और जिन्हें प्रीति के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल 12 बजे उनकी माँ वानिता गोखुल के घर लेस्पेरेंस त्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 12:00 PM. पुचपाके रोड मोंटाइन ब्लॉश में 70 साल के 70 years old के श्रीदयानंद कतोना जिन्हें अनिल के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे आशीव कतोना के घर मोंटाइन ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM. रू मोरिस मेबर्ग में 58 साल के 58 years old के श्री देवेन पायन जिन्हें जैसेन के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती गंधरावती पायन के घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग के शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो 1 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.

0: सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती की बिजली की कटौती आइए फिर से सुनते हैं। सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल बुधवार 5 अगस्त 2024 12 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक गिविया डिगाले और आसपास के इलाकों में मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
0: 71वें श्रवानी उपकर्मा महोत्सव के समदर्थ में पॉम्पलमुस आर्य जिला परिषद आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में ब्रामदत्त नंदलाल भवन महारिषि में दयानंद स्क्वायर खियोले में बुधवार 5 अगस्त से रविवार 9 अगस्त तक 5 दिवसीय यजुर्वेदिया और वृष्टि यज्ञ का आयोजन कर रहा है। गांव बे सीनियर सिटीजन द्वारा बुधवार के 5 अगस्त को श्रावण मास के समदर्थ में गांव बे के सोशल वेलफेयर सेंटर में दिन के 12:30 बजे से 2:30 बजे तक एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है।

生活难免有压力和琐碎，别忘了给自己留一份笑意。晚风掠过街巷，来听一首温柔的民谣。

抬头望向窗外，落日已经沉下，属于城市的黄昏已经悄然到来，请欣赏周传雄带来的黄昏。

0: 温送给大家，谢谢。
1: 哇，好开心呀、啊！刚好唱这首歌的时候正值黄昏。谢谢，谢谢。

0: मीठी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

सभी श्रोताओं का सप्रेम नमन है। आप सभी का भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम में स्वागत है, जो इस क्षण रेडियो मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। भक्तजन, जैसे कि आपको ज्ञात है कि श्रावण का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और इस महीने के अंतर्गत अनेक त्योहार, पर्व, व्रत आदि होते हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रावण महीने की विशेषताओं, उसके महत्व तथा कथाओं पर चर्चा करेंगे। आइए कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं एक भजन के साथ।

भक्तजन, श्रावण हिंदू पंचांग का पांचवा महीना है, जिसका शाब्दिक अर्थ श्रवण करना अर्थात सुनना, संपन्नता व साधना का प्रथम चरण है। यह मास पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र से युक्त होता है, इसलिए इसका नाम श्रावण पड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सावन का अर्थ साधना का पहला सोपान है। माना जाता है कि यह महीना आत्मा के जागरण और शुद्धि का समय है।

प्रियजन, श्रावण श्रवण शब्द से बना है जिसका अर्थ है सुनना। तात्पर्य यह है कि गुरु या शास्त्रों से ज्ञान सुनना और उसे आत्मसात करना। यही कारण है कि वैदिक धर्म के लोग इस पूरे श्रावण के महीने के अंतर्गत यज्ञ हवन करते हैं तथा वैदिक मंत्रों ऋचाओं आदि का उच्चारण करते हैं। तो ये था श्रावण मास का शाब्दिक अर्थ।

भक्तों, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और पूजा के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दौरान सोमवार के व्रत रखने व कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा है।

श्रोताओं, वेदों में मानव तथा प्रकृति का बड़ा ही गहरा संबंध बताया गया है। भारत में यह महीना वर्षा ऋतु के चरम पर होने के कारण मॉनसून या बरसात के मौसम का पर्याय बन जाता है और वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली व आनंद का वातावरण छाया रहता है, मानो प्रकृति में

एक नई जान आई है। तो श्रोताओं, अगले मंगलवार को भी हम श्रावण महीने पर कुछ विशेष बातें करेंगे। अभी कार्यक्रम को संपन्न करने का समय आ चुका है। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की महफिल में चंद लम्हात गुजारने के बाद दिल को सुकून मिलता है? दरअसल ये उन पाकीज़ा सोहबतों की बरकत होती है जहां अल्लाह ताला की याद, हुस्न अखलाक और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू बसी होती है। बुज़ुर्गान दीन की सोहबत और उनके नक्शे कदम पर चलना दिलों की इस्लाह और किरदार की तामीर का बेहतरीन ज़रिया है। जिस तरह खुशबू फरोश के पास बैठने वाला खुद भी महक उठता है, उसी तरह नेक लोगों की सोहबत इंसान के बातिन को नूरे ईमान से मुनव्वर कर देती है।

0: all night, right here on your one and only station.
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमच धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
3: सब संगतियों के और जी प्रताप सिंह के उसे प्यार भरा नमस्ते या तो मन पसंद रेडियो चैनल्स रेडियो मोशस और रेडियो मनोरंजन रेडियो मोशस 719 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो मनोरंजन 94.95.6 98.2 एफएम पर एफएम और आएम दोनों पर चला था कार्यक्रम आज है मंगल की रात गमत की रात मंगल 4 अगस्त साल 2026 ऊद के महीने में चले रही है देखते देखते अभी बनाने चलाई अभी बोनमेल चलाई रात के 9:07 और अभी से लेकर रात के 11 बजे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम थोड़ा मन करता कौन अभी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमैया नंबर वा दबैया का जगह दे वो जगह वित का जगह दे वो जगह वित बेशक और बेशक मंगल के रात गमत के रात और बेशक अभी ढेर को इनके साथ देवता भी साथ देते रहे आज उतना ठंडा नहीं करता है बाप रे बाप पानी काल से पानी जितना बरसल बा काल तक खूब पानी बरस आज दिन भर पानी पानी पानी पानी इतना पानी अच्छा बा पानी बरसा था गजे बहुत रोशन भर जाए क्या कि मौके मौको वाको आ गजे बहुत सूखे के घर पीबा और सिद्धू भैया बोला था पानी गैस पिए नहीं करेंगे कहे कि अभी रिस्ट्रिक्शन हुई है पानी की जो है तो परी साखिश करेंगे कहे कि पानी उतना नहीं बात जलाशय में जलाशय सूख ले जाता है तो अच्छा बात काल बरसर आज भी पानी बरसर आशा करते रोज के पानी बरसी ताकि इनके सब जलाशय भर जाए और आशा करते तू जहाँ भी हुआ एकदम मस्त हुआ और हमने किस साथ देवत हुआ पहल का गाना जलसा बेशक जब हमारे तो जलसा वाला गीता गज्जाधर के आवाज़ में और ये प्रोग्राम में केवल जलसा नहीं हुए ढेर कुछ अन्य से तो लोग खातिर सरप्राइज सरप्राइज अब ये सब नहीं बोला बोला तो जान जी बना अच्छा अभी जलसा अगर सर गीता गज्जाधर के संग जितना कोई सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन है गीत तो लोग के नाम जलसा

संगते लोग आजकल श्रावण मास चलता। श्रावण मास के सावन भी बोलल जाला। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र महीना है जुलाई और अगस्त के महीना में हमने श्रावण मास दुनिया भर में मनायला सा। श्रावण मास में शिव जी की पूजा होला, शिवलिंग पर शिवलिंग के अभिषेक करीला सा और भक्त लोग व्रत रखेलन सा, मंत्र जाप होला, फिर कोई छोटा छोटा कांवर बना के गंगा तालाब भी जालन जा। और श्रावण मास में आर्य समाज के लोग भी वेद के पठन पाठन करेला, घर में यज्ञ हवन होला, वेद मंत्र के जाप, वेद मंत्र के उच्चारण होला। तो आजकल ढेर कोई कागम बा व्रत धारण कर ले श्रावण मास के, तब बोलब जा जय हो प्रभु, जय हो। जी हाँ, ऐसे ही पूजा पाठ करते रहिए। लड़का लोग के भी सिखाइए कि श्रावण मास में चाहे व्रत धारण करे के, पूजा पाठ करे के, यज्ञ हवन करे के। और जो वेद है, हमने की चार गो वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो जो वेद है ये चेहरा कर उच्चारण करे के, एक में जो मंत्र है, मंत्र व पढ़ब, पूजा करब, तो घर में सुख शांति आवेला। तो श्रावण मास सब के बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे में नहीं से गो भजन ओम जपो ओम, और भगवान के दूसरा नाम ओम ही है। पूजा पाठ चहला करे के रोज के जिंदगी में चहला पूजा पाठ। और आजकल श्रावण मास चलता है, तो श्रावण मास के संदर्भ में है गीत। तो लोग सब भक्त लोग के नाम प्रभु की कृपा, प्रभु की अनुकंपा सब कोई पर बनल रही।

आपकी 9:24 होता आज जितना कोई के जन्मदिन बा जितना कोई की रानी जैसे बा हैप्पी बर्थडे जन्मदिन मुबारक ढेर माना प्यार ढेर माना आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि है जो नानी वैसा है तो लोग के जीवन में ढेर माना प्यार खुशी रहे जहाँ भी रह हमेशा मस्त रह ऐसे ही उनके साथ देती रह और तो लोग के लंबी आयु हो 100 साल जिया हमने के आशीर्वाद तो लोग के साथ बा और नानी वैसे जो है स्पेशल रह रखा है कि बरिश में एक ही दिन आवेला तो जितना कोई मॉरिशस में दुनिया भर में अपन नानी वैसे मनावता जन्मदिन मुबारक हे माना प्यार आशीर्वाद है भाई जन्मदिन के गीत तेरों के नाम हैप्पी बर्थडे बसंत सुपुर की जुबानी और थोड़ा याद दिलावते हैं कि प्रोग्राम चल रहा था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर साथ में रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर फिर कोई हमने की देखा था टिकटॉक पेज पर सुना था भी रेडियो पर सुनते रह देखते रह MBC रेडियो मॉरिशस MBC रेडियो मनोरंजन हैप्पी बर्थडे।

अब हम बात करें अब सब पुरानिया पकवान के बारे में, जैसे इनके दादी नानी लोग आगे पकावत रहन सच से, तो जाना कि आगे के ज़माना में हमने के दादी नानी लोग चूल्हा में पकावत रहे, हमने के दादा लोग देन सर नदी नदी

0: से लकड़ी कोई काट कूट के अंजन सब लकड़ी सुखाई घमा में फिर मचान में चढ़ी तो आगे गैस को वहीं सब नहीं रहल तो चूल्हा में हमने दादी नानी पकाल तो पुरानिया पकवान के बारे में बात करते से तो ढेर मना पकवान बा जैसे दाल बैगन फिर दाल में सुसु रुगाई दाल में कटहर पुलडामुन के चटनी पुलडामुन घिये करके चटनी बनाओ तरीसा फिर दाल पूरी फराता गाटोपीमा ये सब और आगे दाल घोटनी से दाल काज होता है टेम्पो उम्पो नहीं रहा देखी में जब दाल चढ़े पर दाल डबके लगी तब दाल घोटनी से दरवा के परी काज करेगी हाँ कि नहीं और आगे मार छौंका रहा है और छौंकल भात खा तरीसा जब तरकारी नहीं रही तब भात ले बा एक दो पुल लामून पीमा मा ले बा प्याज या दाल ले बा तजोरी से भात छौंक दे बा सब कोई भरपेट खा ले तो पुरानिया पकवान तो आजकल जो है लुप्त हो ही जाता पर जहाँ जहाँ दादी नानी लोग बा अभी ले जो है पुरानिया पकवान अभी हम देखने से ढेर माना घर में सिल लोढ़ा बा हमरे जाके तबाद सिल लोढ़ा हम तपन चटनी कबो मिक्सर में तैयार कर रहा पर हम खुद से अपन हाथ से चटनी पीसे के सिल में और चूल्हा तो चूल्हा बा पर लकड़ी नहीं बा एक हाथी फू गैस फू इलेक्ट्रिक में पकाए रहा सा अभी पर अब सब प्रकार के सुविधा व आगे लिखा नहीं हाँ कि नहीं तगला गाना है हमर फुलिया मोरे फुलिया गिरे रहा गीत चलावती से बिना खातिर जीवन महादेव अमरी मीला जमन लाफिया रघुनंदन फजिया ईसा है गीत चली एंजल मेर कॉन्स्टेंस देवी महादेव केजू अनासी शालिनी और है गीत चलावती से संजय यादव और अमिता राधा शिवचंद सुनीता देवी जम इंदिरा एक गीत और खातिर अनिता लाल जी कविता हमने के साथ देवत्वन मिशा नाली वनेसन डेबोरा लीना जी खुर्शीद अन जोस पोलिडो बाबिता सोब्रन आतिश निजम बहादुर एक गीत चली इंदिरा की ओर से राजेश उगर और सब उगर परिवार के नाम और दौलत तरन एक गीत तोरो खातिर बिंदास गीतरो नाम और साथ में अनुशील के साथ उतरन शोभा कृष्णा जीता दौलतरन जैसे बोली फिर माया रामदोस तैयब भोला श्वेतु परी एंजल है गीत चली सबीना और है गीत चावते सुनील खातिर तापन चौधरी है गीतरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ जमन के देखा था वन टिकटॉक पेज और विमला देवी जी नमस्ते गीत और नाम मित्रा जी भी हमने देखा था वन और अभी लाइन पे को संग से मिला जा का जगह देवी जगह विद संग पर हेलो
1: हेलो नमस्ते बेटा
0: नमस्ते जी के हवा जा
1: तो हर चाची लालिका
0: चाची हमने के दुलारी चाची कैसे चाची
1: अच्छा मंगल
0: पानी बरसल बा तो हर बगल
1: थोड़ा थोड़ा
0: बाप हम थोड़ा पानी बरस बा काल से पानी बरसते बा
1: अच्छा बात है रिजर्वुआर सब सूखा गल बा
0: हाँ हाँ और कैसे समाचार सब ठीक बा
1: सब ठीक बा सब कुशल मंगल बा
0: आली बोला तो कौन की सुन बा चाची
1: डालिया हमर विनोद शिवदत्त के भोजपुरी भाषा
0: तने विनोद शिवदत्त के भोजपुरी भाषा किकर खातिर
1: डालिया बहिन सुदेवी ज्ञानी छोटी दीदी दादी प्रभावती आत्माराम भैया शुक्लाल मौसी और माला राम जियावन
0: शुक्लाल मौसी तो नहीं थे फिर करे अब नहीं तो नहीं थोड़ा से बच्चाला
1: बच्चाला हाँ
0: ओके
1: तोहरो खातिन बेटा
0: ओके बहुत धन्यवाद चाची शुभ रात्रि
1: शुभ रात
0: आले तो चलो अभी सुनब जाएगी तो एक कर बाद भोजपुरी भाषा ललिता जलसा ग्रुप मोरे फुलिया गिरेरा और जितना कोई भी हमने देखा था टिकटॉक पेज पर एक गीतोरो नाम सुभाष लामा नौशीन कुदाबू रागिनी बी है गीतोर खातिर और जितना कोई अस्पताल में काम करता वो लोग खातिर भी चल एक साथ सुने गीतवा गीत के बोल है मोरे फुलिया गिरेरा

0: धीरे धीरे आना शोर न मचाना और हमने ऐसे दोनों के साथ देखा थे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अगला संगत क्या लाइन पे हेलो हेलो
1: आदाब प्रसाद
0: आदाब आफिस जी कैसे समाचार
1: ए हम तो भी बहुत मजीने करा सरनी
0: क्यों
1: ए सुना
0: इस समय रेडियो पर चलता ही प्रोग्राम

0: আমার টিকটক পেজ পর বল আগলা গীতকার খাতির আফেজ
1: এ আমার প্রদাব আমার নাম জোড় দিয়া কই সঙ্গে
0: হ্যাঁ আগলা গীত হ্যাঁ বাপ দাদা লোক কে বলি ঠিক বা আলে বহুত ধন্যবাদ আফেজ স্যাম্পিয়ার সে যেকো প্ল্যাটফর্ম গীত মাঙ্গে কে ইধার উধার কে বাত নেই বচিয়া সোচিয়া কা বলত হওয়া ঠিক বা তাফেজ হন স্যাম্পিয়ার সে মাতাজি আফেজ খাতির গীত চলি বাপ দাদা লোক কে বলি মাতাজি গীত খাসম খাস তোর খাতির রাজন লক্ষ্মণ জি কে সাথে হতো না লাফ লোহা সে হাই রাজন জি শুভ নমস্কার কেসে সমাচার
2: बिल्कुल ठीक है भाई
0: ठीक ठाक श्रावण मास अच्छी तरह से चला था पूजा पाठ या छवन हुआ था
2: ठीक बिल्कुल ठीक
0: हाँ हाँ हाँ बहुत अच्छी बात और बोला
2: अगला मैं ये गाना मांगता हूँ
0: हाँ बोला बोला
2: सुनीता ननकू की आवाज में
0: कौन
2: गीत अंबे मैया
0: अंबे मैया सुनीता ननकू की आवाज में हा गीत केकर खातिर भैया
2: रजन लक्ष्मण और परिवार
0: ओके अंबे मैया सुनीता ननकू गई लेवन ओके खोजब सभी लालिस पे अंबे मैया हाँ बागी तो है चला दियो अबसे थोड़ी समय में ठीक बा
2: शुभ रात्रि भाई
0: बहुत धन्यवाद हमने की टेलीफोन कर ला का जगह देवी जगह विच का जगह देवी जगह विच सैंक पर और अंबे मैया हाँ पर अभी दो गीत क्लासिक हो बाप दादा लोग के बोली और मच्छी मरवा कह के संगत्यार मन हाँ चलाओ अबसे ठीक बा विमला देवी अगला गीत और खातिर एंजल वाज है गीत और नाम लकी वुमन रागिनी है गीत और खातिर साथ में है गे चलावते सर जैदन खातिर सुदेवी वाकवा से वन नमस्ते जी अगला गीत हो रो नाम सुनील राम नोचन गीत सुनील वाले दिप्रत के हवन जा गीत और खातिर और सब परिवार के नाम बहुत बहुत धन्यवाद सुनील राम नोचन जी हमने के टिकटॉक पेज पर देखी खातिर और रेडियो पर सुने खातिर कौतिक सुबिता है गीत और नाम दिनेश गोपी नमस्ते है गीत और नाम नदानी जगरू है गीत और खातिर आपने गुडलैंड्स मामजल जान और विश है गीत और नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और है गीत आपने चावते चलावती से संगत आलो खातिर देवी का हम गत्या वन मोहताबा से उकर पति उकर बेटा पतो बेटी दामाद और सब राम गत्या परिवार के नाम अनिता लाल जी मोदाल बे से वन अनिता फ्रीकॉन फ्लाक से इंदिरा लौटन और इंदिरा मेबर्ग से सेंट मैसेस कॉलेज के सब अध्यापक नॉन टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट्स और वहाँ के रेक्टर के नाम प्रेमिला ला फ्रांसे प्रेमिला हवन ला फ्रांसे प्रेमिला कटबोन से आशा जानू को तेज से हवन जा वर्मा कुमारी शुभम दिद्यार्थी दिजाजी और सब जानू परिवार के नाम हई गीत चली हई गीत चलावती से तियाराज रानी अंतिश अंकुश नेहा और सब दुलहर परिवार के नाम आप हवन लाल माथी से नबीन रूपा बंगराय है गीत और नाम हाय संध्या संध्या भी उनके साथ देवत हैं बहुत बहुत धन्यवाद चलो सुन अब जा बाप दादा लोग के बोली चाची ललिता कुशल के पसंद पर है गीत बहुत बहुत प्यार के साथ है

नींबू, जी हाँ, जो कि मैं लीमो बोलिया सा वो जो है बहुत ही कर उपयोग करी रहा सामने। और नींबू जो है गो पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर एगो खट्टा फल है। एक में वाइटामिन बा, खनिज बा, एंटीऑक्सीडेंट बा और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा बा। और नींबू के सबसे प्रमुख पोषक तत्व है ओकर में वाइटामिन सी बा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बा, इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग बनावेला, त्वचा के सुंदर बनावेला और घाव भरे में सहायक है। और नींबू में साइट्रिक एसिड बा। नींबू के जो खट्टा स्वाद है वो अच्छा है हम के खून खातिर, पाचन में सहायता करेगा। पाचन मतलब हमें के डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प करेगा खाए के पचाए के। गुर्दे की पथरी बनने की संभावना कम करेगा। और एकर में नींबू में लीमो में फाइबर भी बा और छिलका और गुदा भी बा एकर में। और दोनों प्रयोग होला एकर पाचन तंत्र के सहायता करेगा। लंबे समय तक पेट भरा जब रहेला तो ये थोड़ा एडी करेला टॉयलेट जाए के। अगर मैं पोटाशियम बा हृदय जिसे बोली पोटाशियम जो है बहुत जो हेल्दी बनावे उनके शरीर के रक्तचाप के संतुलित रखेला, ब्लड प्रेशर के जो है। और अगर मैं कैल्शियम भी बा, हड्डी और दांत खातिर बहुत अच्छा है नींबू। और नींबू के हर प्रकार से कर प्रयोग होला। नींबू के जी बनेला, नींबू पानी, नींबू और शरीर और बेशक नींबू के कर जूस बनेला, नींबू तरकारी में भी सेवी करीला सा। और ढेर नींबू खाइबा तो वह नहीं अच्छा, अच्छा जीज खाए के रोज के अगर एगो नींबू खाइबा तो अच्छा है स्वास्थ्य खातिर। तो और ब्लड प्रेशर तो तोशों के वो अगले मोटे करेला। एगो खट्टा फल है फिर भी चेहरा खाए के ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ स्वादिष्ट रहेगा वही अच्छा स्वास्थ्य खातिर। कभी कभी जो चीज़ तीता आमेर रहेगा वो भी अच्छा स्वास्थ्य खातिर। जैसे कि हमने के जो नींबू है हमने मॉरिशस में दो प्रकार के, एगो ची लीमो एगो गो लीमो, एगो लीमो वे है एगो लीमो जोन है, तो दोनों अच्छा है। नींबू भजिस के जब उठब नींद में से छोटा सा वे में गर्म पानी थोड़ा सा दलिया और में दो तीन गो बूंद शहद और दो तीन गो बूंद लीमो दलिया और पिया खाली पेट वो अच्छा है वो अपने के पेट के साफ करेगा। रोज फजिस के को छोटा सा वे में गर्म पानी डालिए, थोड़ा सा जीमेल डालिए और लीमो के दो तीन को गुट डाल के मिलाजे करके खाली पेट पिया तो हर पेट साफ हो जाए और तो स्वास्थ्य अच्छा रही। ऐसे में चला सुनब जा मच्छी मर व हमर नाम हम ते मच्छी मारी ला हा हा अगीत एगो संगतिया मंगले रलन तो लोग खातिर सत्यम सोनू है गीत तोरो नाम संजय बिहारी है गीत तोहर भाई मुलुक तोहर भाई बेबी खातिर शुभ हवन बाकवा से शुभ बॉम्बे मुझसे। और है गीत साइलेंट केयर से कर घरोरी रानी बेटी परी मारीता खातिर भी। और आज शैलेश सीतालू की जन्मदिन बा तो धे माना प्यार कर पत्नी बा रेशमा बेटी अनुष्का भाई साइलेंट फिर माँ रीता और सब सीतालू परिवार की ओर से साइलेश सीतालू के हैप्पी बर्थडे। शिव अभी सी पौसाद रिवेजपुर से हवन कर पत्नी और बेटी और सब सी पौसाद परिवार के नाम। उदय धनी राम हवन रिवेजपुर से और घरोली बेटी बेटा पतो सब देव नारायण सब धनी राम परिवार के नाम। चले एक साथ सुने गीत मच्छी मर व हमर नाम हम तो मच्छी मारी रहा

0: Continuous music.
1: Music.
0: Music.
1: Music
0: radio. RM3.
2: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।

0: कमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संग एमबीसी रेडियो
1: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

ये वक्त रात की 10:08 हो 50 सेकेंड्स AM2 रेडियो मॉरिशस और RM3 रेडियो मनोरंजन 94.95.6 98.2 FM पर और रेडियो मॉरिशस 819 kHz पर, यानी कि AM और FM पर दोनों पर चलता MBC के रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर कार्यक्रम भोजपीतर का अजय प्रताप सिंह के साथ। आज है मंगल की रात, मंगल 4 उत, हाँ, और भी चलता टकाटक भोजपुरी प्रोग्राम, मन कराता कोनो भी भोजपुरी गीत सुन के नंबर वा घुमावा का जगदे वो जगह उत्साह का जगदे वो जगह उत्साह पर। और आजकल देखी रह सक कि हमने के जन जलाशय में बा पानी के जन स्थिति अचिंता जन खोली जाता कहे कि ढेर मना हमने के गजा वह सुखले जाता और में से गुहा मौ और वाकवा जन बहुत ही बड़ा जलाशय पर ई जलाशय सूखे के कगार भी बात सही सुना था वह। और पानी उतना नहीं बचता जितना छाना बरसे के, तो अगर पानी नहीं रही तो कैसे हुई बोला था। तो ये खातिर से WR सब को इसे बोला था, जनता से मांग करता कि पानी गास्पी ना करे के, पानी ज़ाया नहीं करे के, कहे कि पानी के हर एक बूंद हर एक पानी के गुट अत्यावश्यक है, कहे कि भाई पानी से हमने के कृषि होला एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होला, खाए पिए में, कपड़ा धोई के, कोनो भी काम नहीं ब लुटो धोई के, घर धोई के, तब पानी चहला, पानी नहीं रही तो कुछ नहीं बा भैया। तो ये खातिर हम लोगन से मांग करब जा कि पानी ज़ाया नहीं करे के, जैसे कि जब तू गोभी ने खोला था वह सैबी का तो पानी मुँह धोई के, तो नल खोला नहीं छोड़िया, नल खोलिया इस्तेमाल करके ओके बंद कर दिया। फिर रेन वाटर हार्वेस्ट यानी कि जिन पानी बरसे लगा धो में रमासिया उपन्या से सकबा अपन घर आंगन साफ करे, ठीक बा। और फिर पानी जिन है पानी बचा के रखे जाब दिन के सकबा देखची उकची में या देखची में या गमेल में पानी भर के रख दे, ताकि अब जैसे काम में सैला थोड़ा मन करता लेगी मुगीम धोए के, तो सकबा उ पानी के उपयोग करे। इन्हें कि नल खोल दिया वह पन्या बहते जाता ढेर को मैं देख रही सर गोभी ने खोल के लोग टेलीफोन में बात कराते उनसे, तो फलना टेलीफोन करता कि सुने कराता तैसे पानी

गा स्पीड और ढेर कोई जालन से नहाए तो गीत गावे लगेलन से खा बुलब से भैया और एक दो घंटा लेवलन से नहाए के एक घंटा तो गोदमी नहीं सकल नहाए के ई गास पियाज देलो नहीं है तो कौन चीज है भैया अपन साल डिब्बे में गईला नहा ले लगो 10-15 मिनट तक ओके अब ने कि पन्या खोल के अब गीत गावत हो शाहरुख खान ने खा तो पानी गास्पी नहीं हो बोले था तो ये खातिर सब कुछ मांग करत है जा हम यू की ओर से डिबरिया भी बोला था कि सिचुएशन खिचिक बहनी के रिजर्वों में पानी सूखल जाता है दो दिन की पन्या जो बरसल नहीं सोचा कि ढेर मोटा पानी बरसल भाई है फिर कोई बोला था अरे प्रताप जी तू ही तो बोला था पानी बरसा हाँ पानी बरसल बा हाँ पर उतना पानी नहीं बरसता जितना चहला बरसे की देखा जी लोगन से मांग कर अब सत्य लोग से कि पानी गास्पी नहीं करिए खासकर भी लड़का लोग कौन से में बातें कैसे लड़का लोग पानी से खेले रहन सा वो भी नहीं खोल दिले वन सा लॉन्च खोल दिले सा कुत्ता के नहावत वन सा कुत्ता इधर उधर भागा था पानी गास्पी होता तो पानी के हर एक बूंद वाटर इज ए प्रीशियस कमोडिटी वाटर इज लाइफ लाइफ इज वाटर तो पानी के सदुपयोग करिए भैया पानी नहीं बा चंगन मंगन पानी भरे पानी नहीं बा है तो अच्छा होता है इससे हमने खास हम खास सही सब लोगन के नाम और ये हवन जा हाँ है कि तो चली स्विट्जरलैंड के रंभा ये उससे को तीन को बेटियों कर घरोला और सब कर परिवार के नाम जानकी परिवार गुड लाइन से वन विशाल मंडल बिटली में उनकर बेटी और पत्नी के नाम अजय पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया में वन मॉरिशस में कर माँ इंदिरा चिंताराम अमृता गणेश पिताओं से वन अभी टेलीफोन कर लन अगे तौरों खातिर और हे गाना चलावती सब सब श्रोतालों के नाम जो नहीं बखत हमने किसने था बहुत प्यार के साथ और स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्त स्कूल की छुट्टी में उनसे हैप्पी स्कूल हॉलीडेज छुट्टी की भरपूर मजाला भी ले सेज उतले भी घरेला बल इज्जत से परी ले खुल जाए कि हाँ एक महीना के अभी तक एक महीना के गमट हो पर लड़का लोग कौन से मिलल बा हाँ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी करिए नहीं कि साख उक बिग दिलाओ कोना में लीव नहीं छुअत हो थोड़ा बहुत चेहला है पढ़े के रिविजे करे के कहे कि थोड़ा जमते में हिलबत सब भुला जाए भाई खातिर कौन से मिलल बा मजाक करे के गमट करे के पर गमट के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करिए जया लिब लीव उव ली के तसन पढ़िया जाए ताकि कोनो चीज़ नहीं भुलाई बा जा अभी सिर्फ जा पानी नहीं बा चल एक साथ सुनेंगी तो

0: दुनिया में दो प्रकार के लोग भाई, गो शाकाहारी और गो मांसाहारी। शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन और मांसाहारी यानी कि जो गोश्त मछली खालन सर। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला था, जागरूक हुआ था, बोला था धे मना रोग जो हमने के खान पान पर आवेला। और दुनिया भर के डॉक्टर लोग भी बोलेला जितना कोई स्वास्थ्य से जुड़ल बा कि अगर शाकाहारी रब वेजिटेरियन रब तो ज़्यादा फायदा बा। ये नहीं बोला था कि आदमी की गोश्त मछली नहीं खाई थी, हाँ जो कोई खाला रुचि अच्छा बा, पर धे मना रोग से सकब बच्चे जो आदमी लोग वेजिटेरियन वन सा वो लोग सकें सर धे मना रोग से बच्चे, जैसे कि अभी कोलेस्ट्रॉल बा, डायबिटीज़ बा, धे मना ऐसा बीमारी बा, अगर लेकिन फल खेब तो सबसे दूर रह। और शाकाहारी बनने के धे मना फ़ायदा बा, ये तोहर हॉट खातिर तोहर हृदय खातिर अच्छा है, तोहर दिल की धड़कन अच्छा रहेला, तोहर खून निमन से बहेला, तोहर दिल में पाचन तंत्र बेहतर रहेला, डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प करेला और वजन हमने के नियंत्रित रखेला, यानी कि हमने के मोटापा से दूर रखेला वेजिटेरियन खाना। रोग प्रति रोधक क्षमता बा, हमने के इम्यून सिस्टम के खूब जोरदार बनावेला और मधुमेह से हमने के बचावेला जाबित से। फिर थेवना जैसे बोलिए आप मोहताज बा विजिटॉरियबला सब दाल दाल राजमा चना सोया पनीर ये सब सकब खाई, एक रो में प्रोटीन बा, ढेर को बोला कि गोश्त मच्छी में खाई प्रोटीन बा नहीं, हाँ यू सब में सोया बा, राजमा बा, दाल बा, चना बा। और बेशक डॉक्टर लोग बोल ले जाता, हमेशा से बोल ले आला वन स अभी ये बोल हमेशा बोलते रहें सर कि जितना तू लेगिम खाइबा, जितना सब्जी खाइबा उतना तो लसौते अच्छा रही, और जैसा अन्न वैसा मन, हो कि नहीं। और बेशक जब शाकाहारी भोजन करते हुआ, पूजा पाठ में हुआ, योगा करते हुआ, मेडिटेशन करते हुआ, एक्सरसाइज करते हुआ, तो तुहर जो न पुआ लेको वजन वो भी कंट्रोल में आवेला। अब ढेर खा के चीज़ खाइब तो हर प्रकार की बीमारी होला, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज सब। तो अगर खान पान पर सब कुछ ध्यान दे तो सबके लासौती अच्छा रही, जब तुम्हारा लासौती अच्छा रही तो सकबर जीवन में ढेर कुछ करी, पर लासौती नहीं अच्छा रही तो कौन सब करे। अभी कुछ संगतिया वाला लाइन पे कौन से मिल जा कभी साधन करा बा। शोभा जी हेलो, शोभा
1: हेलो,

0: नमस्ते, कैसे समाचार?
1: ठीक ठीक
0: दा। आज के दिन कैसे बीतल शोभा? बोले तो हाँ
1: अच्छा से
0: तोर बगल पानी तोर हाँ तोर बगल पानी रहल
1: उतना पर घर पर खाना बनाया
0: क्या बनाया आज का
1: काम किया
0: कुछ बनाया शाम की बोले तो कौन तरकारी बनाई आज
1: कहाँ से जाएंगे
0: हाँ ने कौन सी बनाई ला भोजन बोले तो
1: एथी के है लीला कारीमन के पंडित आप कारीमन के शादी के सालगिरह बा रामचंद्र कारीमन और राधा कृष्ण सुभगर अमृता सुभग चारों के शादी के सालगिरह बा
0: शादी के साल
1: नाती के
0: बोला बोला
1: रानी वैसे रहल जिमास के
0: हाँ
1: के लिए रानी वैसे के भी डाल दी है
0: आले भी खोजब सा पर अभी उगी चली स्वास्थ्य जे कर अच्छा बात ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद सब ठीक तो हर बगल सुनाओ लड़का लोग सब ठीक ठाक हम तो से पूछ ए ओके हाँ और माता जी दुनिया भर के डॉक्टर बड़े लिगिन जितना खेबा अच्छा बात तू का सोचे ला बोला था डॉक्टर दुनिया भर के डॉक्टर बोले जितना लेगीम खैबा फल खैबा अच्छा बड़ा सोते की
1: तो
0: अभी जैसे श्रावण मास चल रहा है ढेर कोई कागम हवन सा तो अच्छा बा लासोते खातिर ना सब्जी फल खैबा
1: हमने खाई लेगीम ही खाई लासा
0: हाँ लेगीम ही हाँ छोटा से
1: छोटा से सब हम सब परिवार
0: कितना बड़ी सुगर लेगी कितना बड़ी सुगर लेगी खाई ला माता जी कितना बड़ी सुगर
1: सब सब लोग खाली लेगी खाई ला
0: दाल रोटी सब्जी ना
1: सब सब करी के सब्जी
0: हाँ कदुआ सब खा ला पीपोंग गाय सब लेगी
1: बना दे भाई गोगा से बना दे वो
0: हाँ हम थोड़े से को बात बोलो कहीं कौन दिन हमने पकड़ी से कटहर और दाल दाल में कटहर ऐसे जोड़ी रहल दाल गांव में कटहर डाल दे बगो पूरी छान दे ब हाँ और तू बनावे ला व्यंजन वेजिटेरियन खा के बनावे ला
1: पपाई के अचार पोंग काहो डाल के बनाए ला
0: हाँ
1: आम के
0: आयु शुभ के अचरवा अकेले अकेले खा ले प्रताप के नहीं याद कर ला थ्रासन थ्रासन अचार रखे हुआ खातिर आवप तोहर लगे बोलते थ्रासन अचार बना के रखे आवप ले जाए तोहर लगे शोभा जी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ बहुत हमने जो कौन सी बहन से बॉन्टी जैसे जब बॉन्ट बहुत प्यार बढ़ेला हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद हमने के ओके ओके आले तोहर गीत डाल दे फिकर ना करिया तो जैसे भी माता जी बोलन कि वेजिटेरियन जो खाए के है शाकाहारी बहुत अच्छा है ढेर कोई खुशियाँ खाए के पर चाहे बनाए के भी जाने के खाए वाला ढेर बा पर बनाए वाला कमती बा और पकाए के थोड़ा लेता लगे रहा अगर नहीं जानते हो पकाए वेजिटेरियन तो देखिए यूट्यूब में सब भैया अभी सुनी करेला के भिंदाई बने रहा मोगोज भिंदाई मोगोज तो अच्छा है खून खातिर ढेर कोई बनावे ला कहूँ कहूँ बेचारा पर जहला एगो फासो बनाए के जमी उ तीखा नहीं लगी क्या कि जो करेला है मोगोस है ओकर स्वाद थोड़ा आमे उ रहेला पर ढेर कोई बनावे ऐसा जोरी से उ खेबा तो नहीं बोलबा कि तू मोगोस खाते हो अभी कहती सुनब जा स्वास्थ्य जे कर अच्छा बा बहुत ही प्यारा सन गाना चलावत जा शास्त्री बनवाली भाई खातिर शास्त्री बनवाली फिर गीत चली इब्राहिम भाई पोटवी से और राफिक मोहित तायाक से अवन उकर घरोली सब परिवार के नाम और महजबी इंटेनवेद से रोजिदा हाईलैंड से हवन साथ में गीत चली राफिक मोहित तायाक से जिसे हम बोले और है गीत चलाते से क्यूपिप के अमृता के नाम फातमा हवन न्यू ग्रोव से बहुत बहुत प्यार के साथ अनुकी सुनते हुन हाय डॉक्टर रंजू बहुत प्यार से अपन फियांसे के याद करते हुन और है गीत चलावते इस प्रतिमा दीना और सुजाता के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ सरजू भाई है गीत और कहती धर्म गंगू है गीत और कहती विरापेन आप पाया रोस रोसाय रुसोल मिसेज अनुआ फिर मिसेज गनौरी और तो लोग सब संगत

त्यालो खातिर और जितना कोई मॉरिशस में और विदेश में होता जितना कोई विदेश से मॉरिशस रहा अपन वाकंस पास कर यहाँ पर एक दिन तेलो के नाम स्वास्थ्य जिक्र अच्छा बा और जितना कोई रोज के लिए एक्सरसाइज करेरा मेडिटेशन करेरा योगा करेरा तहत गीत तेलो के नाम भी तो हला सौते अच्छा बा तो सब कुछ अच्छा बा संग जला सौते हुए इच्छा रही तो कौन से अच्छी के

मौसम के साथ साथ जैसे मौसम बदला समय भी बदला, और मौसम तो बदलते रहे और समय के साथ इंसान भी बदलते रहे रहा। और आज के इंसान छोटा से बड़ा ले जितना कोई के दिखवा सब कोई सोशल मीडिया पर सब कोई बन पोता पर रहे रहा दिन रात। अब पोता में कौन सी दिखे रहा तो ढेर मना चीज टिकटॉक बा, इंस्टाग्राम बा, गूगल बा, यूट्यूब बा, फेसबुक बा, और सोशल मीडिया के अलावा होता है कौन सी है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो रहा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मिल चला कि कहाँ पर ही भूकंप आल बा, कि कहाँ पर ही सिक्लोन आवता, या कौन पे ही में कौन मैच फुटबॉल दिखल जाता, एंड सब चीज़ हमने कि सोशल मीडिया पर मिल जाला विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और अच्छा बात है पर ढेर वो नहीं चला पोताब देखे ढेर पोताबों में रखब तो आँख खराब हो जा रहा हाँ कि नहीं एगो लिमिट रहेगा गुमोदे आशाओं से सकब देखे नहीं बोलते नहीं हमू पोताब से भी करी रहा अपन टीचिंग में अपने एमबीसी के प्रोग्राम तैयार करी में रिसर्च वर्क में पोताब का इस्तेमाल करी रहा सब पर एगो लिमिट से। अब ढेर कोई रात के सुतल बा पोता बा टिक टिक करेला मिसाज होते होता मिसाज विदा होता तो आधा रात बिता देला मिसाज विदा करते तो कब कब सुतबा बोला था और फजर के पड़ेला बुन उठे काम करे जाए कि अब काम में जब तक काम में छुका करते हो नींद लगाता तब पाथों बोली उपे गए सोमय आ लाकाज तब का करब ये खातिर बोला सर अच्छा है सोशल मीडिया है अच्छा है देखे के फॉलो करेगे पर गो मोदे हाशों से ठीक बा। अगला गीत मजा कर ले मेरी जान फिर से न होगा जवान होय होय होय बुरा बुरा मत करो बुरा है शैतान जी हाँ मजा कर ले मेरी जान। हाँ तो मजा छहरा करे कि कहे कि जिंदगी की कोनो भरोसा नहीं भैया यहाँ पर ही आल से और दो दिन के यहाँ रहब सा दो दिन के बाद ये दुनिया छोड़ छार के परी जाए के कुछ भी साथ नहीं जाए न तो धन न दौलत न बैंक बैलेंस न डिग्री न पत्नी न बच्चा अकेला आल हुआ दुनिया में और यहाँ पर इसे परी अकेली जाएगी कठिन बना सबको बोलेगा नहीं हम अपन संगे अपन धन लेके जाब नहीं भैया जब यमदूत आई ना तो तोरा घींच के लेके जाए सब कोई मौत से डरेला पर मौत एगो वास्तविकता एगो सच्चाई है जैसे हमने की जन्म होल बा तो एक दिन मृत्यु भी आए और हमने मानी जा सक जोन जोन वक्त एगो एगो मनुष्य के जन्म होला वही वक्त ओकर मृत्यु भी लिखा चला ब्रह्मा जोन है हमने के सृष्टिकर्ता है ख्याते है तो जब हमने की बनावेला तो वही दिन तय हो जाला कि व्यक्ति के मृत्यु कब कहाँ और कैसे हुई ये तो हमने नहीं सकब से जाने केवल ब्रह्मा विष्णु में ही जानेला। तभी कहते चल गीत पर नाचब जाए झूमब जाए मजा कर ले मेरे जान फिर से ना होगा जवान गीत चलावते सब कलकतिया परिवार के नाम त्रियोली से हवन फिर सोनन चिटन किए गीत हो नाम खरीदारी जीवन लाफलोगा से लो शालिनी हीरू करपति विशाल कर दुगो बेटी कर भाई कृष्णा और सब हीरू परिवार लाफलोगा से उनके साथ देवत हवन विक्रम निफोक बेजपुर से प्रीतम राज मिला है गीत हो खातिर और केशव बिला बेजपुर से हवन हमने के साथ देवत हवन राज मन्ना हमने के साथ देवत हवन होरीलाल दिनू साथ में लोंग चिबुक राजा प्रवीण भैरव नानो स्टीव और सब हमने की संगतियाँ जो बहुत प्यार से हमने सुनते रात के गीत और नाम और अरविंद गंगा हवन न्यूग्रो से कर पत्नी और कर सब संगतियाँ लोग के नाम और है गीत हमने चलाओ सही सा डॉक्टर पूनम के नाम खासम खास मजा कर ले मेरे जन फिर से न होगा जवान हो

0: दुनिया में जरूरी नहीं है कि चेहरा ढेर मना संगत्या रहे के वो चाहे एगो संगत्या रही पर समय पर तुहार साथ दे तुहार दुख सुख बांटी वही काफी बा। ऐसे नहीं को संगत्या जो हमेशा तुहार साथ दे जब तुम वो भी काम करते हो तो तुहरा सही सही राह दिखाए तुहरा अच्छा कौनसे दे ओके संगत्या बुला ला। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। अंग्रेजी लेखक अच्छा बोलक बा कि दुख के समय में जो काम आवेला वही सच्चा संगत्या कहावेला। तैसर में सुनते दोस्ती पर गीत नीरज गुप्त मधु के गावल गीत है और सब बेस्ट फ्रेंड्स के नाम जितना संगत्या लोग के बेस्ट फ्रेंड बाय गीत तो लोग खतेर बहुत बहुत प्यार के साथ रेशमा हवन बाकवा सिंह के साथ देवोथन रेशमा गीत तो और बेस्ट फ्रेंड उर्मिला के नाम और यहाँ पर एक संगत्या बाकवा सिंह लग जा। हेलो नमस्ते नमस्ते जी। हेलो के हवा जा
1: से।
0: हाँ प्रेमिला जी सुस्वागतम।
1: हाँ,
0: कैसे बा समाचार? श्रावण मास के हार्दिक शुभकामना। वेद मंत्र के उच्चारण हुआ था रोज के यज्ञ हवन हुआ था घर में
1: रामायण में से आई लीजा अभी ना आए थोड़ा
0: थोड़ा समय और
1: हाँ के लिए गीत डालिया
0: बोला कौन गीत सुन बा कौन सुनते हैं भोजपुरी बॉयज गौरी ब्रदर्स। हाँ हाँ और आज के दिन कैसे विद्यालय प्रेमी ला घर ही पर अला घर अला घूमे नहीं
1: रामायण में गई नहीं।
0: हाँ
1: कल अभिषेक में घर अली।
0: हाँ शिव अभिषेक भी हुआ था देखा थे देखो छोटा छोटा कांवर बना के गंगा तालाब भी जाता वन जा
1: मंदिर में रोज वाला काल माँ वृंदावन
0: वृंदावन में।

0: और सब कुशल मंगल, ला सांते सब ठीक ठाक?
1: ये अच्छी दलिया स्वस्तिका सीनियर सिटीजन के लिए
0: रामायण मंडली खातिर। ओके प्रवीणा, चला दे सर, फिक्र ना करिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि। तो चला भी संगतिया पर गुजी टीचरी दोस्ती दोस्ती कौन चिया, जैसे हम बोले कि दुख के समय में जब कोई काम आवेला तो वो सच्चा संगतिया कहारा। संगतिया नहीं कि लता बगेले तो खाई पियाई होता, ये तो रोज की है। जब खाई पिए रहेला तो सब कोई संगतिया बन जा रहा, पर जिन दिन तोहर जेब में पैसा नहीं बा भैया, वो दिन अगर कोनो संगतिया के तोरा मिलल और तोरा तुझसे बचेलक, तोरा मदद कर लक दुख के समय में, तो वो संगतिया कहाला। चाहे भी सुनब जाए गीतो, आजकल की दुनिया में एगो निमन संगतिया मिले के बहुत कठिन से मिले, पर बा नहीं बोलते नहीं बा कमती हो, एगो कामागत सेंसेल वायल फिडेल बा दुनिया में, पर उस अकेला कमती हो। अगर तोहर एगो ऐसा बेस्ट फ्रेंड बा तो तू खुश नसीब हो, है गीत तोहर नाम और तोहर बेस्ट फ्रेंड के नाम। और जितना कोई भी रात के मिकी सुनाता है, ड्राइवर लोग ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे गाड़ी चलेगी, कहे कि रास्ता काफ़ी फिसलन बा, खूब पानी बरसल बा दक्षिण में, स ड्राइवर दोस्त लोग ढेर गापी नहीं करिए सीमा में, गापी बिन दे गापी जाने लेना। हाँ तो सोचिए कि तोहर परिवार तोहर इंतजार करता घर में, तोहर पत्नी तोहर लड़का लोग, तो धीरे धीरे गाड़ी चलाइए, कुछ दिल आगुद स्वीप करिए और हमने के साथ देते रहिए। जितना पसाजे लोग सुनता है कि इतने तो लोग के नाम, अगर नाइट शिफ्ट करे जात हुआ या नाइट शिफ्ट करके आवत हुआ, तो गीत सब कुछ के नाम। चलिए एक साथ सुने दोस्ती, नीरज गुप्त मधु की आवाज़ में।

संगते लोग ई दुनिया के दस्तूर है, जेकर लगे पैसा बा ओकर पीछे आगे पीछे सब कोई लितू करेला। जहाँ जाला सब कोई ओकर आदर सम्मान करेला और सब कोई खुशी रहा धनी आदमी लोग के। पर जेकर जेब में गो रुपया नहीं बा, गो सिक्का नहीं बा, कोई ओकर से दोस्ती नहीं करेला। ये दुनिया की वास्तविकता है, दुनिया के कटु सत्य है। अगर तोहर लगे पैसा बा, दौलत बा, बैंक बैलेंस बा, तो सब कोई तोहर आराम सलाम करी। जौन दिन तोहर पैसा फिनी होल भैया तो तू जाने रह कौन हाल होला। तो दुनिया ही से आजकल का कर बा, दुनिया के साथ यहाँ चले के, समय के साथ यहाँ चले के, ये खातिर बोले से भैया करी मेहनत करिए, पैसा कमाइए, ताकि सब कोई तोहरा खुशी रही। अब जब दामाद गल सासू माँ लगे और सासू माँ जाना था दामाद धनवाद बात, बोले कैसे मर बेटा, अच्छा हुआ ना, आओ बेटा बैठा बेटा तो कहला है जो पैसा है कैसे सब कोई के नचावेला, ये पैसा है गोल और सब कोई के नचावेला गोल गोल। तो सच्चे के आज पैसा के बोल बाला बा, पैसा नहीं रही तो कुछ नहीं रही। पैसा बा तो सकबर को अच्छा भोजन खाए, पैसा बा तो वो अच्छा लुगा किने, पैसा रही तो सकबर जाए रसाल सिनेमा फिल्म देखे अपन पत्नी लड़का लो के। पैसा बा तो ढे मना फोज जैसे को बिजनेस सकबर करे, अपन जेब यूनिवर्सिटी करे, तो पैसा चहला हो कि नहीं। तो पैसा के आगे पीछे सब कोई घूमते रहेला, हम लोग घूमते रहे सर गोल गोल गोल गोल गोल मटोल मनी मेक्स अ वर्ल्ड गो राउंड। पर ही पैसा जो है हाथ में नहीं रहेला है, ये जैसे आवेला भैया कोनो न कोनो बहाना से पैसा खर्च हो जाला। ये वास्तविकता है, कटु सत्य रियलिटी है कि जिन व्यक्ति के पास ढेर पैसा रहेला वो लोग के हाथ से पैसा हाली से चला जाला। कबो हमार हाथ में पैसा बात है, पैसा कबो तोर हाथ में, कबो तोर हाथ में तो कबो हमार हाथ में। ढेर को बोला पैसा मैल है हाथ के, तो ढेर को बोला पैसा जो है घर के लक्ष्मी है। सब कुछ के अपन अपन पॉइंट ऑफ व्यू बा तो हमने उसे लक्ष्मी माँ है पैसा, पैसा बात सब कुछ बा, भैया पैसा नहीं बात कुछ नहीं बा। चंद्रदेव जीबोधन का सोचिरन पैसा के बारे में, चल एक साथ सुने। महाराणा प्रताप लेंथ्रियोली त्रोबिश के सब हरकू परिवार के नाम है गीत, और सब जिराखंड परिवार के लिए जंत्रियोली रहेलन सर।

जेब में पैसा बात रोज के बनाने बा भैया। हई गीत के संगे करिश्मा के गावा गीत जलसा बनाने के संगे भोजपुरी का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। तो लोग SMS और फोन कॉल्स का दिल शुक्रिया। हमने के टिकटॉक पर देखला जा, हमने के रेडियो पर सुनला जा, हमने के साथ दिला जा, बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 9 बजे से अभी रे कुछ ही सेकंड्स में रात के 11 बजे

सुनहरे पल कार्यक्रम और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे नॉनस्टॉप फिल्मी तराने। हमने की चलो की मुलाकात हुई कल बुधवार की रात के बुधवार 5 अगस्त के फिर से मीरा सा कल रात के 9 बजे से 11 बजे ले यही चैनल पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही भोजपुरी तड़का। तो कल तक हमने की इजाजत दा जिंदगी में हमेशा खुश रहिए बी हैप्पी की स्माइलिंग एंड एंजॉय लाइफ मुस्कुराती रहिए शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है। हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं, स्वीकार करें नीतुषा का कर जोर प्रणाम। एक बार फिर सुनहरे पल कार्यक्रम में सबका अभिवादन है। श्रोताओं, हम रोज गाने सुनते हैं, हर तरह के गाने, हर मूड के गाने। लेकिन क्या आपको पता है कि जितने भी गाने होते हैं वे सब रागों पर आधारित होते हैं? चले आज इसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं।

म्यूजिक इंडस्ट्री की बुनियाद सिर्फ सुर और ताल पर नहीं बल्कि भारत की शास्त्रीय परंपरा में उत्पन्न हुए रागों पर टिकी हुई है। राग एक ऐसा आध्यात्मिक और संगीतिक आकार है जिसमें सुरों का संगम इस तरह से होता है कि हर राग एक अलग भाव, एक अलग रंग और एक अलग महसूस पैदा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि राग सिर्फ सुर नहीं होता, राग एक जीवंत भावना होता है।

हाँ हाँ

फिल्मी गानों में रागों का प्रयोग उन्हें एक गहरापन, एक भावनात्मक गहराई और एक लंबी उम्र देता है। चाहे वो लता मंगेशकर के कोमल स्वर हो, रफी साहब की मीठी पुकार या किशोर कुमार की अंदाज भरी आवाज और दर्द में डूबे मुकेश जी। आधे से ज्यादा अमरन फिल्मी गानों की जात में कोई न कोई राग छुपा होता है। राग यमन के मधुर सुरों से प्रेम की नरमियत उभरती है तो राग भैरवी दर्द और विरह को गहरा रूप देता है। राग मालकोस रूहानियत और गंभीरता जगाता है। राग दरबारी शक्ति और राजसी भाव पैदा करता है और इसी तरह हर राग संगीत को एक हसीन पहचान देता है।

हिंदी फिल्म संगीत की खूबसूरती ये है कि उसने रागों को आम इंसान के दिल तक पहुंचा दिया। जो संगीत पहले केवल महफिलों और सभाओं तक सीमित था, वो सिनेमा के माध्यम से हर घर, हर गली और हर दिल तक जा पहुंचा। इस मेल मिलाप ने फिल्मी संगीत को एक अमरन विरासत बना दिया, ऐसा विरासत जिसे ना वक्त मिटा सकता है और ना ट्रेंड्स।

श्रोताओं, रागों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो संगीत को एक भाव संपन्न रूप देते हैं। एक ही गाना जब राग के साथ बंधा होता है तो उसमें ना सिर्फ मेलोडी बनती है बल्कि एक आत्मा जागती है। इसीलिए पुराने फिल्मी गाने आज भी हमारे दिलों को उसी तरह छू जाते हैं जैसे पहली बार सुनने पर।

0: प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा।
1: हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री की सफलता का असली रहस्य मॉडर्न साहित्यिक एक्सप्रेशंस और प्राचीन राग परंपरा का मेल है। श्रोताओं, दोनों जब मिलते हैं तो संगीत न सिर्फ मधुर बनता है बल्कि अमर भी हो जाता है। इसीलिए राग आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने पहले थे, क्योंकि राग संगीत की रूह है और रूह के बिना कोई धुन कभी अमर नहीं होती। शुभ रात्रि, प्रणाम।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: एमबीसी रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

तो मोहब्बत के मारे झील किनारे प्यार की चांदनी में नहाते हंसते खेलते मुस्कुराते नहीं जानते थे कि जिंदगी क्या दिखाने वाली है। बस अगले ही मोड़ पर बिछड़ने की घड़ी आने वाली है और फिर यूं हुआ।

दूर हो गए कि जिंदगी आजमाती है, हंस कर रुलाती है, लेकिन दिन बीते और वो फिर मिले मगर खुशियों के फूल नहीं खिले, क्योंकि वो जान नहीं पाए, वो मान नहीं पाए, दिल और धड़कन मिले तो, पर अफसोस एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। और अब ये हाल है

0: मुसीबत कहाँ है मुसीबत? ऊपर नीला नीला आकाश, खुली खुली हवा और चारों तरफ पानी ही पानी।
1: हाँ, जब प्यास लगेगी ना तो पीना ये नमक वाला पानी, और जब भूख लगेगी

0: beautiful banana.
1: बता दूं?
0: हाँ,
1: वो यहीं पर
0: यहीं है।
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: ऐसे नहीं, बोलो मैं गाऊं।